श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 मई सन 2026 सुबह के 5:53 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात नेहा बेनीवाल के साथ। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आप इसके अंतर्गत सुनेंगे समर्पण। 7:05 पर कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। संजीव श्रीवास्तव के साथ आप ये कार्यक्रम सुनेंगे। दिल के तराने गाने नए पुराने ये कार्यक्रम लेकर आएंगे संजीव श्रीवास्तव 9:00।

10:05 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक आकांक्षा मिश्रा के साथ और 11:05 पर प्रोग्राम होगा बॉलीवुड ट्रेल्स। दीपांशी अरोड़ा ये प्रोग्राम लेकर आएंगी। एक बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे मेरा वाला सॉन्ग और प्रियंका वर्मा आपके लिए लाएंगी कार्यक्रम आशियाना। रेडियो डॉक्टर ये कार्यक्रम आप सुनेंगे निखिल वर्मा के साथ 3 बजे और 4:05 पर प्रियंका वर्मा लाएंगी अल्फा जैन। 5:05 पर आप सुनेंगे निखिल वर्मा से के साथ सिटी लाइट। मैसेज मसाला चंद्रानी मुखर्जी लेकर आएंगी 6:05 पर और आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक शलिका कपूर के साथ। 7:05 पर सबीहा नकवी से आप सुनेंगे आपकी याद आती रही कार्यक्रम और इसके बाद वेस्टर्न म्यूजिक होगा 10:05 पर। रंगी महफिल होगा 11:05 पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 6 बजने जा रहा है। अब आप समाचार सुनेंगे, बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगरा हाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के 2रे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षत वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए, जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओं नमस्कार, सुबह के 6:05 हो चुके हैं। आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल के साथ 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में और विभिन्न माध्यमों से देश भर के साथ साथ विश्व भर में आप सुन रहे हैं सुप्रभात। मेरे साथ मेरा नाम है नेहा। शनिवार की सुबह है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। बारिश जो अभी हुई थी एक दिन पहले, उसकी वजह से मौसम में एक हल्की सी ठंडक महसूस हो रही है। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है और आज 2 तारीख है, मई का महीना चल रहा है, तो सब कुछ बहुत ही सुंदर है। और सुंदर गीतों के साथ आपका स्वागत हो रहा है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर। सुप्रभात।

सब कुछ नया नया और बहुत प्यारा अक्सर हमें लगता है जब हम बहुत खुश होते हैं, मन बहुत शांत होता है और मन में ढेर सारी खुशियां आ जाती हैं। और साथियों, मैं समझती हूं कि मन में ढेर सारी खुशियों का एहसास तभी होता है जब हमारे जीवन में कुछ अच्छे लोग हमारे आसपास होते हैं, हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। इसीलिए आज का सुविचार यही कहता है कि अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह दें जो आपको खुश रखते हैं, आपको हंसाते हैं और मुश्किल समय में आपका साथ निभा रहे हैं। जो सच में आपकी परवाह करते हैं वही आपके अपने हैं, बाकी लोग बस रास्ते के मुसाफिर हैं।

साथियों, इस गीत में गीतकार ने जो हीरोइन है फिल्म में, उनकी खूबसूरती की तुलना हर किसी सुंदर चीज के साथ की है, जो हमें अच्छा भी लगता है गाने में, सुनने में, पढ़ने में। लेकिन जब तुलना की बात आती है तो हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी तुलना दूसरों से करेंगे तो हम ही परेशान होंगे। खुद की तुलना दूसरों से कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की राह और समय अलग होता है। दूसरों से नहीं, खुद से बेहतर बनने की कोशिश हमें करनी चाहिए। यही सच्ची सफलता और संतोष का रास्ता है।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: तेरी बोली तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

सुबह के 6:20 और 46 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल आप सुन रहे हैं। मेरे साथ मेरा नाम है नेहा। सुप्रभात कार्यक्रम में बातें हो रही हैं, जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, कभी क्या आपने पंछियों को बड़े गौर से देखा है कि नहीं? पंख उनके होते हैं, आसमां भी उनका होता है, उड़ने के लिए वो किसी की इजाजत के मोहताज नहीं होते हैं। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं जनाब? उड़ान भरिए, पंख आपके हैं और आसमां भी सिर्फ आपका है।

0: कल हो ना हो, क्या बात कही इस गीत में। अब आप भी अपनी जिंदगी को बिल्कुल ऐसे जिए जैसे आज ही जिंदगी की सारी खुशियां मुझे बटोर लेनी है, क्योंकि जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए हमें नहीं पता होता। साथियों, आप सुनेंगे कुछ देर बाद प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण, और अगला कार्यक्रम रहेगा ठीक 7:05 पर। कौन सा कार्यक्रम रहेगा? गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर आप सुनेंगे, और अब सुनिए कार्यक्रम समर्पण।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंध के तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि जो मरणशील व्यक्ति है और उसमें भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा प्रथम श्लोक में, एवमेतन निगदितम पृष्टवान यद भवान मम निणाम यन म्रियमाणानाम मनुष्येषु मनीषिणाम। ये परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। और उत्तर क्या था हम जानते ही हैं। भगवान श्री कृष्ण का भजन करना है ना, यही बताया था सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को निष्कर्ष रूप में। उन्होंने कहा था कि मनुष्य को चाहिए कि सब समय, सब स्थिति में और संपूर्ण शक्ति से, ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सब समय यानी समय बर्बाद मत कीजिए, सभी स्थितियों में, सुख हो, दुख हो, क्लेश हो, कुछ भी क्यों ना हो, हर स्थिति में जितनी शक्ति है हमारे पास, समस्त शक्ति से भगवान श्री कृष्ण की ही कथाओं का श्रवण करना चाहिए, उनके नामों का कीर्तन करना चाहिए और उनकी लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। और महाराज परीक्षित को ये भी बताया था सुखदेव जी ने कि देखिए, अगर आप पूछें कि कैसे हम भगवान की कथा का श्रवण करें, कहाँ जाएं, अपने आप से तो श्रवण हो नहीं सकता है, कहाँ जाएं, तो इसका भी उत्तर दिया कि राजन, जो संत लोग हैं वो भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं, बांटते ही रहते हैं। इतने दरिया दिल होते हैं, इतने उदार होते हैं संत लोग, कि भगवान की कथा का मधुर अमृत लुटाते ही रहते हैं। तो कितना आसान है, जब बांटते ही रहते हैं, कोई दाता है, भूरी दा जना है, तो उधर चले जाओ। और जो लोग भी अपने कान के दोनों में भर भर कर कथामृत का पान करते हैं, उनके हृदयों से विषयों का विषैला प्रभाव धीरे धीरे चला जाता है, वो अंततः शुद्ध हो जाते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये उपाय बताया था, यही तरीका है भगवान के बारे में सुनना, उनका नाम लेना, उनकी लीलाओं का स्मरण करना, यही तीन मुख्य तरीके हैं, उपाय हैं, साधन हैं। जो मनुष्य करे तो उसका मनुष्य जन्म सार्थक हो सकता है, सफल हो सकता है। लेकिन सब लोग तो अपने मनुष्य जन्म को सफल करना नहीं चाहते हैं, सब लोग तो कुछ और भी चाहते हैं, तो उसका भी उपाय बता रहे हैं सुखदेव जी। कह रहे हैं देखो, उत्तर तो यह है कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, मैंने बताया, लेकिन फिर भी जो सोचता है मुझे ब्रह्म तेज मिले तो बृहस्पति जी की पूजा करे, जो इंद्रियों की विशेष शक्ति चाहता है वो इंद्र जी की पूजा करे, जिसे संतान चाहिए वो प्रजापतियों की उपासना करे, जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की, जिसे धन चाहिए वो वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाहत हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए, जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वो अदिति, और जिसे स्वर्ग की कामना हो वो अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा है उसे विश्वे देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए, आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी, जिसमें प्रतिष्ठा की चाहत है तो वो लोकमाता पृथ्वी का और आकाश का सेवन करे, सौंदर्य की चाहत जिसमें है वो गंधर्वों की उपासना करे, पत्नी की प्राप्ति करने के लिए उर्वशी अप्सरा की, सबका स्वामी बनने की ब्रह्मा जी की आराधना करे, जिसे यश चाहिए वो यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाना चाहिए वो वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा है यदि तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना किया जाए, धर्म उपार्जन के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की,
बलवान होने के लिए मरुद गणों की आराधना करनी चाहिए, राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों की, अभिचार के लिए नृत्य की, भोगों के लिए चंद्रमा और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। तो 9 श्लोक तक सुखदेव गोस्वामी जी ने यह बताया कि जिनको अलग अलग चाहते हैं वो किस किस की उपासना करे तो उसकी चाहत पूरी हो सकती है। लेकिन 10वें श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक तक उन्होंने जो कुछ कहा है वो है सार वस्तु। 10वें श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। अकामः सर्व कामो व मोक्ष काम उदार धीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो चाहे निष्काम हो या जितनी कामनाएं बताई गई उन समस्त कामनाओं से युक्त हो या फिर मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। वाह! तो किसी को सौंदर्य चाहिए तो वो किसी देवता की उपासना कर रहा है, किसी को धन चाहिए तो किसी और की उपासना कर रहा है ना। लेकिन अगर कोई सारी कामनाएं पूरी करना चाहता हो या फिर कोई भगवान की सेवा ही चाहता हो कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका सुख चाहिए, हम आपको सुखी करना चाहते हैं, चाहत तो वहां भी है लेकिन वो चाहत बड़ी सुंदर है, वो चाहत है भगवत सुख में सुखी होने की चाहत। ऐसी चाहत तो बहुत ही विरल है, बहुत ही दुर्लभ है। इस दुर्लभता और निष्कामता को प्राप्त करने के लिए बड़ी ही सुकृतियों की आवश्यकता होती है, बहुत ही आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, बहुत ही भजन की आवश्यकता होती है। तो जो बुद्धिमान है वो चाहे निष्काम हो या समस्त कामनाओं से युक्त हो या दो चार कामनाओं से युक्त हो या फिर वो ज्ञानी हो, मोक्ष चाहता हो, बस एक को ही पकड़ लो, वो है श्री कृष्ण। तीव्र भक्ति योग के साथ केवल उनकी ही आराधना करनी चाहिए। सही बात है, क्योंकि भक्ति के बिना कोई भी कर्म अपना फल प्रदान नहीं कर सकती। ये बात भी सही है, भक्ति जहां नहीं है वहां फिर कुछ है ही नहीं। इसलिए जो बात कही है सुखदेव गोस्वामी जी ने, बड़ी ही तत्व की बात कही है कि भाई जो अकाम है यानी कोई इच्छा ही नहीं है, एकांत भक्त हैं जो भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहते और भगवान के अलावा किसी अन्य की पूजा भी नहीं कर सकते, है ना, इच्छा ही नहीं होती। भगवान की कथा सुनते सुनते उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, भगवान की उपासना करते करते वही सर्वस्व हो जाते हैं, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते करते भगवान से ही आसक्ति हो जाती है, श्री कृष्ण से, तब वो कहाँ किसी और को भजेंगे। गोविंद के बिना किसी और को अगर भजा जाए तो फिर मिलेगा भी क्या? कुछ नहीं मिलेगा, ना आत्मिक शांति, ना चैन, और ना एक अप्राकृतिक दिव्य अनुभव, कुछ तो नहीं मिलेगा। और या फिर कोई सर्व काम युक्त हो जो काम में वस्तु चाहता है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो व्यक्ति, या फिर जो मोक्ष अभिलाषी है यानी ज्ञानी है और सोचता है कि भाई बहुत देख लिया मैंने जन्म मरण का खेल, ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारियां ये तो बहुत दुखमय है, ये शरीर धारण करना ही बड़ा दुखमय है, क्यों ना मैं आप में मिल जाऊं प्रभु, विलीन हो जाऊं, आप ही में विलीन हो जाऊं, मेरा अस्तित्व ही ना रहे, बस आप में मिल जाऊं। तो ऐसा मोक्षकामी कोई भी क्यों ना हो, अगर तीव्र भक्ति करता है, तीव्र भक्ति यानी समस्त आग्रह परित्याग करके श्री गोविंद के भजन में प्रवृत्त होता है, तो वो है सुबुद्धि, बुद्धिमान, बुद्धिमान। बहुत सुंदर बात है, है ना। यानी जो पूर्ण पुरुष हैं उनसे प्रेम करना, उनका हो जाना, उनके प्रति एकनिष्ठ हो जाना, ये अपने आप में बहुत
बड़ी उपलब्धि है, यही यहाँ पर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी 10वें श्लोक में। और ये भी कह रहे हैं कि देखो

0: प्राप्त करने के लिए और नश्वर स्वर्ग आदि सुख को प्राप्त करने के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं कि हमें स्वर्ग आदि सुख मिल जाए। तो ये जो प्राप्त करना चाहते हैं वो बड़ा ही नश्वर है। कभी ना कभी किसी भक्त के संग उनकी से कामनाएं समाप्त हो सकती हैं, कभी ना कभी वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे स्वर्ग भी क्यों ना चले जाए अच्छे कर्म करके, तो भी जब उनके पुण्य समाप्त होंगे तो उनको तो पृथ्वी पर गिरना ही पड़ेगा, बारंबार आना ही पड़ेगा। यानी स्वर्ग हमेशा के लिए नहीं मिलता है ना, तो बारंबार जन्म लेना पड़ेगा। तो कभी ना कभी हो सकता है कि उन्हें भक्त का संग मिल जाए और वो बहुत अच्छे भक्त बन जाएं और वो भी निष्काम हो जाएं, वो भी भगवान के सुख में अपने आप को सुखी समझने लगे। ये एक अवसर, एक चांस रहता है। लेकिन जो मोक्षकामी हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, तो मोक्ष किस प्रकार का चाहते हैं ये लोग, ज्ञानी लोग, ये ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं सेवक हूं और प्रभु आप सेव्य हैं, मैं आपकी सेवा प्राप्त करूं। सेवा प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं रहती। इच्छा क्या रहती है? मुझे समस्त दुखों से छुट्टी मिल जाए और मैं आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाऊं, एकदम मिल जाऊं आप में, मुझे आनंद की प्राप्ति हो। अब ये बारंबार आना जाना इसको हटा लीजिए, मैं आनंद प्राप्त करना चाहता हूं। तो वहां निज सुख की तरफ दृष्टि लगी रहती है, निज सुख की तरफ। तो ऐसे लोग महाकामी कहे जाते हैं आध्यात्मिक रूप से। क्यों? क्योंकि जीव का जो स्वरूप होता है वो होता है कि वो भगवान का नित्य दास है ना, भगवान का अंश है, भगवान का दास है। और जब तक वो भगवान की सेवा की अभिलाषा से युक्त नहीं होगा तब तक वो अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाएगा, और जब तक स्वरूप में स्थित नहीं हो पाएगा तब तक उसे प्राप्त ही भला क्या हो सकता है, वो यूं ही भटकता रहेगा। और अगर वो भगवान की निर्विशेष ज्योति में चला भी जाए तो भी बेचारा वो बहुत बड़े आनंद से वंचित हो जाएगा, और वो आनंद है भगवान की सेवा रूपी आनंद। वहां भी नजर अपनी तरफ नहीं है, नजर भगवान को सुख पहुंचाने की तरफ है। तो वहां वो भगवान के माधुर्य का आस्वादन करने से वंचित हो जाएगा, भगवान की लीला की वैचित्र्य देखने से वंचित हो जाएगा, भगवान के धाम की वैचित्र्य देखने से वंचित हो जाएगा। तो बेचारा वंचित ही हो जाएगा, हालांकि वो सुख प्राप्त करना चाहता है। और जो भगवान का भक्त है वो भगवान को सुख देना चाहता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए सुखदेव जी ने मोक्ष कामी ये एक अलग शब्द का प्रयोग किया, ये दिखाने के लिए कि अगर मोक्ष प्राप्त करने वालों में या जो चाहते हैं मोक्ष को प्राप्त करना वो स्वयं को निष्काम समझते हैं तो उनका ये अभिमान व्यर्थ है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है हमारी, जिसे जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा। तो हम चर्चा कर रहे हैं एक सुंदर श्लोक पर, जहां पर सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं अकामः सर्व कामो व मोक्ष काम उदार धीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। यानी कोई कामनाओं से युक्त हो, या कोई

0: निष्काम हो, यानी भगवान का एकांतिक भक्त हो, भगवान का सुख चाहता हो, या फिर कोई मोक्ष ही क्यों ना चाहता हो, सबको तीव्र भक्ति योग के साथ, ऐसी भक्ति जो कर्म और ज्ञान के आवरण से आवृत ना हो, ऐसी भक्ति के साथ भगवान का भजन करना चाहिए, कृष्ण भजन करना चाहिए, है ना। देखिए भगवान का जो भक्त है ना, वो तो कभी ये भी नहीं कहता कि प्रभु ये जन्म मेरा अंतिम जन्म हो, बस ऐसा कर देना। कभी नहीं मांगेगा ऐसा वर, वो कभी नहीं मांगेगा। वो कहेगा कि हे नाथ, हजारों हजारों योनियों में ही क्यों ना मुझे भटकना पड़े, पर जहां जहां मैं जाऊं उस जन्म में हे मेरे प्यारे प्रभु, आप में ही निरंतर मेरी नित्य भक्ति हो, निरंतर हो, निरंतर। अपने कर्म फल की वजह से जिस जिस जन्म में मैं भ्रमण करूं, वो ये भी नहीं कहेगा कि प्रभु आप मुझे मनुष्य जन्म ही देना। वो कहेगा प्रभु आप अगर मुझे एक कुकुर के जन्म को देकर संतुष्ट हैं तो आप संतुष्ट होइए, क्योंकि मैं अपने कर्म दोष के कारण किसी भी शरीर में क्यों ना जाऊं, कीट के, पतंग के, वृक्ष की योनि, मत्स्य की योनि, जो योनि दें, परंतु फिर भी आप में ही मेरी दृढ़ भक्ति हो, दृढ़ भक्ति हो, वो भक्ति कभी हिले नहीं। तो आप प्रभु हमें ऐसा उपाय बताएं जिसके द्वारा इस संसार मार्ग में भटकते भटकते हम आपके चरण कमलों को कभी भी ना भूलें, ये स्मृति हमारी कभी नष्ट ना हो, बस बस आपको याद रखें हमेशा हमेशा। तो इतनी प्रीति होती है भगवान से उनके भक्तों की, है ना। और जिस समय महाराज परीक्षित भी अनशन पर बैठ गए थे कि अब मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, तब उन्होंने भी यही कहा था कि हे भगवान, आप में मेरी बारंबार रति हो, रति प्रेम हो बारंबार, और मुझे जो भी जन्म क्यों ना प्राप्त हो, मुझे ऐसे संतों का संग दीजिएगा जिन्होंने प्रभु आपका आश्रय लिया हुआ है, उनके साथ मैं आपके प्रसंगों को सुनूं और समस्त जीवों से मेरी मित्रता हो। हे द्विजगण, आप सबको नमस्कार है, आप सब मुझे यही आशीर्वाद कीजिए कि भगवान में मेरी केवला रति रहे, यानी ऐसी रति जो कभी हिलती नहीं है, दृढ़ रति। इसीलिए यहां पर सुबुद्धि अर्थात उदार धीहि ये शब्द आया कि ऐसे लोग बड़े ही उदार धीहि हैं, कामना शून्य हो अथवा कामना युक्त ही क्यों ना हो, परंतु भगवान का भजन करें, भगवान का भजन। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव सुबुद्धि का परिचय देता है, और जो भगवान की तरफ नहीं मुड़ता, देवी देवताओं में लगा रहता है, ऐसा जीव मंद बुद्धि का परिचय देता है। तो तीव्रेण भक्ति योगेन अर्थात अमिश्रित रूप से भक्ति करे, ऐसी भक्ति जो ज्ञान और कर्म आदि के द्वारा अमिश्रित है। तो क्या भगवान की सेवा करना, पूजा करना, तुलसी चढ़ाना, ये सब कर्म ना करें? तो नहीं नहीं, ये तो भगवत कर्म है। कर्म का अर्थ वही कि देवी देवताओं की उपासना करना और यज्ञ आदि करना और साथ में भगवान को भी पूज लेना, तो बात बनेगी नहीं। तीव्रेण यानी सिर्फ भगवान का ही भजन करें, और अगर कोई कामना है तो वो कामना भी भगवान के चरणों में रख दें, अमिश्रित भजन करें, अमिश्रित शुद्ध भजन। जैसे सूर्य के किरण जब बहुत तेज हो जाए इस प्रकार से, यानी मेघ है ना, मेघ द्वारा अनावृत, यानी अगर भक्ति में कहीं से ज्ञान कर्म का आवरण होगा तो कौन सा ज्ञान? भगवत ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जा रहा, वो तो नींव है भक्ति की। भगवत ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवतम जी का ज्ञान, ये ज्ञान तो भक्ति का ही अंश है। ज्ञान की बात हो रही है अर्थात बारंबार ये सोचे कि हाँ अब मुझे तो बस ब्रह्म तेज में विलीन होना है, ब्रह्म तेज में विलीन होना है, तो ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, नहीं पूरी तरह श्री कृष्ण का ही भजन कीजिए। तो जब ये ऐसे मेघ द्वारा जैसे सूर्य की किरण ढकी नहीं जाती है तो वो तेज होती है, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब मेघ आ जाते हैं तो सूर्य की किरण तेज नहीं हो पाती है, बहुत मंदी सी होती है, लगता है कि ओहो आज सूर्य निकला भी है ठीक से कि नहीं, ये कैसा सूर्य है। लेकिन बिल्कुल साफ आसमान हो तो सूर्य का तेज पता चलता है। इस प्रकार की भक्ति को करने के लिए कह रहे हैं। तो एकांतिक भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष श्री भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, है ना। श्री चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सुबुद्धि ज्योति होय, गाढ़ भक्ति योगे तबे कृष्ण के भजाय। अन्य कामी ज्योति कोरे कृष्णेरो भजन, ना मांगिले कृष्ण तारे देन स्वचरण। काम लागे कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, काम छाड़ी दास होई ते होय अभिलाषे। तो देखिए बहुत बड़ी बात है ये, अगर श्री कृष्ण का ही कोई भजन करेगा चाहे उसके अंदर कितनी भी कामनाएं क्यों ना हो, बहुत भक्ति योग से भगवान का भजन करेगा तो वो नहीं भी चाहेगा तो भी भगवान उसको अपने चरणों में खींच लेंगे। वो काम की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण का भजन करेगा लेकिन उसको कृष्ण रस की प्राप्ति हो जाएगी और तब उसकी सारी कामनाएं अपने आप छूट जाएंगी और फिर उसके हृदय में बस एक ही इच्छा एक ही कामना रह जाएगी और वो चाहेगा मैं प्रभु आपका कैसे भी दास बन जाऊं। दास तो बुद्धिमान अर्थे जोदी विचारज्ञ होए, निज काम लागी तबे कृष्णे रे भजाए, भक्ति बिना कोनो साधन दीते नारे फल, सब फल दे भक्ति स्वतंत्र प्रबल, अजागल स्तन न्याय अन्य साधन अतएव हरि भजे बुद्धिमान जन। कितनी बड़ी बात है कि अगर कोई विचारज्ञ हो, विचार करने की शक्ति रखता हो तो वो अपनी कामनाओं को लेकर भगवान का भजन करेगा तो भी भगवान उसके उस कामना को इस तरह से पूर्ण करेंगे कि उसका मन भगवान में लगा रह जाएगा और अंततः वो भगवान को प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि कोई भी साधन क्यों ना कर लिया जाए, चाहे मुक्ति पाने का साधन हो चाहे कामनाओं को पूर्ण करने का साधन हो, बिना भक्ति के कोई भी साधन फल नहीं दे सकता और समस्त फल जो है वो भक्ति ही दे सकती हैं भक्ति महारानी, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, वो बलशाली हैं। जैसे बकरा है ना, बकरा उसके गले में दो लटकन रहती है, अगर कोई सोचे कि इसको दुह करके मुझे दूध मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा, है ना, हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से अन्य साधन हम कितने भी क्यों ना अपना लें उससे हमें कुछ खास मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जो बुद्धिमान जन होते हैं वो हरि का भजन करते हैं, हरि का भजन। तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है हमारी, हरि भजन कितना जरूरी है और भगवान की भक्ति के बारे में ही बारंबार सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं महाराज परीक्षित को निष्कर्ष रूप में, और इसी पर चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण, और इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।
1: असत संग का सदा त्याग करो, भक्ति के विपरीत गीत राग आदि मनोरंजन कार्यों को मत करो, कर्मी ज्ञानियों का संग दूर से त्याग कर दो, एकमात्र भक्तों के साथ श्री कृष्ण प्रेममयी कथाओं के रस में अपने को रंग दो, लीला कथा भी वो जो ब्रज रस से पूर्ण हो।

अन्य देवताओं को पूजने वाले और उनका ध्यान करने वाले इन सब लोगों से दूर रहो। धर्म कर्म दुख शोक तथा स्त्री पुत्र धन संपत्ति की आसक्ति को त्याग दो। एकमात्र श्री गिरिवरधारी श्री नंद नंदन का ही भजन और स्मरण करो।

0: से मनोरथ सिद्ध होते हैं, किंतु तीर्थ यात्रा मात्र परिश्रम ही है, ये केवल मन का भ्रम है कि तीर्थ।
1: ये थी कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान शुरू हो गया है। इन केंद्रों पर आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्टों के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने के लिए अनुमति जारी कर दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कोलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों की लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। राज्य में आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वेलकम जी हाँ, स्वागत है आपका प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में। आज शनिवार की सुबह बहुत ही प्यारे से चैनल यानी आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल के साथ मैं आपके साथ संजीव श्रीवास्तव संचो। जिंदगी से मिले किरदार को बहुत ईमानदारी के साथ निभाइए, क्योंकि जिंदगी तो चंद दिनों की होती है लेकिन किरदार की चर्चा सदियों तक होती है। तो आज आप प्रसन्न रहेंगे, आनंद रहेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा नया करने की कोशिश करेंगे जो कल आपने ना किया हो, है ना। क्योंकि हर रोज एक नई सुबह होती है। और आज सुबह जब मैं जागा तो ऑफिस आने से पहले, यहाँ आपसे मुलाकात से पहले, पेड़ों की झुरमुट के पीछे, हरे पत्तों के पीछे छिप कर कोयलिया बहुत ही सुंदर कू कू की जो आवाज़ लगा रही थी, उसने इतना जोश मेरे अंदर भर दिया। प्रकृति सच में और उसमें पलने वाले सभी जीव जंतु सुबह सुबह उठकर ये संदेश देते हैं कि उठिए, जागिए और जाग कर देखिए इस प्रकृति को, इसका साथ दीजिए। ये प्रकृति आपके लिए है, आपके लिए बनी है। बहुत ही सुंदर उस भाव के साथ, एक बहुत ही सुंदर जिसे कहते हैं भगवान के प्रति समर्पण, हमारा आज के इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जी हाँ, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जिस पर मैं हाजिर हूँ आपके साथ, और इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल के माध्यम से। जी हाँ, मैं हूँ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजू, और आपको बताऊँ कि एक बार एक महात्मा जी रास्ते में जा रहे थे, उन्होंने 3 श्रमिकों को पत्थर तोड़ते हुए देखा। पहले से पूछा तो उसने झुंझलाकर कहा, क्या दिखता नहीं है क्या, पत्थर तोड़ रहा हूं। दूसरे से पूछा तो उसने कहा, अरे महात्मा जी बस मजदूरी कर रहा हूं और क्या काम कर रहा हूं। और जब तीसरे से पूछा तो उसने बहुत खुशी के साथ, बहुत प्रसन्नता के साथ मुस्कुरा कर कहा, महाराज आपको प्रणाम हो, मैं भव्य मंदिर के निर्माण में साक्षी बन रहा हूं। अब देखा आपने, तीनों एक ही काम कर रहे थे लेकिन तीनों श्रमिकों का दृष्टिकोण अलग अलग था। तीसरे जो श्रमिक का दृष्टिकोण था वो बड़ा सकारात्मक था, जिससे उसे आनंद मिल रहा था बस। तो काम को बोझ ना समझ के अगर अवसर समझें तो शायद हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वक्त हो गया 7:15 और 16 की तरफ, सेकंड की सुई लगातार दौड़ रही है। वक्त हमें यही सिखाता है कि हम वक्त का साथ दें, वक्त के साथ बने रहें और वक्त के साथ दौड़ते रहें, नहीं तो बहुत पीछे कहीं ना कहीं छूट जाएंगे।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

वेलकम बैक जी, प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग रेली एनसीआर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। और आज है 2 मई और 2026। देखिए ना कितनी तेजी के साथ ये वक्त गुजर रहा है, ये वर्ष भी आज ये 5वां महीना आ चुका है ना, दौड़ते दौड़ते। तो 2 मई को यानी हर दिन बहुत खास होता है, हर दिन बहुत ही स्पेशल होता है। कुछ ना कुछ हर दिन ऐसा घटता है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। और हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो हम अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिखा सकते हैं। आज के दिन बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, खास बहुत खास अगर बातों पे हम नज़र डालें तो आज के दिन ही 1921 यानी 1921 में फिल्मों के एक बहुत ही जिसे कहते हैं युग, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व का जन्म हुआ था आज के दिन, जिनका नाम है सत्यजीत रे साहब। इसके अलावा लियोनार्डो द विंची का आज के दिन निधन हुआ आज के दिन 1519 में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1950 में फ्रांस ने कोलकाता के पास स्थित अपना उपनिवेश चंद्रनगर भारत को सौंपा था आज के दिन। और अगर आप चाहते हैं तो आज के दिन आप भी अपना कुछ एक ऐसा विशेष काम कीजिएगा जिससे आपका नाम भी अंतर्राष्ट्रीय खबरों में छाए या आप सबके दीवाने बने, चहेते बन जाएं। बिल्कुल जी, आपको बता दें।

और आज एक बहुत खास दिवस भी मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, जिसका नाम है विश्व टूना दिवस। ये दिवस क्या है, इसके बारे में जरूर जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं एक बहुत प्यारा सा ये नगमा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और आपके साथ मैं संजीव श्रीवास्तव संजू और ये है आपका चैनल अपना आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बताएंगे कि आज है वर्ल्ड टूना डे यानी कि विश्व टूना दिवस। हर वर्ष 2 मई को मनाया जाता है ये विशेष दिवस और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2016 में पहली बार इसको घोषित किया गया था, उसके बाद फर्स्ट टाइम 2 मई 2017 को इसे मनाया गया। टूना प्रजातियों की मछलियों की को अत्यधिक रूप से पकड़ने से बचाना इसका उद्देश्य है और सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देना भी इस उद्देश्य में शामिल है। खास बात यह है कि टूना जो है वो ओमेगा 3 प्रोटीन और विटामिन B12 का बेहतरीन स्रोत है और ये दुनिया भर में एक प्रमुख आर्थिक संसाधन भी है। तो आज के दिन को बिल्कुल जिसे कहते हैं कि संरक्षण टूना मछली के महत्व संरक्षण और उसको स्थायी रूप से पालन के रूप में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया और यह दिन खाद्य आर्थिक विकास और जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें टूना की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करता है। तो चलिए हम बिल्कुल इस संकल्प के साथ कि इस धरा पर जो भी जीव हैं हम उनके प्रति उतने ही सजग रहेंगे जितना अपने प्रति हैं, इस वादे के साथ एक और गीत आपके लिए।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

वेलकम बैक, पुनः अभिनंदन आपका प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ संजीव श्रीवास्तव। संजू, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। 20वीं शताब्दी के विश्व की महानतम फिल्म हस्तियों में से एक सत्यजीत रॉय साहब का जन्म हुआ था आज के दिन। 2 मई 1921 को जन्मे सत्यजीत रॉय को अगर हम कहें तो फिल्मी हस्तियों में एक ऐसी महान व्यवस्था वो बना के गए हैं जिन्होंने यथार्थवादी धारा की फिल्मों को नई दिशा देने के अलावा साहित्य, चित्रकला जैसी अन्य विधाओं में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। जहां आप फिल्मों के निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन लेखक और साहित्यकार के रूप में भी आपने उल्लेखनीय ख्याति अर्जित की। सत्यजीत रे फिल्म निर्माण से संबंधित सभी काम, लगभग सारे काम खुद ही करते थे। इनमें निर्देशन, छायांकन, पटकथा, पार्श्व संगीत, कला निर्देशन, संपादन, बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। फिल्मकार के अलावा वो कहानीकार, चित्रकार, फिल्म आलोचक भी रहे हैं। जी हाँ, सत्यजीत रॉय कथानक लिखने को निर्देशन का अभिन्न अंग मानते थे। और सत्यजीत रॉय की अगर हम बात करें तो अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र, लघु फिल्में शामिल हैं। और इसमें उनकी पहली फिल्म पाथेर पंचाली को कान फिल्म उत्सव में मिले सर्वोत्तम मानवीय प्रलेख पुरस्कार से के अलावा कुल मिलाकर 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जहां विश्व में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाने वाले सत्यजीत रॉय भारत रत्न के अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित हैं। विश्व सिनेमा में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए सत्यजीत रॉय को मानद ऑस्कर अवार्ड से भी अलंकृत किया गया। इसके अलावा उन्हें अपने काम के लिए कुल 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और बिल्कुल देखिए कि एक व्यक्तित्व ने अपने जीवन में कितना वेरेसेटाइल काम किया है, कितना विविध रूप में काम किया और एक अलग पहचान बना दी। हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं अगर हम मन में ठान लें तो, है ना। आप सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जी हाँ, वक्त हो गया 7:50 और एक और खास व्यक्तित्व की बात करते हैं अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक और मैं आपके साथ संजीव श्रीवास्तव उर्फ संजू। जी हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ आधुनिक असमिया साहित्य के शुरुआती दौर के एक भारतीय लेखक, कवि, इतिहासकार, शिक्षक और असम के भाषाविद हेमचंद गोस्वामी जी की। 2 मई 1928 को आज के दिन आप हमारे बीच नहीं रहे, आपको श्रद्धा सुमन अर्पित हम करते हैं। 1920 में तेजपुर में आयोजित असम साहित्य सभा के चौथे अध्यक्ष के रूप में काम करने वाले हेमचंद गोस्वामी जी ने साहित्य के क्षेत्र में अप्रतिम सेवाएं दी हैं और उनकी इन सेवाओं के फलस्वरूप उन्हें मरणोपरांत वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लेखक के कलम के धनी इस महान व्यक्तित्व को असम साहित्य में अपने योगदान के लिए हम आज भी याद करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बिल्कुल, आप सुनते रहिए हमारे साथ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और हम हमेशा से बात करते हैं म्यूजिकल ईयर्स यानी हम संगीत के साथ हमेशा आगे बढ़ते हैं और आपसे बहुत सारी व्यक्तित्व की बात करते हैं, बहुत सारी घटनाओं की बातें करते हैं, आपसे आपके दिल की बात करते हैं और ख़ास बात जो आप हमसे सुनना चाहते हैं वो है बहुत ही प्यारा सा मधुर सा संगीत।

नेहा आ गई हैं स्टूडियो में और 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहेंगी। बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कान के साथ उन्होंने मुझे भी सुबह सुबह अभिनंदन किया। बहुत अच्छा लगता है जब कोई पॉजिटिव वाइब्स देता है, नोट देता है। तो एक और बात आपको बता दूं कि आज एक और खास व्यक्तित्व की डेथ एनिवर्सरी है। बिल्कुल 2 मई 1519 को आपकी डेथ हुई। आपका नाम है लियोनार्डो द विंची। इटली के आप रहने वाले थे। महान चित्रकार, आविष्कारक, संगीतज्ञ, मूर्तिकार, वैज्ञानिक निरीक्षक, संगीत रचना वैज्ञानिक, भवन डिजाइन विशेषज्ञ, डिजाइनर और नगर नियोजक। यानी एक व्यक्ति के साथ इतनी सारी बहुमुखी प्रतिभाएं, और हम भी बन सकते हैं ऐसे जैसे कि ये लोग हैं। बिल्कुल, बस एक बार मन में ठान लें कि हमें ऐसा बनना है तो वो संकल्प सिद्ध होता है और वो सिद्धि तक पहुंचता है। फिलहाल मुझे यानी संजीव श्रीवास्तव उर्फ संजू को दीजिएगा इजाजत। 9 बजे आपसे मुलाकात होगी दिल के तराने, गाने नए पुराने में।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हाँ जी, क्या हाल है आपके? आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नेहा और कार्यक्रम है दिल्ली NCR की। जब बात होती है तो कौन सा कार्यक्रम होता है? गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का दूसरा घंटा शुरू हो गया है। सुबह के 8 बज चुके हैं, 2 मिनट पूरे होने वाले हैं और आप बताइए अभी तक बिस्तर में है या फिर उठकर तैयार हो गए हैं और अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो चुके हैं। वैसे इट्स अ सैटरडे मॉर्निंग, तो हो सकता है बहुत से लोगों की छुट्टी हो, लेकिन कोई बात नहीं, काम करने में जो मजा है ना, मुझे लगता है कि वो किसी और चीज में कहां ही आता है। भाई मैं तो वर्कहोलिक हूं, तो मुझे तो हर दिन हर वक्त बस ऐसा लगता है कि मैं काम ही करती रहूं, बड़ा मजा आता है। और उस काम में अगर आपसे बातें करना शामिल हो तो फिर देखिए चार चांद अपने आप ही लग जाते हैं। तो गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में बात होगी कि दिल्ली NCR में क्या कुछ खास और नया हो रहा है, और इसके साथ साथ आज सैटरडे की प्लेलिस्ट ना बहुत ही अलग है, जिसे मैं क्या नाम दूं, मैंने नाम दिया है इट्स अ सैटरडे प्लेलिस्ट। और जब आप गाने सुनेंगे ना तो आपको अपने आप एहसास हो जाएगा कि हाँ भाई, शनिवार को कुछ खास बात है गानों में। और हाँ, आज की प्लेलिस्ट में एक ऐसा गाना और मैंने आपके लिए शामिल किया है जो एक दोस्त की तरह पास बैठकर, हाथ थामकर, आंखों से आंखें मिलाकर कुछ कहेगा, और वो गाना आप जरूर सुनिएगा। फिलहाल इस सैटरडे प्लेलिस्ट की शुरुआत होती है इस गाने से। गुड मॉर्निंग

0: कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। अब इतनी तेज गर्मी में जब परसों थोड़ी सी बौछार आई बूंदों की और कई जगहों पर तो ओले भी पड़े थे। भाई कहाँ पड़े थे मुझे तो नहीं मिले, लेकिन हाँ बहुत सी जगहों पर ओले भी पड़े और मौसम ने जो करवट बदली मजा ही आ गया। और उसका असर अभी भी हम देख रहे हैं। कहाँ हमारी राजधानी का जो तापमान है वो 40 पार कर गया था और अभी वो 37 डिग्री सेल्सियस पर बरकरार रहने की उम्मीद है। और मिनिमम टेम्परेचर की अगर बात करें तो वो 26 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, यानी कि पहले के मुकाबले थोड़ा बेहतर है। हालांकि धूप खिली रहेगी आज शनिवार को। तो भाई जो मौसम में बदलाव आया है उसका हम सभी आनंद ले रहे हैं। और अगर ज्यादा गर्मी लगे ना तो अच्छे गाने सुनिए और उसके बाद दिल में अपने आप ही ठंडक का एहसास होना शुरू हो जाता है। और साथ ही कुछ काम की बातें भी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में मैं नेहा आपके साथ साझा करती रहूंगी।
1: Let's start the fun.

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मैं तो सिर्फ इन प्यारे प्यारे गीतों को चाहती हूँ भाई। क्या मज़ा आता है ना जब इतने रोमांटिक गाने, इतने मेलोडियस गाने जिनके शब्दों में इतनी जान है, जिनका म्यूज़िक इतना प्यारा है, और क्या गायकी है भाई, कोई इनकी तुलना किसी से कर ही नहीं सकता। अच्छा, ये गाना तो मैंने आपको सुनवा दिया आज सुबह से, बल्कि कहूँगी कल शाम से। मैंने किसी रील में एक गाना सुना था लता जी का, वो गाना इतना मेरे जहन पर चढ़ा हुआ है, मैंने अभी उसको कई बार सुन चुकी हूँ मैं सुबह से। लेकिन एक होता है ना कि काश मैं भी गा पाती, काश मैं भी गा पाती। बताऊँ आपको कौन सा गाना है? आई थिंक फिल्म का नाम है आकाशदीप, और ब्लैक एंड वाइट ज़माने का ये गाना है, दिल का दिया जला के गया, कौन मेरी तन्हाई में। ओहो क्या गाना है, और इस गाने के पीछे आप नोट कीजिए, जब उसको सुनते हैं तो कितने पोलाइटली, ऐसा लगता है कि विस्पर कर रही हैं लता जी, लेकिन गाना इतना सुंदर है, सो डिफिकल्ट टू सिंग, क्योंकि आप जनरली जब गाते हो तो आवाज़ ऊंची हो ही जाती है, अनलेस एंड अंटिल यू आर अ ग्रेट सिंगर। लेकिन भाई साहब क्या गाना है। बहरहाल गाने की बातें तो करते रहेंगे, आगे भी मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनवाने वाली हूँ। लेकिन अब एक जानकारी आपके साथ साझा कर दूँ, अगर आप मेट्रो से सफ़र करते हैं और आप मेजेंटा लाइन से सफ़र करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पीतमपुरा में मधुबन चौक स्थित रेड और मेजेंटा लाइन के दोनों स्टेशनों के बीच इंटरचेंज की जो सुविधा है वो विकसित हो रही है, जिसके मद्देनज़र मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 और लिफ्ट नंबर 3 अगले 15 मई तक बंद रहेगी। तो इसके लिए आप गेट नंबर 1, 3 और 4 और साथ ही लिफ्ट नंबर 4 का इस्तेमाल करें, तो आपको जो भी सुविधा है वो मिल रही है और असुविधा के लिए खेद है। साथ ही आकाशवाणी पर कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी चल रहा है, और अब एक बेहतरीन गीत आपके लिए आ रहा है। जब मोहब्बत की बात होती है तो उसमें सिर्फ खुशियां नहीं होती, कई बार गम भी होता है, उसी गम को दर्शाता हुआ ये बहुत ही प्यारा सा गाना सिर्फ आपके लिए।

गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर का दूसरा घंटा आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ। मेरे नाम है नेहा और ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल, जिसे आप दिल्ली एनसीआर में 102.6 फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से आप हमें देश भर में सुन रहे हैं और ऑनलाइन माध्यम से अगर सुन रहे हैं तो विदेश में भी आप हमें सुन पा रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग में 50 घंटे का पारंपरिक योग फाउंडेशन कोर्स आज से यानी कि 2 मई से शुरू हो रहा है। ये 2 महीने का साप्ताहिक बैच रहेगा जिसमें कक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जा रही हैं। इस कोर्स की अगर बात करें तो इसमें योगासन, प्राणायाम, ध्यान और योग दर्शन के मूल

सिद्धांतों की जानकारी दी जा रही है। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहें तो आप इस कोर्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं, यानी कि नेशनल मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग की वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। बाकी किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप यहां से चाह रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या फीस रहेगी, और इसके अलावा मुख्य जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जाएं। और अगला गाना सिर्फ तुम फिल्म से आपके लिए आ रहा है, कुमार सानू और अलका याग्निक की मधुर आवाजों में।

कुछ ना समझ में आए, मैं क्या करूं, ऐसा कुछ कहा गया है इस गाने में। और साथियों, जब जब जिंदगी में हमें ऐसे मोड़ पर आना पड़ता है जहां हमें बहुत से सवालों का सामना करना पड़ता है और हमारे पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं होता, हम असमंजस में होते हैं, फैसला लेना मुश्किल होता है। और सबसे ख़राब बात जो होती है ऐसी घड़ी में, वो ये होती है कि हम टूट रहे होते हैं, हिम्मत हार रहे होते हैं, खुद से यकीन टूट जाता है और अपनी ही अहमियत को हम कम समझने लगते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत होती है एक ऐसे दोस्त की जो पास रहे, जो हमारा हाल दिल समझे और साथ रहकर, पास खड़े होकर बड़े इत्मीनान के साथ हमें ज़िंदगी की वो बातें बताए जो उस समय हम समझना चाह रहे हैं, उस समय हमें उसकी ज़रूरत होती है। और जब कोई नहीं मिलता ना, तो कुछ गाने ऐसे बनाए गए हैं हिंदी फिल्म जगत में, जो गाने उस दोस्त की कमी महसूस बिल्कुल भी नहीं होने देते।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

जितना जल्द होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आकाशवाणी ऐप पर। आपकी वाणी।

0: जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

एफएम रेनबो दिल्ली सुन रहे हैं आप और हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 8:45 पूरे हो चुके हैं और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में नेहा है आपके साथ। दिल की बातें हो रही हैं, साथ ही दिल्ली एनसीआर की बातें भी हो रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि नई दिल्ली नगर परिषद यानी कि NDMC आज 2 मई को यानी कि शनिवार के दिन सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 के बीच NDMC कन्वेंशन सेंटर जयसिंह रोड नई दिल्ली में एक सुविधा शिविर आयोजित कर रहे हैं, जिसमें बिजली, पानी, संपत्ति कर और नागरिक शिकायतों के समाधान के लिए एक ही स्थान पर आपको NDMC के सभी विभागों के कार्यकर्ता वहां मिल जाएंगे, आपको अधिकारी मिल जाएंगे। आप उनसे डायरेक्टली बात करके अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, समस्या है, वहां बातचीत कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपनी समस्या का समाधान इस सुविधा शिविर में जरूर मिलेगा, तो आप यहां जरूर जाएं। और अब अगला गाना जरूर सुने, क्योंकि हर गाना अपने आप में अनूठा होता है, हर गाने की अपनी खूबी होती है, कहीं गम होता है, कहीं ढेर सारी खुशी होती है।

अब जब रंगों की बात हो रही है तो क्यों हम बलम पिचकारी ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है। गर्मी का मौसम है, चलिए थोड़ी सी ठंडक का एहसास हो जाए।

क्या बात है, वाह जी वाह। कौन कहता है कि गर्मी लग रही है भाई साहब। इतने अगर आप रंग भरे और पानी भरे गाने सुनेंगे भाई, इस गाने में बहुत पानी का प्रयोग किया गया है और इससे पहला वाला गाना भी रंगों की बात कर रहा था, तो कहाँ गर्मी लगती है। आप वैसा ही महसूस करते हैं जैसा आप फील करना चाहते हैं। तो देखिए, अच्छे गाने अगर सुन लेते हैं ना तो बहुत अच्छा एहसास ऑलरेडी होने लगता है, जो कि पूरे इस एक घंटे में सच में मैंने तो बहुत मस्ती से धमाल किया। आप मुझे बताएं आपका क्या हाल है, कैसी लगी आपको आज की सैटरडे की प्लेलिस्ट, जिसमें एक गाना अभी और बाकी है। उस गाने को सुनाने से पहले कुछ बातें तो आपसे कर लूं ना, क्योंकि अब मैं आपसे ले रही हूं विदा। और कहते हैं कि हर वो चीज जो शुरू होती है उसका अंत जरूर होता है, जैसे कि इस शो का हो रहा है। लेकिन आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर कार्यक्रमों का सिलसिला तो चलता ही रहता है। हर घंटे एक नया कार्यक्रम, नई बातें, नई जानकारी और नया मनोरंजन हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजाना। और अब नेहा आपसे ले रही है अनुमति। चलते चलते मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगला शो रहेगा दिल के तराने, गाने नए पुराने। संजीव श्रीवास्तव इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे एक महत्वपूर्ण प्रसारण के बारे में, दोपहर 3 से 4 के बीच में रेडियो डॉक्टर आप जरूर सुने, क्योंकि ये एक विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी पर आपकी सेहत के बारे में बात करता है। तो आज का जो विषय रहेगा, होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ आज का विषय होगा। हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर चित्रा वासु, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल दिल्ली से। तो ये है जानकारी। लेकिन विशेष बात रेडियो डॉक्टर की आज की ये है कि ये पुनः प्रसारित कार्यक्रम आज आप सुनेंगे। ये कार्यक्रम आप जरूर सुने, जिसमें आपकी जानकारी में जरूर इजाफा होगा। और अब चलते चलते क्या बात है, मजेदार गाना जिसमें थोड़ी सी गर्माहट जरूर आपको महसूस होगी। और हाँ, चलते चलते हमेशा की तरह वही कुछ खास बातें कि आप सभी अपना ख्याल बहुत अच्छे से जरूर रखिएगा, और अपने शहर का, अपने देश का ख्याल रखना भी आपकी और मेरी ही जिम्मेदारी है। आसपास कूड़ा कचरा बिल्कुल नहीं फैलाएंगे, नियमों का पालन करेंगे और एक दूसरे से प्यार से पेश आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: जी हाँ, आंखों से होके दिल में उतर जाएंगे, दिल में उतर कर तस्वीर बन जाएंगे, नजरों को झुका कर चलना वरना जमाने को तुम्हारी आंखों में हम नजर आएंगे। प्रोग्राम है दिल के तराने, गाने नए पुराने, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक, और मैं आपके साथ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव, उप संजीव। सो एंजॉय।

वेलकम बैक जी, प्रोग्राम है दिल के तराने, गाने नए पुराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। और आपके साथ मैं आपका अपना संजीव शाह संजीव। और आपको बताएं कि इस खास प्रोग्राम में हम आपसे मिलते हैं हर रोज। और अभी इस वक्त बात करें दिल्ली के टेम्परेचर की, तो हमारी दिल्ली में इस वक्त राइट नाउ यानी कि अब 9:00 और हो रहे हैं 18 मिनट, 37 डिग्री टेम्परेचर है। और कुल मिलाकर आज दिन में अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री टेम्परेचर रहने की, और हो सकता है कि ये 28 तक भी पहुंच जाए। और अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 26 डिग्री सेल्सियस यानी मैक्सिमम 37 और मिनिमम 26 डिग्री सेल्सियस आज सैटरडे को रहने की संभावना है। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और ह्यूमिडिटी का लेवल 38% है। हालांकि सुबह जब मैं आया तो मौसम बड़ा प्लीज एंड बड़ा सुहाना सा था, हवाएं ठंडी थीं क्योंकि मौसम में बदलाव हुआ है और बारिश भी हुई है, कई इलाकों में ओले भी पड़े। तो कुल मिलाकर मौसम अभी ठंडा है, थोड़ा अच्छा है, लेकिन गर्मी का जो आने वाला समय है उसके लिए हमें सावधान रहना होगा। और साथ में ही हमें हम आपको सुनाते रहेंगे अपने एक से बढ़कर एक नगमे और एक से बढ़कर एक प्रोग्राम।

दिल के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: बिल्कुल जी, वेलकम बैक है। प्रोग्राम है दिल के तराने गाने नए पुराने, आपके साथ मैं संजीव श्रीवास्तव संजू। आप अगर दिल्ली में, हमारे दिल्ली एनसीआर में सड़कों पे अगर आज जा रहे हैं, सैटरडे है, तो स्मूथ ड्राइविंग आप कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रैफिक बहुत स्मूथ है, हर विकास मार्ग पर अगर आप चल रहे हैं तो वहाँ भी ट्रैफिक स्मूथ है। इसके अलावा अगर आप DND फ्लाईवे पे आप बढ़ रहे हैं आगे नोएडा से, आप दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, वहाँ भी स्मूथ है। और अगर आप बारापुला की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहाँ भी स्मूथ है। कुल मिलाकर सैटरडे का आनंद ले रहे हैं लोग और हम आपके साथ बने हुए हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल के दराने गाने नए पुराने, और आपको सुना रहे हैं एक से बढ़कर एक नगमे।

नए पुराने। नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

money.

जी हाँ, अगला प्रोग्राम 10:05 पे आप सुनेंगे मैचलेस म्यूजिक आर, जिसके में आपके साथ होंगी आकांक्षा मिश्रा, और उसके बाद 11:05 पर बॉलीवुड ट्रेल्स में आपके साथ होंगी दीपांशी अरोरा। फिलहाल मुझे यानी संजीव श्रीवास्तव संजू को दीजिएगा इजाजत अगली मुलाकात तक के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाले बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। आज से राज्य में घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी जो 31 मई तक चलेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के तहत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मछुआरा समुदाय के कल्याण और विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है। कल श्रीकाकुलम जिले के एराकुलम में श्री नायडू ने कोल इंडिया लिमिटेड की सामाजिक दायित्व निधि से मत्स्य सागरमाला कार्यक्रम के तहत स्थापित सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मछुआरों की समस्याओं को समझा था और उन्हें दूर करने के प्रयास कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने शैक्षिक सामग्री वितरण में जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक नई केंद्रीकृत खरीदी नीति लागू की है। मुख्यमंत्री ए रविंद्र रेड्डी ने राज्य भर के विद्यार्थियों को सभी जरूरी शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 15 जून तक की समय सीमा निर्धारित की है। एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म, नोटबुक और अन्य शैक्षिक सामग्री समय पर मिलने पर छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी पुष्टि सरकारी मीडिया ने की है। श्री ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया। फ्रांस समाचार एजेंसी सहित ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। ये राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ते हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सेंस में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चाओ तीन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने च्यू हिंगसांग चे और वांग चीलिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चू यू को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। फुटबॉल में भारतीय टीम एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में

0: जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
1: Welcome back after the short break, and this is 102.6 megahertz Akashwani FM Rainbow, and the program live right now is the Matchless Music Hour with me, your host Akansha Mishra. Time by the studio clock is 32 minutes past 10 a.m. and it means it's time for us to play the second Hindi track of the show. And the track was from the movie Teesri Manzil, which was released in the year 1966 and was sung by Mohammad Rafi. And Rafi sahab was so nervous about the song that he thought the Western energy style of the song, that he practiced for days to get that specific rock star grit in his voice, and he practiced for days and days until he really attained perfection in the song. And the song's name is called O Haseena Zulfo Wali. Please enjoy.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान

0: केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। आज से राज्य में घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी, जो 31 मई तक चलेगी। नागर विमानन मंत्री के रामोन नायडू ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मछुआरा समुदायों के कल्याण और विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही हैं। कल श्रीकाकुलम जिले के एर्रानुकम में श्री नायडू ने कोल इंडिया लिमिटेड की सामाजिक दायित्व निधि से मत्स्य सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
1: We diversified our sources.
2: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया। ये कदम यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा ट्रंप के टर्नबेरी गोल्फ कोर्स में हुए समझौते के 1 साल से भी कम समय बाद उठाया गया है। इसके अंतर्गत अधिकांश यूरोपीय वस्तुओं पर 15% शुल्क निर्धारित किया गया था। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वह अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमरीका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान पर चर्चा के लिए भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में एक बैठक होगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल करेंगे। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। यह आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गुड मॉर्निंग. जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी, आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ जुड़े हैं आप. और समय की बात करें तो सुबह के ठीक 11:06 हुए हैं और ये समय होता है बॉलीवुड ट्रेल्स का. बॉलीवुड ट्रेल्स वही प्रोग्राम जहाँ पर हम आपके साथ साझा करते हैं या आपको अपडेट्स देते हैं बॉलीवुड के बारे में. क्या चल रहा है, क्या कुछ नया है बॉलीवुड में जिसे आपको जानना है जरूरी. तो बस जुड़े रहिए बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में आकाशवाणी एफएम रेनबो पर. मैं हूं आपके साथ दीपांशी.

प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर मेरे यानी दीपांशी के साथ, जहां मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि बॉलीवुड की क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, क्या लेटेस्ट खबरें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की सबसे पहली खबर के साथ, सैफ अली खान की आने वाली जी अपकमिंग थ्रिलर कर्तव्या, उसकी जो रिलीजिंग डेट है वो बिल्कुल उसे अनाउंस कर दिया गया है। वेल, अगर इस मूवी की बात करें तो ये जो मूवी है इसे बनाया जा रहा है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले। वेल, रेड चिली एंटरटेनमेंट जैसा कि आप जानते हैं शाहरुख खान का बैनर है, और अब इस फिल्म को जो रिलीज किया जा रहा है उसे डेट भी मिल गई है, May 15th। जी हाँ, 15 मई को सैफ अली खान की ये जो थ्रिलर है कर्तव्य, जो डायरेक्ट की गई है पुलकित के द्वारा, उसे रिलीज किया जाएगा OTT प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, खुद सुपरस्टार शाहरुख खान ने इसकी जो है घोषणा की है सोशल मीडिया के जरिए कि इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है 15 मई को OTT प्लेटफॉर्म पर। और अगर इस ट्रेलर को देखते हुए इस मूवी की थोड़ी सी बात करें तो ये जो मूवी है ये एक रिवॉल्व कर रही है एक पुलिस ऑफिसर जो स्ट्रगल करता है अपनी

रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने जुड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ये जो दुनिया है ना, इससे जुड़े बहुत सारे तरह के पहलुओं के साथ उन्हें स्ट्रगल करता हुआ देखा जाएगा। और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रोल जो है सैफ अली खान ने इसमें प्ले किया है। और ये जो एक नैरेटिव है, ये जस्टिस, गिल्ट, पावर, साइलेंस, इस तरह की जो एक एस्पेक्ट है इसे एक्सप्लोर करेगा। और अगर इसकी स्टार कास्ट की बात की जाए तो सैफ अली खान के साथ कर्तव्य में आपको नजर आएंगे रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन, मनीष चौधरी और सौरभ द्विवेदी, जो कि की रोल्स पे रहेंगे। और ये मूवी 15 मई को आप देख पाएंगे। तो अगर आप सैफ अली खान के फैन हैं और आपको सैफ की पहली जो मूवीज है वो पसंद आई है, तो इस फिल्म को भी जाइएगा, देखिएगा और अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा कैसी लगी आपको। कर्तव्य।

प्रोग्राम आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ जुड़े हैं आप। और अब बात कल रिलीज हुई मूवी की, और ये जो फिल्म कल रिलीज हुई है इसका नाम है एक दिन। सुनील पांडे द्वारा निर्देशित इस फिल्म, या कहीं एक रोमांटिक ड्रामा, को कल रिलीज किया गया ऑल अक्रॉस थिएटर्स। लेकिन अगर इसके रिस्पांस की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ा सा पिकअप करे, लेकिन पहले दिन जो ओपनिंग इस फिल्म को मिली है वो थोड़ा सा अभी रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं है, जिसे कहेंगे हम थोड़ा ल्यूकवॉर्म सा रिस्पांस मिला है, थोड़ा सा ठंडा रिस्पांस है। इस मूवी की स्टारकास्ट की बात की जाए तो जुनैद खान, जी हाँ, आमिर खान के साहिबजादे जुनैद खान और साई पल्लवी इस फिल्म में आपको एक दूसरे के साथ ऑपोजिट पैर में नजर आएंगे। और अगर इस फिल्म की बात की जाए तो एक रोमांटिक ड्रामा है जिसे डायरेक्ट किया गया है सुनील पांडे के द्वारा और प्रोड्यूस्ड बाय मंसूर खान, आमिर खान एंड अपर्णा पुरोहित, और इसे भी आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले ही बनाया गया है। और इस फिल्म के साथ ही जो साई पल्लवी है इस फिल्म में आपको जो हीरोइन नजर आने वाली है उनका बॉलीवुड में डेब्यू हुआ है। जी हाँ, साई पल्लवी की पहली बॉलीवुड फिल्म है ये, और जुनैद के साथ भी पहली बार नजर आएंगी। और अगर इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा और आपको बताया जाए तो 2016 में बनी एक फिल्म वन डे का रीमेक है। ये फिल्म रीमेक बनाई गई है वन डे की, और रोमांटिक ड्रामा है। आप अगर रोमांटिक मूवीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो जाइए थोड़ा सा इस फिल्म को देखकर आइए, क्योंकि अभी तक जो रिस्पांस देखने को मिला है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो मूवी है थोड़ा सा बेटर रिस्पांस इसे मिले और लोग थिएटर में जाएं, क्योंकि कहा जा रहा है कि साई पल्लवी जो है उनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही चार्मिंग है ऑन द सिल्वर स्क्रीन, और लोगों को, जितने भी लोगों ने अभी तक उसे देखा है, लोगों को उन्हें उनकी जो एक्टिंग

है और उनकी जो पावर ऑफ एक्टिंग है वो बहुत पसंद आ रही है. शी इज़ अ डेफिनेटली शी विल बी गुड टू वॉच ऑन द सिल्वर स्क्रीन, क्योंकि उनकी जो शी बेसिकली कमांड्स योर अटेंशन वेन एवर शी अपीयर्स ऑन द सिल्वर स्क्रीन. सो अगर आप साई पल्लवी को देखना चाहते हैं जुनैद खान के ऑपोजिट, कि इनका जो पैर है क्या इस रोमांटिक ड्रामा को के साथ जस्टिस कर पाएगा, तो जाइए ज़रूर देखिए ये फिल्म और शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक इस फिल्म के बारे में. तो चलिए फिल्म देखने से पहले आइए आपको इसी फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है अरिजीत सिंह की बहुत ही सोलफुल सी वॉइस, बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में इस फिल्म का टाइटल ट्रैक सुनते हैं. क्या पता ये गाना सुनकर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट और आ जाए. भाई आज तो वीकेंड है, शनिवार का दिन है, जाइए अपनी टिकट बुक कीजिए और देखकर आइए कैसे लग रहे हैं साई पल्लवी और जुनैद खान एक दूसरे के ऑपोजिट.

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स, और बॉलीवुड ट्रेल्स में अगली जो खबर है वो इसी फिल्म की हीरोइन से जुड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आलिया भट्ट की, और आलिया भट्ट अब आपको एक स्पेशल रोल में, जी हाँ, एक स्पेशल किरदार में दिखेंगी मूवी तुम्बड़ में। अगर हम तुम्बड़ 2 की बात करें, जो कि सोहम शाह और उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी आपको नजर आएंगे, उसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट रोल में आलिया भट्ट भी आपको नजर आने वाली हैं। आई एम श्योर हम लोग इस स्पेशल रोल को देखने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस मूवी की बात की जाए तो ये जो मूवी है ये बहुत ही अंडररेटेड एक हॉरर ड्रामा है। और तुम्बड़ जो मूवी पहले रिलीज हुई थी, जो इसका पार्ट 1 पहले रिलीज हुआ था, उसे काफ़ी समय के बाद बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो लेट्स सी एंड होप कि जो तुम्बड़ 2 है वो हम सभी को सरप्राइज करे। और साथ में अभी इसे अंडर रैप्स रखा गया है कि आलिया भट्ट उसमें क्या रोल प्ले करने वाली हैं, लेकिन नैरेटिव्स को आगे ले जाने के लिए, मूवी को आगे बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि बहुत ही स्पेशल किरदार में नजर आने वाली हैं आलिया भट्ट।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह के मतगणना कर्मी का चयन कर सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को कराया गया था। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के पहले 2 घंटों में 16% से अधिक वोट पड़े। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथों और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 4 मई को होगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
1: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को लोकसभा के 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते करेंगे। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी, आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ जुड़े हैं आप। और ये समय जिसका भाई आप सभी करते हैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार, क्योंकि ये वो समय है, उस प्रोग्राम का समय है जब हम आपके आदेश का पालन करते हैं। वेल, प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में आपका स्वागत है। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ दीपांशी, लेकर आई हूँ प्रोग्राम मेरे वाला सॉन्ग, क्योंकि वही प्रोग्राम है भाई जिसमें आप हमें बताते हैं कि आज आपका क्या गुनगुनाने का मन है।

आज आपका क्या सुनने का मन है ना, और बस आप हमें आदेश करें, आप हमें आज्ञा करें और हम आपकी उस आज्ञा का पालन करेंगे। हम प्ले करेंगे वो सभी नगमे, वो सभी गीत जो आप सुनना चाहते हैं, जो आज आप गुनगुनाना चाहते हैं या अपने दिल के जज्बात किसी तक पहुंचाना चाहते हैं। करना बहुत ही आसान सा काम है। बहुत सारे मैसेजेस जो है ना, मैं अपने स्क्रीन पे ऑलरेडी देख रही हूँ, लेकिन जो भी अभी लिसनर्स हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर से बता देते हैं। बहुत ही आसान सा काम करना है आपको, आपको अपना मैसेज हम तक पहुँचाने के लिए हमारे नंबर 9868107070 पर टाइप करना एक मैसेज, लिखें अपना नाम, उस खूबसूरत से शहर का नाम जहाँ से आप हमारे साथ जुड़े हैं, वो गाना जो आप सुनना चाहते हैं, और उसे भेज दें हमारे नंबर 9868107070 पर। और चलिए, जो हमारे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा ना, इन्हीं की रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए ये पहुंचा है मोहम्मद इम्तियाज और सलमा बेगम का, कीर्ति नगर दिल्ली से जुड़े हैं, और इन्हीं की रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए ये पहला गाना डेडिकेट करते हैं आपको। इंजॉय।

आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो के साथ. प्रोग्राम चल रहा है मेरे वाला सॉन्ग. ये वही प्रोग्राम है जहां पर आप का क्या सुनने का मन है, आज आपका मन क्या सुनना चाहता है, आप अपने जज्बात अगर किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो सारे जो नगमे हैं, वो सारे जो गीत हैं, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी पसंद को पूरा करने की. लेकिन एक प्रॉमिस मैं प्रोग्राम के शुरुआत में ही आप सबसे कह दूँ, इतने सारे मैसेजेस, इतना प्यार आपका हम सभी तक पहुंचता है और इन सभी सॉन्ग्स को एक प्रोग्राम में पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप भी समझते हैं कि समय की भी सीमा है और एक घंटे के प्रोग्राम में इतने सारे गाने जो है उसे प्ले करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. लेकिन आपसे ये प्रॉमिस ज़रूर करती हूँ कि अगर आपका मैसेज हम तक पहुँच रहा है तो आपका मैसेज शामिल होगा और आपका नाम जो है ना वो मैं ज़रूर शामिल करूँगी. ये प्रॉमिस चलेगा ना? तो बस आप नाराज़ ना होइएगा, क्योंकि बहुत बड़े नाराज़गी के जो मैसेजेस ना हम तक पहुँचते हैं कि आपने हमारे पसंद का गाना नहीं सुनाया. तो प्रॉमिस करती हूँ कि आपका नाम ज़रूर शामिल होगा. चलिए अपने मैसेजेस का सिलसिला एक बार शुरू करते हैं फिर से और देखते हैं कि हमारे पास किस किस का मैसेज पहुंचा है. और सबसे पहला जो मैसेज आया था ना वो हमें पहुंचा है, उनका नाम ढूंढ रही हूँ मैं, हितेंद्र दास, मानस दास, वर्षा, शिफाली और माधव दास. ये हमारे साथ जुड़े हैं आसाम से, श्री भूमि स्टेट आसाम से, और इन्होंने एक गाने की फरमाइश हम तक पहुँचाई है और कहते हैं कि बहुत प्यार करते हैं आकाशवाणी से और प्रोग्राम्स को इन्जॉय करते हैं. और जो गाना इन्होंने सुनने की फरमाइश की ना वो भी हम सभी को डेडिकेट किया है इन्होंने. बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े. और अगला मैसेज हम तक पहुंच रहा है लक्ष्मी, अरविंद, निशा, प्रमोद एंड उनके जो मम्मी पापा हैं प्रोग्राम को सुन रहे हैं और उन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है. और ये फरमाइश हम तक पहुंची है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से. खूबसूरत सी जगह है और मेरा बहुत मन है कि एक बार मैं जाऊं वहां. और इतनी खूबसूरती है उस जगह में, तो उस खूबसूरती को जब तक हम अपनी आँखों से नहीं देखें ना तो बताइए क्या ही फ़ायदा है कहीं घूमने का. तो कोशिश ये रहेगी जल्दी से आपकी इस खूबसूरत जगह जो है ना इसे देखने के लिए वहाँ पहुँचूँ. और अगला मैसेज जो है नरेंद्र सोनी जी का पटियाला से आया है. और देखिए लिखते हैं कि आप हमारे पसंद का गीत तो सुनाते नहीं हैं, तो इसलिए आज अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए. देखिए आपकी जो पसंद है ना वही हमारी पसंद है, तो शायद आपकी किसी प्रोग्राम में आपकी पसंद चाहे भले ही पूरी ना हुई हो, बट आप ही के जैसे और भी लिसनर्स हैं और भी हमारे दोस्त हैं जो हर बार इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और हमारे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर जितने प्रोग्राम्स हैं उन सभी प्रोग्राम्स पे आप जुड़ते हैं और अपना साथ बना के रखते हैं हमारे साथ. तो शायद आपकी फरमाइश पूरी ना हुई हो पर किसी ना किसी दोस्त की तो फरमाइश पूरी हुई होगी, तो उसे ही इंजॉय कर लीजिए. अगला मैसेज हम तक पहुंचा है पंकज जुड़े हमारे साथ अमरावती महाराष्ट्र से. और उसके बाद जो अगला मैसेज हम तक पहुंचा है वो आया है रोहिणी दिल्ली से, मैना, मयन, कानिक, कार्तिक, सीमा, ये सभी जुड़े हैं और एक गाने की फरमाइश पहुँचाई इन्होंने हम तक. अगला मैसेज रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम गुप्ता और सुंदर गुप्ता, ये ओखला संगम विहार दिल्ली से जुड़े हैं और लिखते हैं किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल कीजिए. अगला मैसेज हम तक पहुंचा है यूपी हकीमगंज से और ये लिखने वाले हैं आसिफ अंसारी, तालिब शेख, मुकीम शेख, इमरान शेख, बादशाह. गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है कोलार रोड भोपाल से रामबाबू मालवीय, मनीषा मालवीय का मैसेज हम तक पहुंचा है और इन्होंने भी ये गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई. मोहम्मद फुरकान ग्राम सियाल से जुड़े हमारे साथ, इन्होंने गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है. हेलो मैम, मैं आदित्य हूँ. मेरे वाले सॉन्ग में मैं बहुत दिनों से प्रोग्राम को काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, लिखते हैं कि बहुत अच्छा लगता है इन्हें, झारखंड से हैं ये और इन्होंने भी ये गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है. और प्रमीला जुड़ी हमारे साथ

कर्नाटका से, और इन्होंने एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। तो चलिए हम आपके हैं कौन से ये बहुत ही प्यारा सा जो गाना है ये सुनते हैं। एंड आई होप प्रमिला आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और आपके साथ साथ हमारे जितने भी दोस्त इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी इस गाने को इंजॉय करेंगे।

अगर आप अभी अभी जुड़े हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ, तो आपको फिर से एक बार बता दें, प्रोग्राम चल रहा है मेरे वाला सॉन्ग, और आप भी अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई ऐसा जज्बा जो किसी गाने के जरिए आप किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने किसी करीबी तक पहुंचाना चाहते हैं, नियर डियर वन को कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो अपना वो पसंद का गाना लिख भेजिए। आपको करना है बहुत ही आसान सा काम, अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए और मैसेज हमें भेज दें 9868107070 पर। 9868107070 है वो नंबर जिससे आपका वो जो प्यार भरा संदेश है वो हम तक पहुंच जाएगा। प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी FM रेनबो पर।

आप सब जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग, मैं हूं आपके साथ दीपांशी। और अगर आपने अभी तक मैसेज नहीं किया है तो जल्दी से अपना मैसेज भेज दीजिए, हमारा नंबर है 9868107070 9868107070। आइए मैसेजेस का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं। अगला जो मैसेज हम तक पहुँचा है ये पहुँचा है प्रवीण जी का, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं हमारे साथ एक गाने की फरमाइश को लेकर। और एक ही दोस्त ने हमें मैसेज भेजा है, मैं सिर्फ इनका नाम पढ़ पा रही हूँ क्योंकि बाकी का जो मैसेज है ना मुझे समझ नहीं आ रहा है। बबन कुमार दास, गयंती देवी, सपना सुहानी, प्रवीण जुड़े हमारे साथ बिहार से। लेकिन शायद एक गाने की फरमाइश उन्होंने पहुंचाई है लेकिन उसके बाद का जो मैसेज है ना सॉरी मुझे समझ नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है। नौशाद चौधरी जुड़े हमारे साथ दिल्ली से और इन्होंने भी गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई। गुड आफ्टरनून मैम, आप कैसी हैं? प्रकाश जुड़े हमारे साथ दिल्ली से और मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे, मस्ट बी डूइंग वेल। और ये अगला जो मैसेज है, सौरभ अनेजा जुड़े हमारे साथ, लिखते हैं मेरी कोई चॉइस नहीं होती, मैं बस शो को इन्जॉय करता हूँ। तो सौरभ इन्जॉय करते रहिए गाने गानों को और इस प्रोग्राम को, जुड़े रहिए हमारे साथ। गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन से जुड़े हमारे साथ और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुँचाई है और लिखते हैं कि जो ये गाना है ये राजेश खन्ना जी का गाना है और लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, जिंदगी की सच्चाई से बहुत मिलता जुलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में। राजेश कुमार चौहान जुड़े हमारे साथ जालंधर से, लिखते हैं एक पुरानी फिल्म है नूरी, इस फिल्म का टाइटल ट्रैक ये सुनना चाहते हैं। चलिए राजेश कुमार चौहान साहब की इस फरमाइश को पूरा करते हैं और ये जो गाना फिल्म नूरी से नितिन मुकेश की आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में, इंजॉय करते हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ जुड़ रहे हैं आप प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, मैं हूं आपके साथ दीपांशी और यहां पूरी कर रही हूं आपकी फरमाइश। तो अगर आप भी कोई गीत कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो आप भी अपनी जो पसंद है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर है 9868107070, 9868107070 है वो नंबर जिससे आपकी वो जो रिक्वेस्ट है वो हम तक पहुंच जाएगी। और जो मैसेजेस हैं आइए उनका सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं। ये जो मैसेज हमें पहुंचा है ये मेरठ से पहुंचा है और ये लिखते हैं, मुझे सॉन्ग नहीं सुनना, मुझे बस अपनी प्यारी भतीजी प्रव्या भारद्वाज को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और लिखते हैं, उन्हें कहना चाहता हूँ कि पापा की तरह एक अच्छी इंसान बनना, खूब खुश रहो, उन्नति करो। तुषार गुप्ता का ये मैसेज है। तुषार जी, आपकी भतीजी प्रव्या भारद्वाज को हमारी ओर से भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, वो सब कुछ पाएं जो आप पाना चाहती हैं और ऊपर वाले की कृपा जो है ना वो आप पर हमेशा, उनका ढेरों आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। और आप सॉन्ग नहीं सुनना चाहते पर आपने रेडियो से रेडियो के साथ ट्यून इन किया है, जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, तो गाना तो आपको सुनना ही पड़ेगा भले ही आपकी कोई चॉइस ना हो। तो कोई बात नहीं, अपने बाकी दोस्तों की चॉइस से आप ये गाने को इन्जॉय कीजिए। और मैसेज जो हम तक पहुंचा है ये है मोहम्मद फुरकान साहब का, ये मैसेज हम तक पहुंचा है और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। काफी सारे ऑप्शंस इन्होंने लिखकर भेजे हैं, चलिए मैं कोशिश करती हूँ अगर आपकी चॉइस को मैं पूरा कर पाई और आपकी पसंद से गाना प्ले कर पाई तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और ये अगला जो मैसेज है ये मैसेज पहुंचा है हमें रविंद्र, इनका नाम कहाँ है, इन्होंने अपना नाम नहीं भेजा है और बस गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। दोस्त अपना नाम तो भेज दीजिए, मेरा वाला कौन सा सॉन्ग ये लिखकर भेजा है इन्होंने, लेकिन आपने अपना जो नाम है वो नहीं लिखा है। कैसे पहचाने आपको हम कि आपने क्या आपका नाम क्या है, आप कहाँ से जुड़े हैं, मैं गेस नहीं कर पाऊंगी आपका नाम। और अगला ये जो मैसेज है ये हम तक पहुंचाया है संदीप वर्मा, यूपी ज़िला लखीमपुर खीरी से जुड़े हैं और उन्होंने गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। जी संदीप, आपका जो गाना है वो बिल्कुल हम प्ले करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बाकी जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं ना उनके भी नाम शामिल कर देते हैं, जल्दी से उनके मैसेजेस भी पढ़ देते हैं। और अगला ये मैसेज हम तक पहुँचा है देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से, सारिका जुड़ी है हमारे साथ एक गाने की फरमाइश लेकर, मोनिका जुड़ी हैं गढ़वाल से और सारे गाने हमारी पसंद के हैं। क्या बात है मोनिका, आप सारे गाने को इंजॉय कर रही हैं। देखिए संगीत तो संगीत है, शायद मेरा भी जवाब यही होगा कि संगीत तो संगीत है और संगीत कहीं ना कहीं हमारी रूह से जुड़ा होता है, तो जो गाने हैं चाहे वो कोई भी गाना बज रहा हो हम सारे गाने को एंजॉय कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। और ये मैसेज जो है इन्होंने लिखा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए हम।

पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। किशन वंजनानी, नीलम, स्वाति, कीशु जुड़े हैं हमारे साथ आनंद विहार से। और अगला मैसेज ये आया है, ये बारिश में भीगता हुआ मैसेज जो है ना, ये मीरा सिंह का पहुंचा है हमारे साथ सिलचर आसाम से। लिखती हैं कि हमारे यहाँ खूब बारिश हो रही है, वेदर जो है बहुत ठंडा हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे फिर से ठंड आ गई है। चलिए, यहाँ दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है और आप वहाँ ठंडा ठंडा मौसम रिमझिम बारिश की जो बूंदें हैं उसे एंजॉय कर रही हैं, और बस वो ठंड जो है ना और वो जो फुहारे हैं आपके मैसेजेस के जरिए हम तक यहाँ भी पहुंच गई हैं। कविता जुड़ी हमारे साथ टीवी गढ़वाल से और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। ये मैसेज जो है ये आया है छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा, इन्होंने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। और अगला जो मैसेज है, आदित्य, हमने आपका मैसेज शामिल कर लिया है, हमें पता चल गया है आप झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। और ये मैसेज आया है कोमल चंद साहू का और छत्तीसगढ़ से, उन्होंने गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई। ये लिखते हैं, ओके जी, टाइम कम है तो नाम ही बोल दीजिए, दीजिए आपका नाम ले देते हैं। तो लिखते हैं कि आप नाम ही बोल देंगे तभी हम हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे। चलिए, आप हैप्पी हैप्पी हो जाइए। प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा जनकपुरी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं। और इसके बाद कस्बा गुनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज फरीन, फरहान फारिया और ताहिरा जुड़े हैं हमारे साथ, कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं। भगवती जी जुड़ी हैं हमारे साथ न्यू दिल्ली से, कार्यक्रम को एंजॉय कर रही हैं। शाकिर खान, फरमान खान, विशाल कुमार, ये पालम दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ। और रोहित श्रीवास्तव जुड़े हैं हमारे साथ और कहते हैं कि इनकी पसंद का एक गाना सुना दिया जाए। चलिए, अब हमारे एक दोस्त की पसंद का गाना सुना देते हैं और उसके बाद फिर से अपने मैसेजेस का सिलसिला इसी तरह से जारी रखेंगे। लता मंगेशकर की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सोलफुल आवाज़ में एंजॉय कीजिए ट्रैक

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर 9:00 बजे।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

वेलकम बैक, आप सब जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ। प्रोग्राम चल रहा है मेरे वाला सॉन्ग। अगर आपने अभी तक मैसेज नहीं भेजे हैं ना, तो जल्दी से भेज दीजिए इससे पहले कि कहीं समय ना निकल जाए। हमारा नंबर है 9868107090986810707 है वो नंबर जिससे आपका जो प्यार भरा संदेश है ना, वो हम तक पहुँच जाएगा। चलिए एक बार फिर से जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपने मैसेजेस का सिलसिला। और ये जो अगला मैसेज है, ये हमें भेजा है संदीप वर्मा ने लखीमपुर खीरी से। ये शायद इनका मैसेज हमने शामिल कर लिया था। और उसके बाद अगला मैसेज हमें अमन विश्वकर्मा ने भेजा है मध्य प्रदेश से। और अगला मैसेज उसके बाद हमारे पास आया है, सोनू जुड़े हमारे साथ कुंडली से, और इन्होंने लिखा है आपकी आवाज़ और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया आपका। आप प्रोग्राम को इसी तरह से इंजॉय करते रहिए। और अगला मैसेज हमें भेजा है ये बबन कुमार दास रौनिया गया बिहार से जुड़े हैं हमारे साथ। और दोस्त आपका मैसेज भी हमने पहले भी शामिल कर लिया था। अगला मैसेज हमें मिला है अमित टंडन जी जुड़े हैं हमारे साथ मेरठ से गाने की फरमाइश लेकर। इसके बाद कविता का मैसेज भी हमने पहले शामिल कर लिया है। और एक मैसेज और पहुंचा है हमारे पास, शहनवाज झारखंड से जुड़े हैं हमारे साथ, एक गाने की फरमाइश उन्होंने पहुंचाई है हम तक। शुक्रिया इन्जॉय, ये मैसेज पहुंचा है हम तक। भेजने वाले का नाम अभी भी नहीं मिला है। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से एक मैसेज हम तक पहुंचा है, दुर्गेश नागनपुरे वंदना बाबू दिव्यांश सूरज कुमार डाकसे का। और हमें आपकी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। चलिए आप ही की पसंद को हम पूरा कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि जितने अधिक से अधिक मैसेज हों उन्हें शामिल कर लिया जाए। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी जुड़े हैं हमारे साथ सोनीपत से, और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुँचाई है। और अब फुरकान साहब आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं और लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ट्रैक। आप बहुत मैसेजेस करके आपने इस गाने की रिक्वेस्ट कीजिए। आई होप आप अपना गाना सुन के इंजॉय करेंगे।

आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, प्रोग्राम चल रहा है मेरे वाला सॉन्ग। अगर आपने अभी तक मैसेज नहीं पहुंचाया है तो जल्दी कीजिए, घड़ी के साथ समय जो है ना जल्दी जल्दी से भाग रहा है।

है वो पहुंचा है पालम से, शाकिर खान, फरमान खान, विशाल, ये सभी जुड़े और इन्होंने गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। ये एक मैसेज पहुंचा है, कह रहे हैं कि मैम क्या हमारा मैसेज और सॉन्ग प्ले नहीं होगा, क्या आपके पास पहुंचा नहीं है? आपका मैसेज बिल्कुल था, हमारे पास पहुंच गया और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका जो रिक्वेस्ट है उसे प्ले करने की। गुड आफ्टरनून, ये मैसेज आया है मनमोहन सिंह जी का और इन्होंने यूपी रामपुर जिले के मंडवा हसनपुर गांव से मैसेज हम तक पहुंचाया है। शादियों का सीजन चल रहा है और इसीलिए एक गाना भेजा है इन्होंने जो ही अपने दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं जिनकी शादी होने वाली है इसी हफ्ते। चलिए, आपके जो दोस्त हैं ना उन्हें हमारी ओर से भी शादी की ढेरों शुभकामनाएं। और अगला मैसेज हमें पहुंचा है कुंवर लोकेंद्र सिंह का, राजगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और इन्होंने गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। अगर मैं सही से आपका मैसेज समझ पाई हूँ तो आप गाना जो सुनना चाहते हैं वो मूवी कोयला का है, क्योंकि आपके साथ एक और दोस्त ने हम तक कोयला मूवी के एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट पहुंचाई है। तो चलिए कोशिश करते हैं आपके इस गाने को प्ले करने की। अगला जो मैसेज हम तक पहुंचा है ये आया है अमर रमेश कुमार खत्री साहब का और मास्टर किशन लाल, और ये लिखते हैं कि आपके प्रोग्राम के सॉन्ग की कलेक्शन जो है ना बहुत ज़बरदस्त लाजवाब है। ये मेरी सॉन्ग सिलेक्शन नहीं है, ये हमारे जितने भी लिसनर सुन रहे हैं और जितने भी हमारे दोस्त जुड़े हैं ना इस कार्यक्रम में, ये उनकी सॉन्ग चॉइसेस हैं जिन्हें हम यहाँ इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। तो आप उन तक अपना ये प्यार भरा जो संदेश है ना उन तक पहुँचाइए। हमने पहुँचा दिया है कि आप जो भी गाने की रिक्वेस्ट हम तक पहुँचा रहे हैं, बाकी जितने भी सारे लिसनर्स हैं ना उसे पसंद कर रहे हैं। और खुशी जुड़ी हमारे साथ कर्नाटका से, इन्होंने गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। शैलेंद्र वर्मा जुड़े हैं हमारे साथ, ये कहाँ से जुड़े हैं हमारे साथ ये नहीं लिखा है, और इन्होंने भी गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई। आकाश ग्रेटर नोएडा से जुड़े हैं गाने की फरमाइश के साथ। और प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा जनकपुरी से, इनका मैसेज हम पहले पढ़ चुके हैं। और एक और दोस्त जिन्होंने हमें कोयला फिल्म के गाने की रिक्वेस्ट पहुँचाई है, उनका नाम है नवलू वारक मलपान, ये गोवा से जुड़े हैं हमारे साथ और कह रहे हैं कि मैं इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा प्रोग्राम जो है वो इंजॉय करते हैं, सुनते हैं। तो इन्होंने लिखा है आज हो सके तो इस फिल्म का गाना प्ले कर दीजिए। चलिए, हमारे दो दोस्तों ने हम तक ये गाने की फरमाइश पहुंचाई है। तो चलिए, आप अपना गाना इंजॉय कीजिए और आपके साथ साथ बाकी जितने भी लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आई होप दे विल आल्सो इंजॉय दिस सॉन्ग।

समय बहुत अधिक नहीं है, तो जल्दी से जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं उनके फटाफट से मैसेज पढ़ देते हैं। और ये अगला जो मैसेज है, मैसेज तो बहुत सारे पहुंच जाते हैं लेकिन टाइम कम होने की वजह से प्यारे दीपांशी जी को कंफ्यूज होना पड़ रहा है, किसका मैसेज पढ़ूं, कौन सा गाना प्ले करूं, बहुत टाइम की तंगी है भाई। ये मैसेज हम तक पहुंचा है हमारे एक दोस्त ने। वेल, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, कोशिश सिर्फ इतनी रहती है कि आप सब जब अपना इतना कीमती समय निकाल के मैसेज करते हैं ना, तो भाई आपका मैसेज पहुंचा है तो ये तो एयर होना चाहिए ना। तो बस ये कोशिश करती हूँ कि सारे मैसेजेस शामिल हो जाएं, पर क्योंकि सिर्फ एक घंटे का समय है तो सभी गानों को शामिल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो बस अपनी इस कोशिश मैं पूरी करने की कोशिश करती हूँ कि आप सभी का नाम जो है वो शामिल हो जाए। जल्दी से आगे पढ़ लेते हैं। अमन जुड़े हैं हमारे साथ दिल्ली से, इन्होंने एक गाने की फरमाइश हम तक पहुँचाई। लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु, और ये लिखते हैं आज हम लेट हो गए, जरा हमारी भी हाजिरी लगा देना। लेट आए हैं पर आप फिर भी दुरुस्त आए हैं जनाब, आपका मैसेज भी शामिल हो गया और आपकी हाजिरी भी लग गई है। और अगला जो मैसेज हम तक पहुंचा है ये अमर रमेश कुमार खत्री जी का पहुंचा है और इन्होंने गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। लिखते हैं आपका धन्यवाद और उन सभी फ्रेंड्स का धन्यवाद जो इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट भेजते हैं। अगला मैसेज हमें पहुंचा है

ये वाजिद शेख, निज़ाम और बबू यादव, इन्होंने अपना मैसेज पहुंचाया। एक और लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं पहली बार मैसेज इन्होंने किया है, अंकित, अर्जुन, विमल, सुमित और बहुत से लोग राजवीर नगर से इनका मैसेज हम तक पहुंचा है। और अगला मैसेज जो पहुंचा है टुम्पा, उनका मैसेज आया है और एक गाने की फरमाइश के साथ जुड़े। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता जुड़े हैं हमारे साथ, उन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई। और गुरमीत कौर जीरकपुर पंजाब से जुड़ी है हमारे साथ एक गाने की फरमाइश के साथ। अनूप कुमार झारखंड से जुड़े हैं और एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। और ये जो लास्ट सॉन्ग जिन्हें हम सुनाने वाले हैं, जिनकी फरमाइश को पूरा करने वाले हैं, उनका नाम है सोम गुप्ता, जो चंडीगढ़ से जुड़े हैं हमारे साथ और इन्होंने इस गाने की फरमाइश हम तक पहुँचाई है।

वेल, आप तो मुझे भी थैंक यू बोलना पड़ेगा बिकॉज दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग और मुझे ये गाना जो है बहुत पसंद है. तो सोम गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने की रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाने के लिए. और इसी प्यारे से खूबसूरत से गाने के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ. जाना इसलिए है क्योंकि एक बार आपसे फिर से मिलने के लिए आना है. भाई जाऊंगी तभी तो दोबारा मिलने आ पाऊंगी ना. आप आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ इसी तरह से अपना ये खूबसूरत सा साथ बनाए रखिए क्योंकि प्रियंका आ चुकी हैं लेकर कार्यक्रम आशियाना. रहेंगी आपके साथ अगले पूरे एक घंटे और देखिएगा आज आशियाना में क्या अलग सा, कुछ डिफरेंट सा, क्या खूबसूरत टॉपिक आपके साथ लेकर आई है और क्या साझा करेंगी. जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ. मुझे यानी दीपांशी को दीजिए इजाजत. मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह से गुनगुनाते हुए खूबसूरत से नगमों के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट वीक अहेड. और हाँ, उसके साथ साथ इंजॉय.

अमेजिंग अमेजिंग. ये गाना सिर्फ एक मेलोडी नहीं है गाइस, बल्कि एक एहसास है इंतजार का, दूरियों का. जी हाँ, ये एक सोल्जर की दिल की आवाज़ है इस गाने में. उनके एहसास हैं और घर से मिलने की एक तलब है, घर यानी आशियाना. और जो इस घर में रहने वाले लोग हैं ना, उन वो जो कोशिश करते हैं कि एक बार लेटर में लिखने की, बॉर्डर पे खड़े अपने उस भाई के लिए, बेटे के लिए, हस्बैंड के लिए, वो जो एक फीलिंग होती है, घर से एक फ़ोन आया है, घर से एक चिट्ठी आई है, वो उसके लिए क्या

कहा जाए, आप जानते होंगे घर क्या होता है, आशियाना क्या होता है। हेलो एंड नमस्ते इंडिया। इस खुले आसमां तले जमी के आगोश में, इस खुले आसमां तले जमी के आगोश में है एक छोटा सा जहां मेरा, मैं कहती हूँ जिसको अपना आशियाना। किया इकट्ठा इसे चुन चुन कर तिनके, है तमन्ना की हर शाख पे इसके फूल महके, और आए कभी ना इस पे खिजा, मैं कहती हूँ जिसको अपना आशियाना। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना शुरू हो चुका है, जहाँ आज के एडिशन में मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। गुड आफ्टरनून।

पूरा इंडियन वेडिंग वाइब क्रिएट करता है ना ये ट्रैक। सीरियसली बहुत ही प्लेजेंट ट्रैक है। अभी आपने सुना आकाशवाणी रेनबो पर, जहां मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। सब कुछ पास है फिर भी दिल उदास सा क्यों है, बताइए। सब कुछ पास है फिर भी दिल उदास सा क्यों है, हर खुशी के बीच एक खाली सा

एहसास क्यों है, शोर में भी गूंजता एक तन्हा सा सन्नाटा, इसलिए हर लम्हा जैसे खुद से ही जुदा सा लगता है। बेसिकली बंधुओं, हर पल कुछ कुछ मिसिंग सा इसलिए लगता है, है ना। कभी कभी लगता है ना कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी है, घर वही है, लोग वही हैं, हंसी भी वही है, फिर भी दिल पूरी तरह से खुश नहीं होता। और धीरे धीरे समझ में आता है कि ये कमी असल में किसी चीज़ की नहीं, कंपैरिजन की वजह से एक खाली जगह है। ऐसा देखा जाता है ना दोस्तों कि आजकल हमें से एक मतलब बहुत से लोग, बहुत से दोस्त मेरे एक अजीब सी रेस में दौड़ रहे हैं, कई बार हम भी उस रेस का हिस्सा होते हैं जहां फिनिश लाइन कभी नहीं दिखती है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए जब किसी का परफेक्ट होम, लग्जरी लाइफस्टाइल या हैप्पी होम की पिक देख लेते हैं ना, तो धीरे धीरे अपने घर को कंपेयर करने लगते हैं और वहीं से शुरू होती है खामोश सी बेचैनी। इस कंपैरिजन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम ग्रैटिट्यूड को धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। जी हाँ, जो थैंक यू होना चाहिए अपने भगवान का, जो चीज़ें हमें मिली हैं उसको, उस ग्रैटिट्यूड को हम धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। जो चीज़ें पहले हमें खुशी देती थी, वो एक एहसास, बैठकर चाय पीना, फैमिली के साथ हंसी मजाक, एक सिंपल सा डिनर, अब वो सब ऑर्डिनरी लगने लगता है क्योंकि हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस को दूसरों के स्टैंडर्ड से जोड़ लिया है। इस भागम भाग वाली दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हर घर की अपनी कहानी है, अपनी स्ट्रगल्स हैं, अपनी खुशियां हैं। जो बाहर से परफेक्ट दिखता है जरूर नहीं कि अंदर से वैसा ही हो, पर कंपैरिजन हमें ये समझाने का मौका ही नहीं देता। शायद वक्त आ गया है थोड़ा रुकने का, अपने घर को फिर से महसूस करने का, उन लम्हों को अप्रिशिएट करने का जो हमारे अपने हैं, रियल हैं, बिना फिल्टर के हैं। क्योंकि असली सुकून किसी और जैसा बनने में कहाँ, बल्कि अपने आशियानों को समझने में है। बात करेंगे आशियाना प्रोग्राम के आज के एडिशन में इसी सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। फिलहाल ये गाना आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ, जो अपनी आवाज़ को विराम देती है।

ये शहर बड़ा पुराना है। सीरियसली वैसे ये एक जगह की बात नहीं करती बल्कि इंसान के अंदर के सफ़र को, तन्हा सफ़र को भी रिफ्लेक्ट करती है ना। एक अजीब सी उदासी है, एक अजीब सा ठहराव भी है, और एक ऐसा लगता है कि गाना वक्त रहते कुछ रुक रुक के हमें कुछ कहना चाहता है। शायद ही मैं शायद यही ये गाना एक इंट्रोस्पेक्ट मूड पे था। मुझे ये गाना बहुत पसंद है और मैं इस गाने में खो गई थी, और मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं यादों पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यादों के सफ़र पे चले जाते हैं अपने तन्हा सफ़र में। उलझ जाती हूँ सुलझाते हुए कई पहेलियाँ, उलझ जाती हूँ सुलझाते हुए कई पहेलियाँ, हैं दामन से लिपटी हुई यादों की रंग बिरंगी तितलियाँ। उड़ती हुई बारी बारी लेके मन चाहे उड़ारी, उड़ती हुई बारी बारी लेके मन चाहे उड़ारी, मुस्कुराती हुई नम आँखें छलकती है बारी बारी। जारी है सफर फिर भी उमंगों की उड़ान के साथ, खड़े हैं तूफानों के आगे उसी शान और मान के साथ। आकाशवाणी रेडियो पर प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और आज हम बात कर रहे हैं कि दूसरों से कंपेयर करते कहते कैसे अपना आशियाना ही कंपैरिजन जोन बन जाता है। बात कर रहे हैं उस खोए हुए सुकून की। फिलहाल अभी एक डांसिंग ट्रैक, एक जब एक वेडिंग में इससे पहले जो गाना लगाया था वाह वाह राम जी, कैसे इंडियन वेडिंग वाइब क्रिएट करता है, ये जो गाना है ये भी इस तरह का ही है। हमारे इंडियन वेडिंग्स का ना अलग ही मज़ा होता है, पूरे घर के सारे सदस्य इकट्ठे होते हैं ना, वो जो एक टाइम होता है वो काफ़ी इंजॉयमेंट वाला होता है। तो चलिए इसी गाने को सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर।

वैसे गुड़नल इश्क, मीठा इश्क की बात क्या करें. जी हाँ, उफ इश्क, प्यार, मोहब्बत. चलिए, वैसे हम ये नॉर्मल इश्क की बात करें, कमर्शियल इश्क की बात नहीं कर रहे. इश्क जो रूहानी होता है उसकी तो अलग ही बात होती है. चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. रियल लाइफ की नॉइज में इतना खो गए हम, रियल लाइफ की नॉइज में इतना खो गए हम कि अपनी रियल लाइफ की खुशियों की मेलेडी को ही म्यूट कर दिया. अब क्या ही बताएं दोस्तों, कंपैरिजन ने बस इतना सा काम किया, घर को घर कम अब कंपैरिजन जोन ज्यादा बना दिया. कभी नोटिस किया आपने कि पहले घर बस घर घर होता था? जी हाँ, थोड़ा सा बिखरा हुआ, थोड़ा सा सिंपल, पर दिल को सुकून देने वाला. और अब कई बार ऐसा होता है ना कि हर चीज को देखते ही कंपैरिजन दिमाग में आ जाता है. सोशल मीडिया पर सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है जब हम किसी की पोस्ट देखते हैं, खूबसूरत घर, हंसी हुई फैमिली, सॉर्टेड लाइफ, और धीरे धीरे हम अपनी लाइफ को उनके फ्रेम्स में फिट होने की कोशिश करने लगते हैं. यहीं से शुरू होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर. हमारा घर ऐसा क्यों नहीं है? हमारी लाइफ इतनी परफेक्ट क्यों नहीं है? उनके घर का इंटीरियर इतना स्टाइलिश है, उफ, उनकी फैमिली हर वीकेंड आउटिंग पे जाती है, उनके बच्चे कितने टैलेंटेड है, उनका पार्टनर कितना केयरिंग है. ऐसे थॉट्स अनजाने में हमारे दिमाग में घर बना लेते हैं और फिर हम अपनी ही लाइफ से वही परफेक्शन एक्सपेक्ट करने लगते हैं. ये सवाल धीरे धीरे सिर्फ सवाल नहीं रहते, ये कमी का एहसास बन जाते हैं और फिर छोटी छोटी बातों पर डिससेटिस्फेक्शन, अननेसेसरी कंप्लेंट्स और एक कॉन्स्टेंट फीलिंग रहती है कि उफ, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है. सबसे बड़ा नुकसान पता क्या होता है कि हम घर की असली खूबसूरती को देखना ही भूल जाते हैं. हर घर की अपनी कहानी होती है, अपने इम्परफेक्शंस होते हैं, अपनी वार्मथ होती है, लेकिन जब कंपैरिजन का फिल्टर लग जाता है ना दोस्तों, तो ये सब धीरे धीरे ब्लर हो जाता है. धीरे धीरे घर जो पहले कम्फर्ट जोन था, एक एक्सपेक्टेशन जोन बन जाता है. जो जगह सिर्फ प्लेस थी, वो बिना किसी जजमेंट के जहाँ हम जी सकते थे, अब वही एक्सपेक्टेशंस का बोझ हम महसूस करने लगते हैं. हर चीज में परफेक्शन चाहिए, पर परफेक्शन कभी मिलता ही नहीं, और इसी बीच जो असली सुकून था वो चुपके से खो जाता है. साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट सिर्फ इमोशनली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल भी होता है. जब हम बार बार परफेक्ट इमेजेस, हैप्पी फेसेस और आइडियल

लाइफस्टाइल देखते हैं तो ब्रेन उससे रियलिटी समझने लगता है। इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहते हैं। जब हम अपनी लाइफ का दूसरों के स्टैंडर्ड से मेजर करते हैं, और पता है दोस्तों, इस कंपैरिजन के ट्रैप में फंस कर सबसे ज्यादा नुकसान हम अपनी खुशी को करते हैं, जिसे हम इग्नोर करते हैं। जो मोमेंट्स हमारे पास हैं, फैमिली के साथ हंसी, छोटी छोटी बातें, सिंपल सी चाय की सुकून भरी फीलिंग, वो सब इनफ नहीं लगता, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी और की लाइफ ज्यादा परफेक्ट दिख रही है। कमाल है ना। सच तो यह है कि सोशल मीडिया हमें एक आइडल लाइफ का इल्यूजन देता है, लेकिन रियल लाइफ परफेक्ट नहीं होती, और इसी इम्परफेक्शन में ही असली सुकून छुपा होता है। जब हम परफेक्ट के मेजर यानी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देते हैं ना, तभी घर से एक सेफ स्पेस बन पाता है, और यहाँ कंपैरिजन नहीं सिर्फ अपनापन होता है। अपनापन, जी हाँ, घर एक इकोसिस्टम, इमोशनल इकोसिस्टम होती है, जहाँ आप सुकून महसूस करते हैं, कंफर्ट आपको लगता है। और फिलहाल अरिजीत सिंह की वॉइस में सुनते हैं, ताकि हम एक म्यूजिकल, एक खूबसूरत जोन में चले जाए। चलिए, मैं प्रियंका अपनी आवाज को विराम देती हूँ।

कमाल का थॉट प्रोवोकिंग ट्रैक है, सीधा सवाल करता है सोसाइटी से, है ना। कहीं ना कहीं ये जो गाना है ये ऑफ कोर्स मुझे क्या बेचेगा रुपया, कहीं ना कहीं ये जो ट्रैक है ये मेटाफर है जहाँ एक लड़की से ज्यादा पैसा इम्पोर्टेंट हो जाता है। शादी होती है, माना शादी हुई है, लड़की जाती है, पर जब क्या बोले सीधा सवाल करता है, सोसाइटी का आईना है कहीं ना कहीं ये है। बट बदल रही हैं चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे हौले हौले बदल रही है। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, तो चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वैलिडेशन के शोर में हम अपनी इनर वॉइस को दबा देते हैं, वैलिडेशन के शोर में हम अपनी इनर वॉइस को दबा देते हैं, पर असली सुकून तब मिलता है जब हम खुद को बिना किसी फिल्टर के एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज मैं टॉपिक कर रही हूँ ना कि दूसरों से कंपेयर करते करते कैसे अपना आशियाना जो है कंपेरिजन जोन बन गया। आप अपने विचार भी हमसे साझा कर सकते हैं 9868107070 पर, 9868107070। वैसे कभी घर सिर्फ एक जगह नहीं होती थी, वो एक एहसास होता था जहाँ थकान उतर जाती थी, जब बिना कुछ प्रूफ किए हम बस हम होते थे। लेकिन आज धीरे धीरे वही घर एक साइलेंट कंपैरिजन जोन बन गया है, और इस बदलाव का सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया। आज के वक्त में सोशल मीडिया सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि एक पैरेलल दुनिया बन चुकी है, जहाँ हर चीज परफेक्ट दिखती है, परफेक्ट घर, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट लाइफस्टाइल, और इन सब के बीच हम अपनी रियल लाइफ को अनफिल्टर्ड फ्रेम से कंपेयर करने लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है एक साइलेंट रेस, कंपैरिजन की रेस, जो धीरे धीरे घर का सुकून छीन लेती है। आजकल दोस्तों जिंदगी सिर्फ जी नहीं जा रही, डिस्प्ले करी जा रही।

आ रही है, हर मोमेंट एक पोस्ट है, हर खुशी एक स्टोरी, और इंसान एक साइलेंट ऑडियंस। कितना अजीब हो गया है ना। घर जो कभी कंफर्ट जोन था, अब कंपैरिजन जोन बन गया है। दीवारें वही हैं, लोग वही हैं, पर नजरिया बदल गया है। अब हम अपनी लाइफ को फील कम, कंपेयर ज्यादा करते हैं। क्यों उनका घर इतना एस्थेटिक लगता है, क्यों उनकी लाइफ इतनी सॉर्टेड दिखती है, क्यों हम पीछे रह गए स्टेटस में। और ये जो क्यों है ना, ये धीरे धीरे प्रेशर बनाता है परफेक्ट होने का, परफेक्ट दिखने का। सच तो है कि सोशल मीडिया हमें, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, कि एक इल्यूजन देती है। जी हाँ, जब हम किसी की लाइफ में अनसेट स्ट्रगल्स होते हैं, हर किसी की लाइफ में होते हैं, बस वो कैमरे के सामने नहीं आते। जो दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। शायद वक्त आ गया है थोड़ा रुकने का, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करने का, कंपेरिजन से थोड़ा दूर होने का, और वैलिडेशन के शोर से निकल के अपनी इनर वॉइस को सुनने का। तो दोस्तों, अपने आप से पूछिए, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्या मुझे हर पल किसी और का अप्रूवल चाहिए, या मैं खुद के लिए ही काफी हूं। जी हाँ, ऐसा होता है ना, जैसे हम जब वैलिडेशन की एंट्री होती है हमारी लाइफ में, जब खुशी महसूस करना ऐसा लगता है कि काफी नहीं है, नहीं नहीं हमें पोस्ट करना चाहिए, हमें दूसरों को बताना चाहिए। इनफैक्ट हम अपनी खुशी को महसूस करने से ज्यादा उस समय पोस्ट पे फोकस करते हैं। एक फोटो को डालने के बाद कितना लाइक आएंगे, बाबा फोन चेक करेंगे किसने कनेक्ट कमेंट तो नहीं किया, कितनी क्यूरियोसिटी हो, धीरे धीरे सेल्फ वर्थ मेजर करते हैं। अच्छा, तो सिर्फ इतने लाइक्स आए हैं क्या, मैं ये अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या, ये मेरे को जो ये इतना अच्छा गिफ्ट मिला है, इतना अच्छा प्राइज मिला है, लोग अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं। हर कहीं ना कहीं गाइस, हर पर वैलिडेशन की जरूरत एक साइलेंट प्रेशर क्रिएट करती है, और ये छोटी सी आदत धीरे धीरे एक इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाती है। दोस्तों, ये वैलिडेशन का लूप इतना सटल है कि पता ही नहीं चलता कब हम अपनी रियल लाइफ से स्लिप हो जाते हैं। हम वो बनने लगते हैं जो फीड पर अच्छे लगे, ना कि वो जो दिल में सच में समय सुकून दे। और सबसे बड़ी बात, वैलिडेशन की ये आदत हमें असली आइडेंटिटी को धीरे धीरे ब्लर कर देती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, हम वो पोस्ट करते हैं जो लोगों को पसंद आए, वो दिखते हैं जो परफेक्ट लोगों को लगे, और धीरे धीरे हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। अंदर हमारे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अपनी रियल फीलिंग्स को हाइड करके एक सोशल वर्जन क्रिएट करना है, जहां कहीं भी हम खुद के ही घर में गेस्ट महसूस करने लगते हैं कि अरे, हम गेस्ट हो गए अपने ही घर में। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो पूरी कहानी नहीं होती दोस्तों। हर स्माइल के पीछे एक स्ट्रगल होता है, और हर परफेक्ट फ्रेम के पीछे इम्परफेक्शंस छुपी होती हैं। चलिए फिलहाल दिव्या कुमार को सुनते हैं सुई धागा में। मैं हूं प्रियंका आपके साथ।

वेल कितना मीनिंगफुल ट्रैक है ना. सीरियसली लाइक सुई सीधी खड़ी नाचे धागा, लाइक ये जो गाना है डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी का परफेक्ट बैलेंस है इस गाने में. अपनी मेहनत को सेलिब्रेट कर रहा है गाना. सीरियसली मुझे ये गाना बहुत बहुत पसंद है. इस गाने के लिरिक्स को जब ध्यान से सुनो ना, उसको समझो तो प्यार हो जाता है इस गाने से. फिलहाल आपको हमसे प्यार है तो जल्दी से मैसेज करो 9868107070 पर और बताइए कि आप जो ये टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि दूसरों से कंपेयर जब करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना आशियाना जो है वो कंपेरिजन जोन बन जाता है. आपको क्या लगता है कि आपने अपना सुकून खोया है इस वजह से सोशल मीडिया में जब हम कंपेयर करते हैं. मुझे अभी मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, ओके मोहम्मद इम्तियाज और सलमा बेगम जवाहर कैंप कीर्ति नगर दिल्ली, चंद खुशियों के लिए न जाने कितने एहसास भेज दिए है, दर्द अब रुकने का नाम नहीं ले, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच दोस्त. और इसी के साथ भावना पांडे हमें लिखती है, ओके पंकज अमरावती महाराष्ट्र से ये हमारे को कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इन्हें पंक्तियां बहुत पसंद हैं और भगवान का दिया सब कुछ है लेकिन भगवान का शुक्र करना भूल रहे हैं. जी हाँ बिल्कुल, ये जो ग्रेटिट्यूड करना खत्म कर रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा गलत है. ग्रेटिट्यूड तो हमेशा रहना चाहिए. और आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आपको गाने अच्छे लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच. आपकी शायरियां तो बेहतरीन है, कहाँ से लाती हैं ये? और रविंद्र किसने लिखा ये मैसेज, दो सबका नाम क्यों नहीं आया, नाम तो लिखना चाहिए था. जल्दी से नाम भेजो मुझे क्योंकि आपके कंटिन्यूस मैसेज आ रहे हैं पर आपका नाम नहीं आया. वेल शायरियां मेरी ही हैं दोस्त, थोड़ा बहुत लिख लेते, कभी कभी तुकबंदी नहीं हो पाती तो गुस्सा आता है कि हाय प्रियंका तुकबंदी क्यों नहीं हो रही है. और प्रोग्राम का फर्स्ट सॉन्ग अच्छा आपने प्ले किया, थैंक यू सो मच. मास्टर कृष्ण लाल खत्री हमें कहते हैं गाने इनको अच्छे लग रहे हैं. और इसी के साथ चलिए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते, मैसेजेस तो आ रहे हैं लेकिन फिलहाल अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है. दोस्तों कंपेरिजन ने सिर्फ पैसा नहीं खर्च करवाया, दिल का चैन भी चुरा लिया, सुकून का बैलेंस हिलाकर हर लम्हा बेचैन सा बना दिया. शायद अब वक्त है रुकने का, इस दौड़ को समझने का, क्या जरूरी है ये सफर या बस ये इल्यूजन का है सिलसिला. आज के डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म्स नहीं रहे, ये कंपैरिजन मिरर बन चुके हैं. हर दिन जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो हमें दूसरों की लाइफ सिर्फ बेस्ट पार्ट दिखता है, नया घर, लग्जरी कार्स, फॉरेन ट्रिप्स, डिजाइनर आउटफिट्स, परफेक्ट फैमिली पिक्चर्स. धीरे धीरे ये सब देखकर हम अपनी लाइफ को उनके स्केल पर मेजर करने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक अजीब सा प्रेशर क्रिएट करते हैं, है ना. और यहीं से शुरू होते हैं अंदर सी बेचैनी, हम पीछे क्यों रह गए हैं. ये सिंपल सा सवाल नहीं है बल्कि एक इमोशनल प्रेशर है. सीरियसली जब सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है औरों का कि अपनी जिंदगी धीरे धीरे में अधूरी सी लगने लगती है. ये बेचैनी सिर्फ सोच तक नहीं रहती बल्कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को भी इम्पैक्ट करती है. कुछ लोग

दिल में। जी हाँ, हमारा भी यही हाल है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि मेरे जाने का टाइम आ गया है। हर खुशी को दुनिया के सामने रखना जरूरी तो नहीं, हर खुशी को दुनिया के सामने रखना जरूरी तो नहीं, कुछ लम्हे सिर्फ घर की दीवारों के साथ भी खूबसूरत होते हैं, क्योंकि जब प्राइवेसी में बिताए मोमेंट्स हमें मिलते हैं तभी दिल को असली सुकून मिलता है। आज के डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुका है। इनफैक्ट हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। हम सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, रात को सोने से पहले भी स्क्रॉल करते हैं। धीरे धीरे यह आदत सिर्फ टाइम पास नहीं, यह हमारी सोच और फीलिंग्स को शेप करने लगी। पहले घर एक ऐसी जगह होती थी जहां सुकून मिलता था, एक एहसास होता था, एक ऐसी जगह होती थी जहां इंसान अपना रियल वर्जन में होता था, बिना फिल्टर, बिना फियर, बिना कंपैरिजन के। लेकिन अब वही घर वही आशियाना कंटेंट बन गया है। लिविंग रूम से लेकर किचन तक सब कुछ सोशल मीडिया के फ्रेम में आ गया है। लोग क्या कहेंगे की जगह लोग क्या देखेंगे ने ले लिया है। हर मोमेंट को कैप्चर करना, हर खुशी को पोस्ट करना, हर छोटी बात को शेयर करना, ये सब नॉर्मल लगने लगा है। लेकिन इसी नॉर्मल के पीछे एक साइलेंट प्रॉब्लम ग्रो हो गई है, प्राइवेसी की प्रॉब्लम। जी हाँ, कंपैरिजन के तो है ही, कंपैरिजन का प्रेशर तो इतना बढ़ गया कि लोग अपनी रियल लाइफ से ज्यादा दूसरों की रियल लाइफ को इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। वैसे कंपैरिजन का ये सिलसिला बहुत खामोशी से शुरू होता है और किसी और के परफेक्ट होम डेकर से, किसी और की हैप्पी फैमिली पिक्चर से, किसी फिर दिल के किसी कोने में एक हल्की सी कमी महसूस होने लगती है। हमारा घर इतना परफेक्ट क्यों नहीं है, यही सवाल, सिंपल से सवाल आपको लगते हैं, लेकिन ये सुकून टूटता है की वजह से। और इस कहानी का सबसे इमोशनल गहरा हिस्सा है प्राइवेसी का कॉम्प्रोमाइज। पहले जो बातें सीरियसली घर की दीवारों तक सीमित रहती थी, अब वो पब्लिक पोस्ट और स्टोरीज का हिस्सा बन गई है। फैमिली की प्राइवेट मोमेंट्स, पर्सनल स्ट्रगल्स, सब कुछ दुनिया के सामने आ जाता है। धीरे धीरे बाउंड्रीज ब्लर होती है और ये बातें सिर्फ घर के अंदर जो रहनी चाहिए थी वो पब्लिक डिस्कशन का पार्ट बन जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा पर्सनल स्पेस खो रहा है। फिलहाल इस समय मुझे इजाजत दीजिए। जी हाँ, क्योंकि मेरा टाइम है, वो कह रहा है कि बस जल्दी जल्दी तुम माइंड अप कर लो। प्रियंका को दीजिए इजाजत क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे सामने बिल्कुल रेडी है। तो इसी के साथ टेक केयर गाइस, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड।

0: वाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार श्रोता साथियों, कैसे हैं आप सब? हमारी उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और जुड़ गए होंगे रेडियो डॉक्टर के साथ, क्योंकि समय हो चुका है, 3 बज चुके हैं दोपहर के और आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर आपके साथ है। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 4 बजे तक और हर दिन हमारी कोशिश होती है कि कुछ नया, कुछ ऐसा जो आपको नहीं पता हो वो आपको जानने को मिले और साथ ही साथ वो स्वास्थ्य समस्याएं जिनसे आप जूझ रहे हैं या जिनके प्रश्न आपको मन में चल रहे होते हैं कि इसका जवाब मैं कहां से लूं, उसके लिए हम यहां पर आते हैं। और बिल्कुल हमें इंतजार होता है कि आप अपनी समस्याओं को हमारे सामने यानी हमारे रेडियो डॉक्टर के सामने रखें और वो उसका जवाब दें। और हर बार जैसा आप जानते हैं हम एक विषय भी चुनते हैं, होम्योपैथी, एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपना विश्वास रखते हैं। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ इस जर्नी पर जो हमारी रेडियो डॉक्टर हैं, जो हमें गाइड करेंगी, वो हैं डॉक्टर चित्रा वासु। आप डायरेक्टरेट ऑफ आयुष डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में कार्यरत।

0: है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर चित्रा आपका स्टूडियो में।
1: थैंक यू मैम।
0: तो आपने जान लिया, आपने सुना डॉक्टर चित्रा की आवाज, और डॉक्टर चित्रा हमारे साथ रहेंगी 4 बजे तक। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें बहुत सारे लोग अपना इलाज इस पद्धति से कराते हैं, और कहा जाता है कि अगर मूल रूप से या पूरी तरह से आपको किसी बीमारी को जड़ से दूर करना है तो होम्योपैथी की शरण में चाहिए। ऐसा कई बार हमने सुना है, कितना सही है कितना गलत है ये तो जो बीमारी या उपचार लेते हैं वो बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में एक होम्योपैथी स्पेशलिस्ट है, तो हम बहुत सारी चीजें डॉक्टर चित्रा से जानने की कोशिश करेंगे और जानते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी कार्य करती है। तो सबसे पहले हमारे एक श्रोता हमारे साथ ऑलरेडी फोन लाइन पर है, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी।
2: जी मैम नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए।
2: रवि बोल रहा हूँ सोनीपत हरियाणा से। मैम ये पूछ रहा था, जैसे कई लोग मानते हैं कि होम्योपैथी एक प्लेसेबो है, मतलब कोई इसका साइंटिफिक वो नहीं है, तो इस बारे में क्या कहेंगे?
0: जी ये तो वैसे कोई नहीं कहता है, लेकिन ठीक है, कुछ लोगों के अगर मिथ्स भी बहुत सारी होती हैं हर चीज से जुड़ी हुई, तो आज हमने इसको भी सुना है और डॉक्टर चित्रा बता रही हैं।
1: रवि जी नमस्ते, आपके ये जो सवाल है ना साइंटिफिसिटी ऑफ होम्योपैथी, शालिनी जी मैं पहले ये बोलना चाहती हूँ, होम्योपैथी एक फिलोसफिकल ब्रांच ऑफ थेरापिटिक्स है, आधारित फिलोसफी पर है। सो नेचुरली मैं बोलना चाहती हूँ होम्योपैथी ये एड्रेस करता है इलनेस को, बिकॉज इलनेस हमेशा एक एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस है, एंड हर एंटिटी को, हर चीज को दो एस्पेक्ट है, एक ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट और एक सब्जेक्टिव एस्पेक्ट, एंड मॉडर्न मेडिसिन इज ब्यूटिफुली एड्रेसिंग दैट ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट, मतलब डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, बिकॉज इतनी अच्छी रिसर्च होता है, इतनी फ्रूटफुल स्टडीज होता है, रिजल्ट्स है ना, सो दे आर ब्यूटिफुली एड्रेसिंग दैट थिंग एंड वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दैट थिंग। बट वॉट अबाउट द अदर एस्पेक्ट, सब्जेक्टिव एस्पेक्ट, बिकॉज बीमारी एक अस्वास्थ्य कंडीशन है एंड एक लिव्ड एक्सपीरियंस है, वो एस्पेक्ट को एड्रेस करना है होम्योपैथी का काम।
0: बहुत अच्छी सी बात, मुझे लगता है रवि जी तक आपकी जो बात है वो पहुंच गई होगी। आपने दो एस्पेक्ट्स बताए, और सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स को जब तक हम डील नहीं करेंगे हम बीमारी को मूल रूप से खत्म नहीं कर पाएंगे, कि अगर हमें स्थायी स्वास्थ्य चाहिए तो उसमें हमें होम्योपैथी बहुत मदद कर सकती है। और जहां तक एक साइंस की बात है, तो कोई भी पैथी हो वो साइंस पर ही आधारित है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और देखिए मैसेजेस भी हमारे पास आने शुरू हो गए हैं, और हमारी जो श्रोता है आलोका जी नोएडा से लिख रही हैं, ये हमारी रेगुलर श्रोता हैं, और ये लिख रही हैं आई बिलीव फुली इन होम्योपैथिक मेडिसिंस, डॉक्टर चित्रा आपको ये खासतौर पर नाम लिखकर भेज रही हैं। और अगर आप हमारे साथ आलोका जी, मुझे मैं मान के चल रही हूं कि अभी आप हमें सुन रही होंगी, आप जरूर कोई वाकया हमारे साथ शेयर करना चाहें, क्योंकि आपने लिखा है कि आप पूरी तरह से बिलीव करती हैं होम्योपैथी मेडिसिन में, तो आप क्या लेती हैं और कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि सुनी सुनाई बातें, थोड़ा सा शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस, और भी श्रोता शेयर कर सकते हैं जो होम्योपैथी ले रहे हैं यूज कर रहे हैं कि किस तरह से उसने किस बीमारी में उनको फायदा पहुंचाया है। हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो।
3: हेलो
0: जी।
3: हाँ जी, मैं रामदयाल मल्होत्रा बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी
0: जी मल्होत्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत जी।
3: हाँ, मुझे 6 बीमारी है जी। 8 साल पहले मेरे को 4 स्टंट लगे थे, और टांगों की नसों में मेरे को करीब 30 साल से दर्द रहता है। सब जगह मैंने एलोपैथी का इलाज किया है, लेकिन फर्क 10% फर्क पड़ता है खाली, 15% तक। हाँ जी, एक मेरे को साबुन लगते ही मेरी स्किन एकदम इतनी फटती है जैसे छिलके की तरह उतरती है स्किन मेरी, साबुन लगते ही नहाने में हाथ धोने में, तो वो बहुत परेशान हूँ जी मैं इन चीजों से। और साल में 2 बार मेरे नाक और मुंह में से खून आता है, क्योंकि स्टंट लगे हैं मुझे 4, तो इसके बारे में क्या मैं होम्योपैथी का इलाज कर सकता हूँ?
0: जी अब डॉक्टर चित्रा आपको एडवाइस कर रही हैं।
1: नमस्ते रामदयाल जी।
3: हाँ जी
1: जरूर, बिल्कुल आपको इलाज मिल सकते हैं होम्योपैथी द्वारा, क्योंकि आपने खुद ही बोला इतनी सारा सिम्टम्स है आपको, है ना, सो एकदम से आपकी लाइफ भी बदल गई होगा इतनी यू नो इलेक्शन के बाद, सही है ना?
3: हाँ जी
1: जी,
3: हाँ
1: जी। तो इतनी सारी चीज को एड्रेस करने के लिए दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी शालिनी मैम, सो इतनी सारी लक्षण को एक ही मेडिसिन से, अगर हम
0: मतलब इतनी सारी जो बीमारियां वो एक ही मेडिसिन से ठीक हो सकती
1: है? डेफिनेटली।
0: अरे वाह,
1: That's what I'm saying. We have to, देखिए ना, इतनी सारा कंप्लेन्स आने से एक इंसान की जिंदगी

0: बिल्कुल बदल गई. नाउ ही इज अवेयर अबाउट मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रहा है. पहले वी वर टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड. इंसान को मालूम नहीं था मैं कैसी सांस ले रही थी, कैसी मैं वॉक कर रहे थे, बिकॉज वी वर एट ईज. पर एकदम से ये जो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस या इलनेस हुआ एकदम से बदल गए. सो दिस इज द प्लेस वेयर होम्योपैथी कैन एक्ट ब्यूटिफुली.
1: जी तो एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है कि कई बार क्या होता है जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं या किसी होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो बहुत सारे हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, सिम्टम्स के बारे में हमसे बात करते हैं. तो इतने सारे सिम्टम्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या ये दवाई बहुत एकदम प्रिसाइज बनाई जाती है?
0: इतना तो पूछना है क्योंकि आपकी जिंदगी की सच्चाई हमें ढूंढना है.
1: अच्छा.
0: एंड यू हैव टू एक्सप्रेस एवरीथिंग इन द मोस्ट फ्रैंक हॉनेस्ट वे. वो हमें हेल्प करता है क्योंकि आपकी मेडिसिन हमें ढूंढना है.
1: ओके.
0: सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
1: तो जो चीजें हमें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती हैं वो आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं क्योंकि दवाई उसके हिसाब से बनती है.
0: बिल्कुल. अच्छा. हमारे पास एक बुक है होम्योपैथिक मेट्री मेडिका. वो बिल्कुल पेशेंट की लैंग्वेज से लिखे हुए
1: है
0: ऑल द सिम्टम्स. सो इसलिए हम इतनी गहराई तक जा रहे टू एक्सट्रैक्ट द एसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बींग.
1: जी बहुत सारी बातें हैं अभी जानने को और कार्यक्रम तो अभी जस्ट शुरू हुआ है.
0: क्योंकि शालिनी जी एक बीमारी आने वक्त है ना, सडनली मैंने हमेशा ये शब्द यूज किया डिस्ट्रप्शन ऑफ द आइडेंटिटी है ना. सडनली उनकी जिम्मेदारियां बदल जाते हैं, मीनिंग ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है, लाइक इनकी आइडेंटिटी पर एक डिस्ट्रप्शन हुआ, सो मेनी थिंग्स है ना. सो वी हैव टू एड्रेस ऑल दोस थिंग्स. जो आप बोलने से हमें समझ में आता है कितनी चेंजेस आपके अंदर सब्जेक्टिवली हुआ.
1: जी बहुत बहुत अच्छी बात और बहुत ऐसी बात है जिसको एक आपने बताया बहुत अच्छे तरीके से, तो इसलिए मैं भी कैच कर पा रही हूँ कि कई बार होता है कि होता तो फिजिकल एलिमेंट है लेकिन मेंटल लेवल पे भी वो हमको काफी इफेक्ट करता है. और अगर मैं गलत नहीं हूँ जो आप कह रही हैं कि उसको अगर हम होम्योपैथी के जरिए दवाई लेकर सॉल्व करें तो वो हमें मेंटल लेवल पर भी कहीं ना कहीं ठीक कर सकता है.
0: एब्सोल्युटली बिल्कुल.
1: तो चलिए यहाँ पर अब एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लौट कर आएंगे, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं. आपको ये गीत बहुत पसंद है डॉक्टर चित्रा.
0: थैंक यू मैम.
1: तो हमने ये आपके पसंद का गीत निकाला है और देखते हैं हमारे कितने श्रोताओं को भी पसंद है. आप हमें लिखकर बता सकते हैं कि आपको भी ये गीत पसंद आया कि नहीं. सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर.

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज बात कर रहे हैं होम्योपैथी पर और हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं वीना बोल रही हूँ फरीदाबाद से। आपको बहुत बहुत डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: थैंक यू वीना जी।
1: जी डॉक्टर साहब, मेरे को अभी करीब 6 महीने पहले ये ऑटो इम्यून डिजीज डायग्नोज हुई है।
2: कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज?
0: डिजीज का नाम पूछ रही है डॉक्टर साहब।
1: नाम तो नहीं पता, उसमें क्या है कि मेरा मुंह बहुत सूख जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है, आंखें भी ड्राई हो जाती हैं और फीलिंग होती है। और क्या कहते हैं, एक बार मेरी आंखों का लेजर से वो भी ट्रीटमेंट भी हो चुका है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरी आंखों में काला मोतिया आ गया, नसें सी बंद हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब, मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर को तो दिखाया था, उन्होंने मुझे बोला कि जो ऑटोइम्यून डिजीज की जो स्पेशलिस्ट होती है उनको आप दिखाइए, तो इसमें कुछ है ऐसा ट्रीटमेंट?
2: बिल्कुल है। आर ए फैक्टर चेक किया था अपना, सीबीसी विद एएसआर?
1: हाँ जी हाँ जी, वो सब चेक,
2: एनडीसीसीपी ये सब चेक किया?
1: हाँ जी सब चेक हुआ हुआ, लेकिन वो ट्रीटमेंट भी मेरा चल रहा है, उन्होंने मुझे मेडिसिन भी दी है, लेकिन मेरे को वैसे मेरे हस्बैंड को भी आर ए फैक्टर।
2: जोड़ों में दर्द है? जोड़ों में
1: नहीं, जोड़ों में इतना पेन नहीं होता जितना का मेरा मुंह इतना ड्राई रहता है, जैसे कई बार तो मुझसे बोला भी नहीं जाता है और मुंह में ना ऐसे ड्राइनेस की वजह से पूरे जख्म हो जाते हैं।
2: बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहती हूँ, ऑटोइम्यून डिजीज है ना, एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है। एक्चुअली हमारी बॉडी की अगेंस्ट काम करते है ना।
1: हाँ जी हाँ जी,
2: अपनी बॉडी को दुश्मन समझकर एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है, वो वीक पॉइंट्स में जाकर डिपॉजिट करते है, फिर हमें इतनी सिम्टम्स आते हैं। सो इसकी कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है आपके घर में किसी और को?
1: नहीं नहीं, किसी को भी नहीं है।
2: फिर आपके जो फैक्टर्स, मतलब कौन सी चीज से आपको ये सब हुआ, एक प्रॉपर डीप केस टेकिंग की आवश्यकता है या कुछ ट्रॉमा और लाइक दैट स्ट्रेस है ना?
1: हाँ जी बहुत है डॉक्टर साहब, इतना ज्यादा है ना मैं बता नहीं सकती, और मैं अब अजीब सी होती जा रही हूँ, मेरे को थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन सा भी रहता है,
2: ये मैं बोलना चाहती हूँ। सो वी हैव टू एड्रेस आपकी जो मेंटल स्फीयर, अदर की प्रॉब्लम्स, इमोशनल वेलबींग।
1: हाँ जी,
0: तो मुझे लगता है वीना जी आपको किसी होम्योपैथी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जितना प्रश्न और सिम्टम्स, जैसा मैंने इससे पहले बात भी की थी, बहुत सारे सिम्टम्स पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और सारी बातें डिटेल में डॉक्टर पूछता है, तभी कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो आप किसी, जिसको भी आप जानती हो, आप जा सकती हैं और वहां से हेल्प ले सकती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने आपको ये बता दिया कि हाँ इसकी दवाई हो सकती है, आपको रिलीफ मिल सकता है होम्योपैथी में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। और हमारे पास मैसेज आया है सुधीर सिंह जी का, कुतुबगढ़ से लिख रहे हैं, नमस्कार डॉक्टर साहब। और इन्होंने लिखा है कि एक मेरा प्रश्न है कि 200 और 1 एम और क्यू

0: एक्सपर्ट्स में से किसकी पावर ज्यादा होती है?
1: अगर क्वालिटेटिवली बात करना चाहते तो नॉट क्वांटिटेटिवली, ओके मैम, क्वालिटेटिवली मैं असेंडिंग ऑर्डर में बोलती हूँ, पहले क्यू द टिंचर, देन 200, देन वर्णम.
0: ओके, मतलब ये पावर के हिसाब से आपने बताया. हाँ. तो 1M सबसे ज्यादा
1: क्वालिटेटिवली.
0: क्वालिटेटिवली, ओके. तो सुधीर सिंह जी को जवाब मिल गया. और एक ये प्रश्न लिखा है अनीता तेजवानी जी ने कि क्या जेनेटिक डिजीजेस जो होती हैं उसमें भी होम्योपैथी कारगर हो सकती है?
1: डेफिनेटली
0: जी,
1: जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, क्योंकि ऑलमोस्ट हर डिजीज में 40% या 50% जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है. ये भी एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू गिव पूरी तरह की
0: जानकारी देने. हाँ,
1: जानकारी एंड क्योर देने में, है ना.
0: तो जैसे हमारे जो श्रोता है बहुत सारे प्रश्न ऐसे कर रहे हैं कि क्या इस बीमारी में काम कर सकती है होम्योपैथी या इसमें नहीं कर सकती है, क्या इस तरह के बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ चुके हैं. तो क्या ऐसी कोई बीमारी है जो जिसमें होम्योपैथी वर्क नहीं करती है कि सब पे करती है?
1: इसलिए जो कोई भी पेशेंट पहले आने वक्त है ना, वी हैव टू लिसन प्रॉपरली, है ना, क्योंकि पहले डिसाइड करना है ये मेरी स्कोप में आते है या नहीं. सो इसलिए इतनी यू नो, फर्स्टली हम पहले, मैं अपने बारे में बात किया तो ना, आई डायग्नोस व्हाट इज दैट पर्टिकुलर केस. एंड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अपनी पेशेंट्स का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती. मैं बोलती हूँ दिस इज नॉट कमिंग अंडर माई स्कोप बिकॉज आई हैव टू एड्रेस सब्जेक्टिवली. मैंने पहले भी ये चीज बोल दिया. सो मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ जो सिम्टम्स से, एंड ऑफकोर्स एमरजेंसी सिचुएशंस वी कांट डील, वो एक फैक्ट है. एंड owing to the unparalleled progress in modern medicine, we all are dependent upon that thing. That is a fact.
0: जी, तो अगर कोई emergency case है या जहाँ operation की आवश्यकता है उसको छोड़कर homeopathy हर बीमारी में कारगर हो सकती है, लेकिन जरूरत है आपको सही एक specialist के पास पहुँचने की और पूरी तरह से अपने symptoms, जैसा आपने बोला कि सब कुछ बताना है, छुपाना नहीं है. तो कई बार लोग पूरी तरह से बात बताते नहीं और फिर ये कहते हैं कि हम पे वर्क नहीं कर रही है या हमको फायदा नहीं हो रहा है. तो आपको अपने सिम्टम्स पूरी तरह से बताने होंगे. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है. हमारे एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं. हेलो.
2: हेलो
0: जी. जी नमस्कार राजेंद्र जी.
2: हाँ, पहले तो शालिनी मैम को, शालिनी तो सही, नमस्कार.
0: जी नमस्कार.
2: और डॉक्टर साहिबा को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार.
1: नमस्ते, थैंक यू जी.
2: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ. 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70 से 80 kg मेरा वेट है. ओ पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है. तो अब मेरे 3 सवाल है और एक मिथ है. तो सवाल मेरा पहला ये है कि ये जो हमारे शरीर में कुष्ठ रोग की गांठें हो जाती है ना और काले काले तिल हो जाते हैं जिनको कारगर धब्बे भी कहते हैं के रूप में, क्या इसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है? दूसरा सवाल मेरा ये है, सिर के बाल से लेकर और पैर के नाखून तक ऐसी कौन कौन सी डिजीजेज का होम्योपैथी में ट्रीटमेंट अवेलेबल है और कौन सी ऐसी डिजीजेज का होम्योपैथी में ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है? तीसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने सुना है कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उन्हें होम्योपैथी में ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए. और चौथा और आखिरी जो सवाल है वो ये है कि ये मुझे जो है ना फैटी लीवर और क्या बोलते हैं इसके लिए एलर्जी की प्रॉब्लम इन दोनों और ये स्लीप एपनिया डिसऑर्डर की, तो इससे बड़ा परेशान हूँ. तो क्या इसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करके ही होगा कि दवाई लेने से ही हो जाएगा? तो ये मेरे 4 सवाल है, बड़ी मेहरबानी होगी इनका जवाब दे. बहुत बहुत शुक्रिया.
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए. कोशिश करते हैं आपके सब प्रश्नों का यहाँ समाधान हो जाए. डॉक्टर साहब, जो तिल और गांठियों की बात की उन्होंने, क्या ये होम्योपैथी मेडिसिन से दूर हो सकती हैं?
1: देखिए शालिनी जी, ये सब बोल रहे हैं सब कनेक्टेड है. अपार्ट फ्रॉम जो पहले कुष्ठ रोग, लेप्रसी, वो मैं बिल्कुल मेरी स्कोप में नहीं है.
0: नहीं, इन्होंने गांठें या तिल की बात की थी शायद कुछ.
1: पहले उन्होंने कुष्ठ रोग ऐसे बोला, बाकी सब कनेक्टेड सिम्टम्स है.
0: ओके,
1: सो डेफिनेटली वो एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा सकते हैं.
0: लेकिन एक चीज उन्होंने जो आखिर में पूछी कि क्या ये एडमिट होकर होता है या इनको होम्योपैथी का क्या इलाज एडमिट करके भी होता है?
1: हाँ, होता है. होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स आल्सो ऑन द जीएनसी.
0: तो क्या उनमें कौन से पेशेंट्स को एडमिट करते हैं? क्या कुछ सीरियस पेशेंट्स होते हैं जिनको, तो क्या क्राइटेरिया होता है कि जो आप एडमिट करके करते हैं उनको?
1: नहीं मैम, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन वो पेशेंट की सिम्टोमेटोलॉजी कितनी इंटेंसिटी से. सो अगर एडमिशन की जरूरत है तो बिल्कुल हमें एडमिट करना पड़ेगा.
0: जी, तो यही जानना चाह रहे थे शायद कि इनको जो जो समस्याएं हैं उन्हें लगता है शायद एडमिट होकर होगा. और देखिए, ये हमें मैसेज जो हमने बात की

0: थी, आलोका जी ने आपको शुभकामनाएं दी थी और लिखा था कि मैं होम्योपैथी पर पूर्णतः विश्वास रखती हूं। इन्होंने लिखा है कि मैं एलर्जी के लिए मेडिसिन लेती हूं, स्किन एलर्जी, पॉल्यूशन से गले नाक की एलर्जी के लिए, और महीनों पुराना ड्राई कफ 10 दिन के मेडिसिन लेने से मेरा चला गया, तो इन्होंने बताया है। और मैं वेदर, स्पेशली वेदर चेंज के समय जब एलर्जी मुझे लगती है तब मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेती हूं, और एंग्जाइटी के लिए भी मैं ये मेडिसिन ले रही हूं। तो ये बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखकर भेजी है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी बात हम तक पहुंचाना, कौन सी समस्याओं के लिए आप होम्योपैथी ट्राई कर चुके हैं और आपको इससे फायदा हुआ है, आप हमें जरूर लिख सकते हैं। और हमारे पास एक कॉलर भी इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो
0: जी।
1: नमस्ते डॉक्टर साहब।
2: नमस्ते
1: डॉक्टर साहब, मेरी रेटिना खराब है और एलोपैथी में कोई इसका इलाज नहीं है, क्या होम्योपैथी में इसका इलाज हो सकता है?
2: देखिए, एकदम से ऐसी बोल नहीं सकते, आई हैव टू सी योर रिपोर्ट्स, केस अटेंड करना पड़ेगा
0: जी।
2: रेटिना एकदम से खराब नहीं होगा ना, उसके पहले कुछ कारण हो सकते हैं।
1: रेटिना मेरी 40 वर्ष।
2: आप डायबिटिक हो या हाइपरटेंसिव?
1: नहीं, मेरी पैदाइशी रेटिना खराब आई थी।
2: पार्डन,
0: बाय बर्थ ही उनको ये समस्या है?
2: ओके।
0: तो फिर भी ये किसी होम्योपैथी स्पेशलिस्ट को दिखाएं तो फायदा हो सकता है इनको?
2: हाँ, देखिए जो इसके इफेक्ट्स को डील कर सकते हैं, जो बाय बर्थ है ऐसी यू नो मैलफॉर्मेशन है तो इट्स नॉट कमिंग अंडर द स्कोप।
0: ठीक है, धन्यवाद कॉल करने के लिए। और मैसेज में भी हमें बहुत सारे श्रोता जो हैं बीमारियों के नाम लिखकर भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या इस बीमारी का इलाज हो सकता है कि नहीं। तो ये जो हमें लिखा है, रवि जी ने मेरठ से लिखा है, शालिनी जी और डॉक्टर साहिबा को नमस्कार, मेरे एक रिश्तेदार को ब्रेन ट्यूमर है जो इनिशियल स्टेज पर है, सीजर कभी कभी होते हैं, क्या होम्योपैथी की मेडिसिन इनको फायदा पहुंचा सकती है?
2: मैम, ये सब क्वेश्चंस है ना, ऐसे एकदम से मुझे आंसर दे नहीं सकते। दे हैव टू गो टू द होम्योपैथ विद द रिपोर्ट्स। पहले मैं पहले भी बोल दिया, स्कोप के अंडर आते हैं ना ये, आफ्टर चेकिंग द रिपोर्ट्स एंड ऑल, बिकॉज इट्स अबाउट द लाइफ, है ना। सो बिल्कुल, क्योंकि
0: जी मैं आपकी बात समझ गई। मैं श्रोताओं तक बताना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब ये कह रही हैं कि अगर आपको कोई समस्या है उसका इलाज होम्योपैथी में है, सिर्फ आपको जाना होगा अपनी रिपोर्ट्स के साथ या फिर एक स्पेशलिस्ट से मिलना होगा और वो आपको बताएगा ये टेस्ट करा के ये रिपोर्ट्स लेके आना है, और तब वो बता सकेंगे कि आपको मेडिसिन दी जा सकती है और कितना समय लगेगा, कितनी डोज लगेगी, ये सारी बातों की बात उससे बात हो सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात सुनी है डॉक्टर साहब होम्योपैथी के बारे में, खासतौर पर जो मैंने शुरू में भी बोली कि अगर आपको जड़ से समाप्त करना है तो आपको होम्योपैथी करनी चाहिए, ऐसा कई लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं ऐसी भी होती हैं जो शारीरिक नहीं होती हैं, फिजिकल नहीं होती हैं, वो मानसिक भी होती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे अभी हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि क्या एंजाइटी में, डिप्रेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बताइए कि हाउ यूजफुल इज होम्योपैथी फॉर मेंटल एलिमेंट्स?
2: यस, मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक हेल्थी ह्यूमन माइंड को बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स अफेक्ट कर सकते हैं। एक तो बोर्डम, बोर होता है इंसान जल्दी, है ना। सेकेंड थिंग एंजाइटी, एंड थर्ड वन जो डिस्पेयर, हताशा,
0: डिप्रेशन,
2: डिस्पेयर, एक तरीके से यू कैन से इन दैट वे। सो दीज आर द 3 बेसिक प्रॉब्लम्स विच कैन अफेक्ट ए हेल्थी ह्यूमन माइंड। सो बोर्डम क्या है? बोर्डम ऐसी कब होता है, एक इंसान को बिल्कुल मेंटल और फिजिकल स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है, एंड इट इज वेरी, सपोज एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन, वो आपको बिल्कुल स्टिमुलेट करेंगे इंटेलेक्चुअली, बट दैट इज नॉट परमानेंट, टेम्पररी है, ठीक है। सो बोर्डम आजकल बहुत यू नो लाइक
0: कॉमन हो रहा है।
2: एग्जैक्टली, दे डोंट नो व्हाट टू डू, और अपनी एथिकल सेल्फ पर ऐसी बैठ कर क्वेश्चन करता है, या अपनी ऑफिस बैग, मतलब सम पीपल है ना, वो क्या करता है, बस अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है ऑन द बेस ऑफ कैरियर ओनली, या सोशल अप्रूवल।
0: जी जी।
2: सो यू आर फीलिंग दैट आई एम लूजिंग माई सेल्फ इन द ऑर्डिनरी, दैट काइंड ऑफ फीलिंग। बट अनदर कंडीशन है, लाइक द अदर थिंग इज दैट एंग्जायटी। एंग्जायटी में क्या होता है, हमारी, अब मैं थोड़ी सी फिलोसफिकली बात करना चाहती हूँ, अपनी एथिकल सेल्फ और स्पिरिचुअल सेल्फ की कॉन्फ्लिक्ट है।
0: अच्छा।
2: एथिकल सेल्फ मतलब How you behave, your idea about right and wrong, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ये आपकी ethical self determine करता है। It all depends upon your upbringing, your working atmosphere, honesty, loyalty, etc. And अगर this one spiritual self, मतलब that is somewhat bigger, you are कनेक्टिंग, आप अपने आप को एक दूसरी लेवल में कनेक्ट करना चाहते हैं विद द नेचर. सो एंजाइटी में क्या होता है, ये दोनों के बीच में एक टसल होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा. सो ये होम्योपैथी क्लियरली एड्रेसेस दिस काइंड ऑफ इश्यूज. एंड तीसरी वन डिस्पेयर, वो एक टसल होता है फाइनाइट थिंग्स ऑफ लाइफ और इनफाइनाइट थिंग्स. मैं इजी एग्जाम्पल से समझना चाहती हूँ. लाइक हर हमको ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, एक दिन तो जाना पड़ेगा. बट अगर किसी को एक वरदान देता है 1000 साल इधर रहने की, वी आर अफ्रेड. क्यों? सो दैट इज द टसल, लाइक फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. लाइक वी आर ऑफिस की जॉब में ट्रैप्ड है हमेशा, लाइक यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट हु यू आर, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ. एंड एट द सेम टाइम इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट स्फीयर की टसल यही है, यू नो दैट आपको बहुत पॉसिबिलिटी है या पोटेंशियल है, बट कुछ एक्चुअलाइजेशन नहीं कर रहे, लाइक कॉन्क्रीट फॉर्म में लेकर नहीं आता है. सो यू आर लूजिंग योर सेल्फ इन द पॉसिबिलिटीज. सो ये बैलेंस चाहिए. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आजकल यही हो रहे हैं ना, पीपल आर बिकमिंग इल ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स.
0: बहुत सारी समस्याएं जो है वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी डिपेंड करती हैं, और शायद ये एक साइकिल है, शारीरिक स्वास्थ्य से मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य, इस पर और बात कर सकते हैं. हमारे एक कॉलर इस बीच में जुड़ गए हैं. हेलो,
3: नमस्कार मैम.
0: जी नमस्कार, जितेंद्र जी कहाँ से बोल रहे हैं?
3: अमरोहा जिले से संतर से बोल रहा हूँ मैं.
0: जी जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं.
3: डॉक्टर साहब, ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे लगभग 15-16 साल हो गए, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई है, 10% बची है. एक दवाई है कि जो रोशनी बढ़ सकती है वापिस मेरी.
0: जी जी,
3: कोई इलाज है?
2: आवाज ठीक से नहीं
0: है. हाँ, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आई नहीं है. मैं आपको बता देती हूँ कि आंखों की इनकी रोशनी जो है काफी कम हो गई है, बता रहे हैं 10% ही रह गई है. तो क्या इसको बढ़ाने के लिए कुछ दवाई आती है?
2: इसका कारण हमें ढूंढना पड़ेगा.
0: पर दवाई है ऐसी?
2: हाँ
0: जी, आपको मिलना पड़ेगा डॉक्टर से और आपको दवाई दी जा सकती है, ऐसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं. और हम अभी स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे थे. एक मैसेज मुझे दिख गया है, सिक्किम से आया है, लिखने वाले हैं डेंजोपा, और इन्होंने लिखा है, नमस्कार दावा भूटिया सिक्किम से, और मैंने एंजाइटी की 6 महीने से होम्योपैथिक दवाइयां ली हैं पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है. एंजाइटी में होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन अच्छी हैं? तो मेडिसिन का नाम तो हम यहां नहीं ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है कि मैं 6 महीने से ले रहा हूं, मुझे इफेक्ट नहीं हो रहा है. और एक और इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या होम्योपैथी और एलोपैथी ये दोनों दवाइयां एक साथ में ले सकता हूं?
2: ले सकते हैं, बिकॉज दोनों की एक्शन अलग अलग है. एक तो क्वांटिटेटिवली एक्ट करता है, एक तो क्वालिटेटिवली. सो एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को एड्रेस करते हैं, दूसरे
0: ले सकते हैं, ऐसी कोई आप प्रॉब्लम में नहीं आएंगे?
2: मैं ऐसी बोलती हूँ मैम, लाइक आफ्टर टेकिंग द केस यूजुअली वी कैन डिसाइड, है ना.
0: लेकिन जैसे इनको असर नहीं हो रहा है, दवाई 6 महीने से चल रही है,
2: गिव द रिव्यू टू द डॉक्टर, वो उनके डॉक्टर को मिलकर बात कर सकते हैं.
0: नहीं तो कभी कभी क्या इतना समय भी लगता है किसी बीमारी को एड्रेस होने में? जैसे 6 महीने हो गए हैं, इनकी एंग्जाइटी कम नहीं हुई है, तो कितना समय लगता है?
2: रूट कॉज को
0: एड्रेस नहीं
2: किया होगा. सो इसलिए मैंने बोला ना, ही हैज टू एक्सप्लेन मैम इन द हॉनेस्ट वे टू द डॉक्टर.
0: जी बिल्कुल, बहुत सही बात है ये. तो भुटिया जी, आपको जाना पड़ेगा पुनः उन्हीं डॉक्टर के पास, या किसी और के पास जा सकते हैं और अपनी समस्या को पुनः एक बार एसेस कराइए. हो सकता है दवाई में कुछ बदलाव करना हो या डोज में कुछ बदलाव करना हो, लेकिन आपको जरूर फायदा होगा. यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और आपके और बहुत सारे प्रश्नों को हम यहाँ एड्रेस करेंगे, क्योंकि बहुत लाइन लग गई है मेरे पास मैसेजेस की और कंटिन्यूसली हमारे फोन भी रिंग कर रहे हैं.

0: वो बस ये गीत सुनते हैं, क्योंकि ये आपकी पसंद का गीत है, बेहद पसंद है हमारी गेस्ट को, तो हम इस गीत को सुन लेते हैं और फिर वापस आते हैं।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।

0: रेडियो डॉक्टर का ये अंक विशेष है क्योंकि आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, होम्योपैथी पर। और बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ चुके हैं, हमारे श्रोता भी हमारे साथ फोन लाइन पर कंटिन्यूअसली जुड़ रहे हैं। एक और हमारे कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार
1: मैम। डॉक्टर साहिबा को भी नमस्कार। और मेरे कुछ 3 सवाल है मैडम
0: जी। नाम बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं संजय बात कर रहा हूँ, दिल्ली से।
0: जी सवाल पूछिए
1: मैम। पहला सवाल तो ये है कि जिन बीमारियों का इलाज अंग्रेजी दवाओं में, जितनी भी बीमारियां, क्या उन सभी बीमारियों का इलाज होम्योपैथी में भी है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक हमारे साथी जिसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था 6 महीने पहले, लगभग 7 महीने मान लीजिए, तो उसका अंग्रेजी दवा से इलाज चल रहा है और लगभग आखिरी स्टेज में 20-25% और है। तो कुछ सलाह दोस्त लोग दे रहे हैं कि मतलब होम्योपैथिक यहाँ से इस्तेमाल किया जाए थोड़ा और अच्छा रहेगा, तो इसके लिए मैं आपका सुझाव जानना चाहूंगा, क्या ठीक रहेगा नहीं रहेगा। तीसरा एक सवाल ये है कि होम्योपैथिक का असर इतना धीमा होता है, जैसे एक बीमारी थी जिसको अंग्रेजी डॉक्टरों ने मना कर दिया था इसका इलाज संभव नहीं है, होम्योपैथिक इस्तेमाल किया गया तो ठीक हुआ, धीरे धीरे 2-3 महीना लगा, लेकिन कम मतलब धीरे में असर करने की वजह से दवा छोड़ के चेंज कर दिया गया, मतलब खुद ही चेंज कर लिया हमने वो होम्योपैथिक का, फिर बाद में हमें उससे ज्यादा असर दिखा नहीं, तो क्या हम दोबारा उसी दवा पर वापस जा सकते हैं? इससे पहले ठीक अच्छा असर हुआ था। ये 3 सवाल है।
0: चलिए देखिए, बहुत सारी चीजें तो जो आपके सवाल हैं उसी में जवाब भी छुपे हुए हैं। खैर, डॉक्टर चित्रा आपको विस्तार से बताएंगी क्योंकि इन्होंने बोला डॉक्टर साहब की, इन्होंने खुद ही बोला कि हमें काफी फायदा हुआ, थोड़ा डिले या थोड़ा धीरे से फायदा होता है लेकिन फायदा हुआ, और इन्होंने छोड़ दिया। कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी बीमारी लंबे समय में या क्रोनिक हो जाती है तो उसमें समय लगता है ठीक होने में, लेकिन हम बार बार रेटेड डॉक्टर में भी, यहां हमारे जितने गेस्ट आते हैं तो बताते हैं कि आप छोड़िए नहीं, मेडिसिन को पूरी तरह से छोड़ना नहीं है, आप डॉक्टर के पास फीडबैक लेके जाइए तो आपको सही इलाज मिलेगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में?
2: क्योंकि पहले मैं एक चीज साफ साफ बोलना चाहती हूँ, ये जो कुछ बीमारियां मैकेनिकल कॉज से जो होता है, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर, दे विल डील इट, ऑर्थोपेडिशियंस विल डील इट। हाँ, डिलेड हीलिंग है तो वी कैन गिव मेडिसिन, हमको मेडिसिन दे सकते। सो नेचर ऑफ द डिजीज कॉज, whether it is mechanical or in any other way, ये matter करता है। Okay, the first question को मैंने address कर दिया। बाकी मैं एक हटे से बोलना चाहती हूँ, कभी कभी हमें second prescription, मतलब first prescription act करने के बाद क्या करना है, कभी कभी potency बढ़ाना पड़ेगा। Like पहले 30 दे दिया, now we have to give 200 or vernum, all depends upon, again you have to re-evaluate the symptoms. क्योंकि हमारी जो आप बार बार बोल रहे थे जड़ से खत्म करना, सो दैट इज आवर मिशन
0: जी। और जैसे इन्होंने ये पूछा कि क्या हम दोबारा से उस मेडिसिन पे जा सकते हैं जो उन्होंने छोड़ दी थी, तो अगर ये पहले होम्योपैथी ले रहे थे और फिर उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया लेकिन अब ये दोबारा से उसे शुरू करना चाहते
2: हैं, मे बी वी हैव टू चेंज द पोटेंसी,
0: ओके,
2: नॉट द मेडिसिन,
0: बट इट विल वर्क,
2: यस
0: इट कैन वर्क,
2: यस।
0: तो ये मैसेजेस का सिलसिला शुरू करती हूँ, वैसे बहुत सारे मैसेज हमारे पास हैं। डॉक्टर चित्रा वासु मैम, मैं भी गोली नहीं पर लिक्विड बोतल द्वारा पेट की प्रॉब्लम से इलाज करा मैंने और बहुत फायदा हुआ। डॉक्टर साहिबा, मानसिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी का क्या महत्व है? नरदेव सिंह चौहान कोटद्वार उत्तराखंड से लिख रहे हैं। तो जैसे गोलियां दी जाती है होम्योपैथी की, तो क्या लिक्विड फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है जैसे इन्होंने लिखा है?
2: हाँ, टिंचर्स आर अवेलेबल मैम क्यू फॉर्म में, वो एडमिसिबल है।
0: अच्छा, तो वो इक्विवेलेंट है, वो डिपेंड करता है,
2: डिपेंड करता है
0: किस चीज में क्या दिया जाएगा। यशपाल जी लिख रहे हैं द्वारका दिल्ली से, नमस्कार तुषाली मैम, मैं डॉक्टर चित्रा, नाइस टॉपिक। इनके क्वेश्चंस हैं कुछ कि क्या होम्योपैथी मेडिसिन कैसे प्रिपेयर की जाती है, हाउ आर दे प्रिपेयर्ड, ट्रायल कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, एंड इन विच डिजीजेस होम्योपैथी मेडिसिन वर्क्स बेस्ट।
2: भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑफिशियल कॉम्पेंडियम रखा हुआ है, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, डिफरेंट डिफरेंट एडिशंस है, उसमें सारे चीज जो स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज के बारे में दे आर डीलिंग दैट
0: जी। और कैसे इन्होंने लिखा है कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो जैसे बाकी
2: मेडिसिन के बारे में भी उसमें लिखा हुआ है
0: जी। और हमारे ये श्रोता है राजदीप सिंह इंदा मनोहर राजस्थान से, इन्होंने लिखा है कि मुझे 10 से 12 सालों से एसिडिटी की समस्या है और अब काफी हाई लेवल पे ये हो गई है जिसकी वजह से मैं कुछ खा पी नहीं पा रहा हूँ, दुबला होता जा रहा हूँ,

0: वजन नहीं बढ़ रहा है, क्या मैं होम्योपैथी मेडिसिन ऐसे ही शुरू कर सकता हूँ बिना कोई जांच कराए और ये ठीक हो जाएगी? तो क्या ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं है. कभी कभी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन हो सकता है, वो हमें टेस्ट करना पड़ेगा.
0: लेकिन बिना टेस्ट के क्या मेडिसिन दी जा सकती है होम्योपैथी की?
1: अगर ओनली फंक्शनल सिम्टम्स है तो
0: अच्छा.
1: वी कैन एड्रेस,
0: जी,
1: बट वी हैव टू फाइंड आउट हम, क्योंकि जो अंदर क्या चल रहा है हमें मालूम नहीं है ना. सो व्हाट इज द टूल? टेस्ट है ना.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद इनके दिमाग में है कि होम्योपैथी की मेडिसिन ऐसे ही ली जा सकती है, तो टेस्ट वहां भी कराने पड़ते हैं. और ये हमें मैसेज लिखकर भेजा है मुजफ्फर अरमान, खुर्द पंजाब जिला मालर कोटला से. मैडम जी, मेरे पैरों में दर्द रहता है और मैं मेडिसिन ले चुका हूं पर कोई फायदा नहीं हुआ है, क्या आप मेडिसिन का नाम बता सकती हैं? पर ये तो मैं बता देती हूँ, ये मैं आपको जवाब मैं भी दे सकती हूँ. वो इसलिए कि दवाई का नाम हम रेडियो डॉक्टर में नहीं बताते हैं, तो यहाँ भी नहीं बता सकते. सॉरी, आपको जाना पड़ेगा एक स्पेशलिस्ट के यहाँ. यहाँ हम ये कार्यक्रम अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं. अगर आप कोई बात होम्योपैथी से संबंधित पूछना चाहें, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट बैठे हैं हमारे साथ, आपकी कोई मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई संशय हो, कुछ आपके मिथ हो, या कहीं से आपने कोई बात सुनी हो, या कोई बीमारी से संबंधित आपको कुछ बताना हो, पूछना हो, आप कर सकते हैं. पर हम दवाई यहां इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि दवाई जो है बहुत ही कस्टमाइज चीज है, उसके लिए बहुत सारे बिल्कुल बहुत सारे सिम्टम्स टेस्ट करने के बाद डॉक्टर बताते हैं, तो वो सब तो हम यहां नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट मैसेज हमें लिखकर भेजा है परिधि ने, दिल्ली से लिख रही हैं, वेरी गुड आफ्टरनून टू शालिनी मैम एंड डॉक्टर चित्रा. मेरा क्वेश्चन है कि इज देयर एनी होम्योपैथी ट्रीटमेंट फॉर एलर्जी विथ कॉन्स्टेंट डस्ट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एंड राइजिंग पॉपुलेशन लेवल? इज देयर एनीथिंग वी कैन टेक ऑन अ रेगुलर बेसिस जस्ट टू कीप इम्यूनिटी हाई?
1: डेफिनेटली. आई थिंक ऐसी वाला सिचुएशन में है होम्योपैथी की स्कोप.
0: ओके,
1: ब्यूटिफुली वी कैन हैंडल इट.
0: ओके,
1: दैट इज व्हाट सस्टेनेबल केयर.
0: ओके, सो वेरी नाइस. आपका बहुत क्वेश्चन हमारे डॉक्टर साहिबा को पसंद आया है. तो इस तरह के केसेस में होम्योपैथी वर्क्स वेरी वेल, शी इज सेइंग. तो थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग अस दिस क्वेश्चन. और तिरकी जी लिख रहे हैं पंजाब से कि ग्लूकोमा का होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है?
1: यस, डेफिनेटली. But again, I am saying we have to
0: take the case. But treatment है. चलिए, हमारे श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो,
2: नमस्कार जी.
0: जी नमस्कार.
2: मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे किसी को थायराइड है तो होम्योपैथी में कोई इसे दवाई लेने से कोई फायदा होता है कि नहीं?
0: थायराइड का कुछ ट्रीटमेंट है?
1: सेवरल कैटेगरीज होता है ना थायराइड डिसऑर्डर्स में, थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स में. मैम, आफ्टर टेकिंग द केस डेफिनेटली बेस्ड अपॉन द सिम्टम्स, लक्षण के अनुसार डेफिनेटली है मेडिसिन.
0: जी, इसमें रिलीफ मिल सकता है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं. प्रकाश जी लिख रहे हैं रोहिणी दिल्ली से कि क्या बीपी शुगर का इलाज भी हो सकता है? तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप क्लियर करें कि क्या, जैसे हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि क्या बीपी में ले सकते हैं, क्या शुगर में ले सकते हैं, क्या थायराइड में, उन्होंने पूछा है, तो प्लीज बताएं.
1: हर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में होम्योपैथी बहुत बढ़िया काम करते हैं. सो डेफिनेटली मैम है.
0: जी, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं. हेलो,
3: नमस्कार जी.
0: जी नमस्कार, आप चलिए नाम बताइए.
3: जी, मैं यामिन भाई, रेडियो वाला.
0: जी जी यामिन भाई, स्वागत है. आप पूछिए, क्या पूछना है आपको?
3: नमस्कार.

0: यही मैंने कहा था, पर आपके मुंह से सुनना चाहते हैं मेरे श्रोता जी। तो अगर इफेक्ट आना है तो एक डोज से भी आ सकता है, राइट?
1: बिल्कुल
0: जी। तो ये आपको जवाब मिल गया यामिन भाई, और ये हमें मैसेज लिखकर भेजा है, नाम मुझे अभी नहीं दिख रहा है, लिख रहे हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे प्रिपेयर होती है हम बता चुके हैं, डाइल्यूशन एंड सक्सेशन, बहुत सारी इन्होंने पोटेंसीज की बात की है, वो तो अब हम नहीं ले पाएंगे, समय नहीं है हमारे पास इतना, लेकिन एक बात जो

0: रहे हैं पर हमें फायदा नहीं हुआ, क्या हम स्पेशलिस्ट से मिले?
1: तो आपको मिलना चाहिए ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। और ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, इन्होंने मैसेज किया है वेरिकोज वेन्स के बारे में जानना चाहे कि इसका इलाज हो सकता है क्या, और कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी जानकारी हमें मिल रही है इस कार्यक्रम से। तो वेरिकोज वेन्स हो सकती है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और ये लिखा है रवि जोशी जी ने मेरठ से कि मुझे ब्रोंकाइटिस थी और होम्योपैथी मेडिसिन से काफी ठीक हो गई है, लेकिन थोड़ा पेशेंस की जरूरत पड़ी। इन्होंने लिखा है कि मुझे इससे काफी लाभ हुआ है। तो बहुत धन्यवाद कि आपने ये शेयर किया हमारे साथ। होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद क्या खाएं क्या नहीं खाएं बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि अगर होम्योपैथी मेडिसिन हम ले रहे हैं उसके साथ हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखनी होती हैं?
2: 90% ऑफ केसेस में जनरली आई रिकमेंड टू अवॉइड कॉफी एंड कैम्फर। बाकी आफ्टर टेकिंग द केस मुझे समझ में आता है वो पर्टिकुलर पेशेंट को कौन सी सब्जेक्ट को, मतलब चीज को अवॉइड करना है, दैट कैन अफेक्ट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मेडिसिन।
1: और जनरल भी मैंने देखा होम्योपैथी में अवॉइड करने को ही कहा जाता है कॉफी एंड टी को, उसका कोई खास कारण होता है?
2: कॉफी कैम्फर, कैम्फर।
1: अच्छा, तो क्या कारण?
2: एंटीडोट करता है मेडिसिन, बिकॉज इट्स वेरी जेंटिल।
1: ओके,
2: मेडिसिन आर वेरी जेंटिल।
1: और बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस अभी भी बाकी हैं। प्रवीण कुमार लिख रहे हैं विलेज दोहर जिला कैथल हरियाणा से कि 2013 में डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी, काफी दर्द रहता था, तो क्या इतनी पुरानी समस्या भी होम्योपैथी से ठीक हो सकती है? क्या क्रोनिक डिजीजेस या लॉन्ग टर्म डिजीजेस में भी इफेक्टिव होती है, ये जानना चाह रहे हैं।
2: आप ऐसे क्यों सोचते हो, पुराना सिचुएशन है आपके लिए, ये सब नया है ना, सो प्लीज है ना, अपने डॉक्टर के पास जाइए और अपनी कहानी बोल दीजिए।
1: जी, और एक चीज और इन्होंने लिखी है, खाने पे भी इन्होंने कुछ पूछा है कि क्या आलू चावल खाने से शरीर में दर्द बढ़ जाता है? कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीजें होती हैं जो कई बार कहा जाता है, जैसे आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं ये खाइए ये नहीं खाइए, तो इसी तरह से होम्योपैथी में भी ऐसा होता है कि ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है?
2: हाँ, बिकॉज वन मैंस फूड इज अनदर मैंस पॉइजन, सो जी हो सकता है।
1: तो आपको अपने शरीर को समझना होगा,
2: बिल्कुल
1: जी,
2: सेल्फ अवेयरनेस एज पार्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरठ से मैसेज कर रही हैं शचि त्रिहन है, लिख रही है मेरी बेटी को व्हाइट पैचेस की प्रॉब्लम है, होम्योपैथी में ट्रीटमेंट ढूंढना चाह रही हैं, आप बताएं इनकी मदद हो सकती है?
2: पहले तो बहुत जनरल वे में लिख दिया।
1: जी बिल्कुल,
2: बट डेफिनेटली
1: जी, तो एक अच्छी बात डॉक्टर साहब ने यहाँ इस कार्यक्रम में जो हम रहे कि होम्योपैथी लगभग जो आपने कहा कि फिजिकल अलग तरह की एक जो जहां पर ऑपरेशन की जरूरत है या हड्डी टूट गई उस तरह के प्रश्नों में आपने कहा कि वहां पर
2: इमरजेंसी
1: सिचुएशंस में छोड़कर बाकी सब बीमारियों पे होम्योपैथी कारगर है, लेकिन कंडीशन वही है, आपको एक स्पेशलिस्ट से मिलना होगा, अपने सब टेस्ट कराकर और सारे सिम्टम्स बताने होंगे, ये आपने इस पर काफी जोर दिया है। और चलते चलते कोई मैसेज देना चाहें आप हमारे श्रोताओं के नाम?
2: फर्स्टली आई एम, आपने सही बोला, होम्योपैथी इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक स्टैचर, जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, इतनी एसेसिबल, इक्विटेबल, सस्टेनेबल केयर प्रोवाइड करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द ग्लोब, ऑफकोर्स फॉर द नेशन एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ग्लोब। सो बिकॉज होम्योपैथी हमेशा एक इंसान की बेस्ट वर्शन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन पर काम करते हैं। मतलब अगर एक बंदा अपने बारे में, अपने पोटेंशियल के बारे में इतनी पता चल गया तो naturally that can benefit our globe।
1: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मैसेज आपका रहा आज। तो अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारे साथ रही डॉक्टर चित्रा वासु, आप डायरेक्टरेट ऑफ आयुष डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में कार्यरत हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप समय निकालकर यहां आई हैं। इतने सारे जो प्रश्न आए हमारे पास, फोन कॉल्स आई, मैसेजेस आए, उन सबको आपने एड्रेस किया और आप यहां हमारे श्रोताओं से मुखातिब हुई, धन्यवाद आपको, नमस्कार। और अब स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगराहट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवीके पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को लोकसभा के 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हुई थी। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सवेरे 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी आज से 4 दिन के दौरे पर म्यांमार में हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एडमिरल त्रिपाठी म्यांमार के कमांडर इन चीफ जनरल ये विन ऊ, रक्षा मंत्री जनरल यू टून आंग और म्यांमार सशस्त्र बलों

के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। आगामी मानसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में एक बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस से। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विथ मी योर आरजे चेतन। थकान, क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम एक ऐसा विकार है जिसका कारण अभी तक अज्ञातिक नहीं है। हालांकि यह पहले की किसी संक्रमण से संबंधित हो सकता है। थकान ऐसी स्थिति है जो चाहे महीने या इसमें अधिक समय के लिए बिना किसी स्पष्टीकरण के मौजूद रहती है और याददाश्त संबंधी या एकाग्रता संबंधी समस्याओं के साथ होती है। थकान के जोखिम कारक स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह अधिकांश 40 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को होती है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में करीब 4 गुना अधिक होती है। थकान का निदान 5 से 6 लक्षण के निदान से होते हैं। इसका अपना कोई निश्चित परीक्षण नहीं होता है, इसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन इसके लक्षण का उपचार किया जा सकता है और इससे ग्रस्त लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की सलाह दी जाती है। भारत में क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम हजारों लोगों को प्रभावित करता है। यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक प्रचलित है। एक भारतीय अध्ययन के मुताबिक 12% भारतीय महिलाओं को क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम होने का अनुमान लगाया गया है। ये सिंड्रोम शुरू होने की औसत उम्र 30 से 40 वर्ष है। ये कम आयु वर्ग के लोगों में अधिक आम है। इसके लक्षण प्रतिदिन बदल सकते हैं और उनका आना जाना हो सकता है। थकान के बहुत लक्षण होते हैं, लेकिन हर किसी को प्रभावित करने वाले कुछ लक्षण मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे लम्हे प्रोग्राम में, तो सुनते रहिए आरजे चेतन को। तो पहला लक्षण है दोस्तों, अत्यधिक शारीरिक थकान, मानसिक थकान या दोनों। यह स्थिर हो सकते हैं या बार बार इनका आना जाना भी हो सकता है। यह आराम से ठीक नहीं होता। थकान इतनी गंभीर भी हो सकती है कि ये आपको दिनचर्या के काम और सामाजिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करे। कुछ काम करने के बाद अस्वस्थ महसूस करना, नींद की समस्याएं, अलग अलग या एक जगह दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों का दर्द, सर दर्द, एकाग्रता, याददाश्त की समस्या या सही शब्द सोच पाने में समस्या, प्रकाश, शोर या भावनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील होना, भ्रम, सोचने की क्षमता में विलंब या गुमराह महसूस करना, मांसपेशियों की कमजोरी या समन्वय की समस्या। थकान के अलग अलग लोगों में विभिन्न लक्षणों के संयोजन होते हैं, जैसे चक्कर आना, दिल की धड़कन में तेजी या काम करते समय सांस लेने में तकलीफ, ज्यादा पेशाब आना, मतली या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, शरीर के तापमान में गिरावट, हाथों का ठंडा होना और पैरों में पसीना आना, तनाव के दौरान बुरा महसूस करना, वजन में या भूख लगने में बदलाव। थकान के साथ अवसाद होना आम है और इससे थकान के लक्षण बेहतर हो सकते हैं। थकान से ऐसे लक्षण होते हैं जो अन्य बीमारियों के समान है, विशेष रूप से शुरुआती दिनों में। सालों के अध्ययन के बाद भी थकान का कोई ज्ञात कारण आज तक शोधकर्ताओं को नहीं मिल पाया है। हालांकि लोगों में थकान के साथ कई बीमारियां देखी गई है, लेकिन इसके विकास के कारण का अभी

तक पता नहीं चल पाया है। रोग नियंत्रण केंद्र CDC से पता चला है कि शोधकर्ता अभी भी थकान के कारणों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। अध्ययन किए गए कुछ कारकों में शामिल है वायरल संक्रमण। कुछ लोगों को वायरल संक्रमण होने के बाद थकान होती है, इसीलिए शोधकर्ता इसे भी उन कारकों में से मानते हैं जिससे थकान हो सकती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि एप्स्टीन-बार वायरस, ह्यूमन हर्पीस वायरस, माउस ल्यूकेमिया वायरस थकान के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। थकान से ग्रस्त लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली थोड़ी कमजोर हो जाती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कारण थकान होने के लिए पर्याप्त हो गई है। थकान से ग्रस्त लोगों को कभी कभी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि या एड्रेनल ग्रंथि में उत्पन्न हार्मोन के असामान्य रक्त स्तरों का अनुभव होता है, लेकिन इन असमानताओं का कारण अभी अज्ञात है। थकान के जोखिम को बढ़ाने के कारक अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपने लम्हे प्रोग्राम में, तो सुनते रहिए RJ चेतन को। पहला है आयु। थकान किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन यह सबसे सामान्य रूप से 40 और 50 की उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले थकान ज्यादा होती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि महिलाएं अपने लक्षणों के लिए डॉक्टर के पास अधिक जाती है। तनाव के कारण भी थकान हो सकती है। वर्तमान में थकान के स्पष्ट करना ज्ञात न होने के कारण इसकी रोकथाम के तरीके भी नहीं मिल पाए हैं। हालांकि चिकित्सक ऐसे बचने के लिए कुछ जीवन शैली व बदलाव करने की सुझाव देते हैं, जैसे तनाव को कम करें, अत्यावश्यकता और भावनात्मक तनाव से बचने या उसे सीमित करने की योजना बनाएं, प्रत्येक दिन में कुछ समय आराम करें, प्रत्येक दिन एक ही समय पर सोए व उठे और कैफीन, शराब, निकोटिन न लेने का प्रयास करें। अपनी गतिविधियों का एक स्तर बनाए रखें। बहुत अधिक गतिविधियों के कारक आपको थकान हो सकती है। थकान का निदान करने के लिए कोई परीक्षण नहीं है। इसका निदान करने से पहले आपके डॉक्टर कई अन्य बीमारियों का परीक्षण करेंगे, जैसे नींद के परीक्षण ये निर्धारित कर सकते हैं कि बाकी विकारों जैसे स्लीप एपनिया, पैरों में बेचैनी महसूस होना या अनिद्रा के कारण अपनी नींद में समस्या तो नहीं आ रही है। थकान कई चिकित्सा स्थितियों में एक सामान्य लक्षण होता है, जैसे कि एनीमिया, मधुमेह और हाइपोथायरॉयडिज्म। थकान कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि अवसाद, चिंता, बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया का लक्षण है। एक सलाहकार यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि क्या इनसे किसी एक समस्या से आपको थकान हो रही है। जैसे थकावट के अन्य कारणों को हटकर परीक्षण करने के लिए टेस्ट, थायराइड, एड्रेनल ग्रंथि और लिवर के टेस्ट का उपयोग उन विकारों को हटाने के लिए किया जा सकता है जो थकान का कारण हो सकते हैं। थकान से ग्रस्त लोगों में इन परीक्षणों को परिणाम सामान्य होना चाहिए। थकान से ग्रस्त लोगों के लिए सबसे तर्कयुक्त परीक्षण है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो सूजन की अनुपस्थिति को दिखाता है। यदि ESR उच्च या सामान्य श्रेणी से ज्यादा है तो एक अन्य निदान की आवश्यकता हो सकती है। अगर रक्त परीक्षणों में कोई अन्य असामान्यताएं आती है तो आपके डॉक्टर दूसरी परिस्थितियों के लिए परीक्षण शुरू कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको पहले कोई संक्रमण हुआ था या नहीं ये देखने के लिए एंटीबॉडी परीक्षण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा परिश्रम से बचे। जब आप स्वस्थ महसूस करते हैं तो ज्यादा परिश्रम करने से थकान से ग्रस्त लोगों को फिर से अस्वस्थ महसूस हो सकता है। तनाव को कम करें। तनाव में रहने से ऊर्जा में कमी आ सकती है और थकान हो सकती है। मोटापा के कारण भी थकान हो सकता है, इसीलिए इसे संतुलन में रखने के लिए नियमित व्यायाम करें। वेल डियर फ्रेंड्स, दैट वाज अबाउट फटीग एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन अस एंड हाउ टू अवॉइड इट। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेस प्रोग्राम ऑफ लम्हे विद योर RJ चेतन। आई विल गेट बैक टू यू इन अ नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

अमेजिंग अमेजिंग ट्रैक, ये फ्री स्पिरिटेड ट्रैक सुनते ही लगता है ना जैसे श्रुति पाठक सिर्फ सुर नहीं छेड़ रही बल्कि हर लफ्ज के साथ एक एहसास सुना रही हैं। हेलो एंड नमस्ते इंडिया। स्वाइप क्लिक, अल्फा जनरेशन, टेक सेवी, डायनेमिक और आज की दुनिया के यंगेस्ट कंज्यूमर्स, उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं इन तीन वर्ड्स स्क्रॉल, स्वाइप, क्लिक के आसपास ही घूमती नजर आती है। इन्फॉर्मेशन उनके फिंगर टिप्स पे है, दुनिया उनकी स्क्रीन पर है, लेकिन इस डिजिटल स्पीड के बीच कभी कभी जरूरत पड़ती है एक छोटे से पॉज की, यानी एक डिटॉक्स की। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम अल्फा जन के आज के एडिशन लेट्स डिटॉक्स में हम बात करेंगे एनर्जी ड्रेन डिटॉक्स की। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका वर्मा, गुड इवनिंग।

माय व्हाट एन इंटेंस ट्रैक. सीरियसली बहुत ही बढ़िया ट्रैक आपने सुना आकाशवाणी रेनबो पर. ये मूवी देखी है धुरंधर? अगर देखी नहीं है तो देखना जरूर, मस्ट वॉच है गाइस. ये ए जाते हुए लम्हो जरा ठहरो जरा ठहरो, ए जाते हुए लम्हो जरा ठहरो जरा ठहरो, मुझे खुद से मिलना है. इस भागती हुई जिंदगी में अपनी धड़कनों को सुनना है, बस कुछ लम्हे चुरा कर वक्त से खुद के नाम करना है. तो आइए दोस्तों, आज कुछ देर के लिए इस फास्ट पेस दुनिया से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर ठहर कर खुद से मिलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी कभी खुद के साथ बैठना ही सबसे बड़ी इमोशनल हीलिंग होता है. सो लेट्स डिटॉक्स में आज के एडिशन में एनर्जी डिटॉक्स ड्रेन डिटॉक्स के बारे में बात करेंगे. जब बिना वजह थकान महसूस होती है, जब कुछ करने का मन नहीं करता वाली फीलिंग दिल को घेर लेती है, और जब रेस्ट के बाद भी फ्रेशनेस कहीं खो जाती है, आज मैं और मेरा डेली रूटीन एक छोटा सा सेल्फ चेक इन करेंगे. आज हम अपने आप से पूछेंगे, क्या मैं सिर्फ अपनी बॉडी को आराम दे रहा हूँ या दे रही हूँ, या अपने माइंड को भी स्पेस दे रही हूँ या दे रहा हूँ? क्या मैं अपने इमोशंस को समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ, या उन्हें चुपचाप इग्नोर कर रही हूँ या इग्नोर कर रहा हूँ? और सबसे जरूरी, क्या मैं डेली रूटीन की छोटी सी छोटी चॉइसेस में मेरी एनर्जी, मुझे वो एनर्जी दे रही है या धीरे धीरे मेरे अंदर से एनर्जी ड्रेन कर रही है? तो आइए थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, खुद को सुनते हैं और अपनी एनर्जी को जेंटली डिटॉक्स करते हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं ना बंधु, तभी जिंदगी की असली फ्रिक्वेंसी वापस आती है और उसकी रिदम फिर से महसूस होने लगती है. फिलहाल ये ट्रैक आपको अपने जोन में ले जाएगा. बहुत ही लवी डवी ट्रैक है, लवी डवी भी नहीं कहूँगी. बहुत एक कश्मकश होती है जब दो लवर्स जो होते हैं काफ़ी सालों बाद मिलते हैं, और वो जो फीलिंग डेवलप होती है एक दूसरे

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

लवली ट्रैक, सीरियसली ये ट्रैक टाइम के साथ और खूबसूरत लगने लगता है, और इसका जो मैजिक है ना वो है तोची रैना की रॉ सोलफुल वॉइस, आपको एक क्वाइट इमोशनल स्पेस में ले जाती है जहाँ आप खुद से कनेक्ट करते हैं, है ना। आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ प्रियंका वर्मा, आपके साथ अल्फाजन प्रोग्राम चल रहा है, तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बिना वजह जो थकान दिल पर उतर आती है, बिना वजह जो थकान दिल पे उतर आती है, वो खामोश कहानियों की सदा होने लगती है, वो खामोश कहानियों की सदा होती है। मुस्कुराते चेहरे के पीछे रूह भी चुपके से थक जाती है, मुस्कुराते चेहरे के पीछे रूह भी चुपके से थक जाती है। जब दिल और दिमाग दोनों बिना वजह बोझ से भर जाएं, समझ लो जिंदगी कह रही है कि अब खुद से कनेक्ट कर लो। जी हाँ, आप खुद को महसूस करना जरूरी हो गया है। मैं थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करती हूँ, मैं सोचती तुकबंदी आई है, कई बार नहीं आई है, मैं सोचती मेरे अच्छे वाले दोस्त समझ जाएंगे। खैर, कभी कभी जिंदगी अजीब सी खामोशी में ढल जाती है, सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर कुछ टूट सा रहा होता है। कभी आपने महसूस किया है कि दोस्तों पूरा दिन कुछ खास नहीं किया, फिर भी अंदर से अजीब थकान रहती है। बॉडी ठीक होती है, मतलब आपने कुछ हैवी काम नहीं किया है, ना फिजिकल एनर्जी इतनी यूज हुई है, फिर भी दिल और दिमाग बोझ से भरे रहते हैं। ऐसा लगता है कभी कभी जैसे माइंड और हार्ट हार मान चुके हैं। इसे कहते हैं इमोशनल एग्जॉशन, बिना काम की थकान, जिसमें बहुत सारे दोस्त आज का एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। जी हाँ, आजकल हम सब एक इनविजिबल रेस में भाग रहे हैं, बेटर लाइफ, बेटर इमेज, बेटर अप्रूवल। इस रेस में हम अपने इमोशंस को पॉज

पर रख देते हैं, पर एक बात तो पक्की है मेरे बंधु, इमोशंस कभी डिलीट नहीं होते, वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं और एक वक्त आता है जब वो एक्यूमुलेशन थकान बनकर बाहर आता है। इसलिए कभी बिना वजह उदासी होती है, कभी कुछ भी करने का मन नहीं करता। इनफैक्ट वो बातें जो हम कह नहीं पाते, वो आंसू जो गिरते नहीं है, वो एक्सपेक्टेशंस जो हम खुद से करते हैं और दूसरों से जोड़ भी लेते हैं, सब मिलकर एक इनविजिबल वेट बना देते हैं जिसमें हम थका थका महसूस करते हैं। ये थकान एक सिग्नल है कि आपका माइंड सिर्फ सोच नहीं रहा बल्कि ओवरलोड हो चुका है। आपका दिल सिर्फ फील नहीं कर रहा बल्कि ओवर फील कर रहा है, और ऐसा भी लगता है इसे अंदर से एनर्जी ड्रेन हो गई है, जैसे किसी ने दिल का स्विच ऑफ कर दिया हो। इमोशनल एग्जॉशन का सबसे पेनफुल हिस्सा यही है कि इसे कोई देख नहीं पाता। जी हाँ, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम जो फील कर रहे हैं उसे कोई देख नहीं पाता। लोग कहते हैं आराम करो सब ठीक हो जाएगा, पर कैसे समझाएं उन्हें कि ये थकान जो है, ये मतलब कैसे समझाएं कि ये थकान नहीं है जो समझ से ठीक होगी। कभी किसी की एक छोटी सी बात दिल पर इतनी गहरी लग जाती है, कभी अपने ही सपने अपने लिए बोझ बन जाते हैं, और कभी बस इतना सा होता है कि हम थक ही जाते हैं स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करते करते। इस थकान का सॉल्यूशन कोई एक दिन का ब्रेक नहीं होता, बल्कि खुद के पास लौटना होता है, अपने इसे ऑनेस्टली कनेक्ट करना होता है, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने की बजाय उन्हें महसूस करना है। कभी कभी बस ये मान लेना है कि हाँ, मैं थक गया हूँ, मैं भी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, और ये नॉर्मल है। ये समझना भी हीलिंग का पहला स्टेप है। तो जी, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने के बजाय उन्हें समझना बहुत जरूरी है। और साइंटिफिक लेवल पे बात करें तो इमोशनल एग्जॉशन एक न्यूरोबायोलॉजिकल रिस्पांस है, जहां क्रॉनिक स्ट्रेस का कारण कॉर्टिसोल लेवल कंटिन्यूसली हाई रहते हैं, जो फटीग क्रिएट करते हैं। इस स्टेट में जो होते हैं, बहुत सारी चीजें जो होती हैं, ब्रेन से जो कनेक्टेड एमिग्डाला होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, जो ब्रेन को कॉन्स्टेंट अलर्ट मोड पे रखता है, और साथ ही फ्रंटल कोर्टेक्स ओवरलोड होने पर फोकस, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन को रिड्यूस करते हैं। जी हाँ, इंक्रीज कॉग्निटिव लोड ब्रेन को रेस्ट के बाद ही प्रॉपरली रिकवर नहीं होने देता। ये सारे फैक्टर्स मेंटल प्रोसेसिंग को स्लो और एनर्जी को ड्रेन करते हैं। रिजल्ट क्या होता है, बॉडी फिजिकली इनएक्टिव होने के बावजूद भी स्ट्रांग मेंटल और इमोशनल फटीग एक्सपीरियंस करती है। तो जी मित्रों, जब जिंदगी बिना वजह थकाने लगे तो समझ जाइए कि आपका दिल आपसे कह रहा है कि अब बस थोड़ा सा प्यार खुद से भी कर लो। फिलहाल ये रोमांटिक ट्रैक सुनते हैं, जी हाँ, जो धीरे धीरे आपको स्पिरिचुअल ट्रांस में ले जाएगा।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: अच्छा।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, हमारा देश चमक रहा है, चमकेगा क्या, चमक रहा है। और हमारा देश के लिए बस ये कहेंगे कि प्रगति इसकी होती जाए और बस भारत माता की जय। और इसी के साथ चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जेन, मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। जब कुछ भी करने का मन नहीं, दिल से आवाज़ बन जाए, जब कुछ भी करने का मन नहीं, दिल से आवाज़ बन जाए, समझ लो रूह भी थोड़ा सुकून चाहिए, समझ लो रूह को भी थोड़ा सुकून चाहिए, थोड़ा ठहराव मिल जाए। हर दौड़ ज़रूरी नहीं होती, हर रुकना हार नहीं होता, कभी कभी रीसेट करके ही लाइफ खूबसूरत हो जाती है। जिंदगी के कुछ फेजेस ऐसे होते हैं दोस्तों जहां सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर एक डिस्कनेक्ट फील होता है। काम पेंडिंग होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने होती है, लेकिन दिल कहता है अभी नहीं, बस आज नहीं। ये फीलिंग सिर्फ लेजीनेस के कारण नहीं होती है, बल्कि एक एनर्जी ड्रेन का इंडिकेशन होती है, एक ऐसी स्टेट जहां आपका माइंड और इमोशंस ओवरलोड हो चुके होते हैं। हम अक्सर इस फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं, खुद को पुश करते हैं और अपने आप से कहते हैं इतना भी क्या थक गए हो, दूसरे लोग भी तो मैनेज कर रहे हैं।

चल रहे हैं। खैर, तो दोस्तों जब हम कहते हैं ना कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो ये सिर्फ एक इमोशनल स्टेटमेंट नहीं होता, बल्कि बॉडी और ब्रेन का एक बायोलॉजिकल सिग्नल होता है। साइंस के हिसाब से ये फीलिंग अक्सर मेंटल फटीग और न्यूरो केमिकल इम्बैलेंस का रिजल्ट होती है। जी हाँ, हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली काम करता रहता है, डिसीजन लेना, इमोशंस प्रोसेस करना, स्ट्रेस हैंडल करना। इस प्रोसेस में ब्रेन के कुछ क्यू की न्यूरो ट्रांसमीटर्स जैसे डोपामिन जो मोटिवेशन और रिवॉर्ड से रिलेटेड होता है, सेरोटोनिन जो मूड रेगुलेशन से होता है, और कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और इमोशनल प्रेशर में रहते हैं ना दोस्तों, कॉर्टिसोल जो होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसका लेवल हाई हो जाता है। इनिशियली हम अलर्ट बनाता है ये, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस केस में ये ब्रेन को एग्जॉस्ट कर देता है, थका देता है, और जैसे ही डोपामिन लेवल डिक्रीज होते हैं, जिससे मोटिवेशन और इंटरेस्ट दोनों कम हो जाते हैं, रिजल्ट कुछ भी करने का मन नहीं करता। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि कुछ भी करने का मन नहीं करता वाली जो फीलिंग है, ये इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, इमोशनल ओवरलोड, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन, या फिर छोटी छोटी बातें जो हम इग्नोर कर देते हैं। जब हम अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं करते, उन्हें दबा देते हैं, तो वो अंदर ही अंदर एनर्जी कंज्यूम करते रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब बॉडी और माइंड दोनों कहते हैं बस अब और नहीं। एनर्जी ड्रेन डिटॉक्स का मतलब सिर्फ रीसेट लेना नहीं, ये एक कॉन्शियस एफर्ट है अपने आप को समझने का। कभी कभी कुछ नहीं करना भी एक जरूरी स्टेप होता है। खुद को फोकस करना हर वक्त प्रोडक्टिव रहने के लिए इस फीलिंग को और भी गहरा बना देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को परमिशन दें पॉज लेने की, स्लो होने की। छोटी छोटी चीजें हेल्प करती हैं, जैसे नेचर के साथ थोड़ा वक्त अपने थॉट्स के लिए लिखना, थोड़ा वक्त बिता लीजिए नेचर के साथ, थोड़े थॉट्स लिख लीजिए, या फिर सिर्फ बिना वजह किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ खुद को साथ बैठना। सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये फेज परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है कि हम अपनी एनर्जी को रीसेट करने की जरूरत है। कुछ भी करने का मन नहीं करता एक वीकनेस नहीं, बल्कि एक एनर्जी रिमाइंडर है कि आप मशीन नहीं है, आपको भी ब्रेक चाहिए, आपको भी अपनी रूह को रिचार्ज करना है, और शायद इसी रुकने में, इसी ठहराव में आप दोबारा खुद को पाने की शुरुआत करें। फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जैन, और फिलहाल ये जो गाना है ना वो शेरा बड़ा चंगा गाना है जी, KC2 का। एंजॉय कीजिए, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ, प्रियंका वर्मा।

पूरी हुई पर सुकून कहीं खो गया, जिस्म तो ठीक है पर दिल क्यों बोझ से भर गया। खामोश सी थकान है जो लफ्जों में ढलती नहीं, ये नींद की कमी नहीं ये अंदर की उलझन है मेरे दोस्त जो संभलती रही। अक्सर हम ये मानते हैं कि थकान का सोल्यूशन है कि रेस्ट ले लो, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने पूरा रेस्ट लिया है, 7-8 घंटे की नींद भी की है या उससे ज्यादा भी, फिर भी उठकर वो फ्रेशनेस, वो हल्कापन महसूस नहीं होता। बॉडी ठीक लगती है लेकिन माइंड और इमोशंस जैसे अभी भी थके हुए हो। बंधु, ये सिचुएशन एक इम्पॉर्टेंट बात समझाते कि थकान, हर थकान फिजिकल नहीं होती, कुछ थकान मेंटल और इमोशनल एनर्जी ड्रेन की वजह से होती है जिसका सोल्यूशन सिर्फ सोने से या रुकने से नहीं मिलता। हम कंटिन्यूसली स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, इमोशनल प्रेशर में रहते हैं तो हमारा माइंड कभी ट्रूली स्विच ऑफ नहीं होता, इसलिए रेस्ट के बाद भी रिचार्ज फील नहीं होता। जब हम अपने अंदर चल रही बातों को इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स, अनस्पोकन फीलिंग, कॉन्स्टेंट कंपैरिजन या गिल्ट, तो ये सब धीरे धीरे हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और जब ये एक्यूमुलेट हो जाता है तो रेस्ट भी उन्हें इंस्टेंटली क्लियर नहीं कर पाता। एनर्जी ड्रेन डिटॉक्स का असली मतलब यही समझ में आता है कि सिर्फ रेस्ट लेना नहीं बल्कि एनर्जी के सोर्स को और जो उसका लीक है, कहाँ पर एनर्जी लीक हो रही है उसको समझना है। हमें ये देखना है कि हमारी जो एनर्जी है वो कहाँ खर्च हो रही है, अननेसेसरी स्ट्रेस में, ओवर थिंकिंग में या दूसरों से कंपैरिजन में। तो जी मेरे बंधुओं, मीनिंगफुल डिटॉक्स तब होता है जब हम सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि माइंड और इमोशंस को भी रीसेट करते हैं, जैसे अपने थॉट्स को एक्नॉलेज करना, उन्हें सप्रेस न करना, अपने लिमिट्स को एक्सेप्ट करना, हर वक्त परफेक्ट प्रेशर में ना लेना, परफेक्ट नहीं होते हमेशा, डिजिटल और सोशल ओवरलोड से थोड़ा डिस्टेंस लेना और सबसे जरूरी खुद के साथ ऑनेस्ट होना। साइंटिफिक लेवल पर बात करें तो साइंस के हिसाब से सिर्फ सोना ही काफी नहीं होता, स्लीप की क्वालिटी और ब्रेन का इंटरनल स्टेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग टाइम स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं जो स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। इसका डायरेक्ट असर डीप स्लीप और REM स्लीप पर पड़ता है जो बॉडी रिपेयर और इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए जरूरी होती है। जी हाँ, अगर ये जो स्टेजेस हैं प्रॉपरली कंप्लीट ना होना तो नींद के बाद भी फ्रेशनेस फील नहीं होगी, साथ ही डोपामिन, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस से एनर्जी और मोटिवेशन भी लो हो जाता है। इसलिए रेस्ट के बाद भी फ्रेशनेस फील नहीं होती कोई वीकनेस नहीं है बल्कि एक बायोलॉजिकल फीडबैक सिस्टम है जो आपको सिग्नल देता है कि आपकी एनर्जी सिर्फ स्लीप से नहीं बल्कि बैलेंस मेंटल स्टेट से रिस्टोर हो गई। जब आप इस सिग्नल को समझ कर अपने लाइफस्टाइल और इमोशनल हेल्थ पर काम करेंगे ना, तब रेस्ट सिर्फ एक रूटीन नहीं रहता बल्कि एक ट्रू रिकवरी प्रोसेस बन जाता है जहां से आप जेन्युइनली फ्रेश, फोकस्ड और इमोशनली स्टेबल महसूस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी ये आपको लेक्चर लग रहा होगा पर लेक्चर नहीं, जब मैंने भी ब्रेन के अपने हिस्सों को पढ़ना शुरू किया इस प्रोग्राम के लिए और पहले भी मैं पढ़ चुकी हूँ साइकोलॉजी, तो मुझे समझ में आया कि हम जो कहते हैं कि बेटे चिंता है बाबर नेगेटिव करते रहते हैं, सोचते रहते हैं तो उसका असर आपकी बॉडी पे आएगा, आपकी हेल्थ पे आएगा, तो वो होता है, सिस्टम होते हैं बॉडी के, जो मैंने थोड़ा बहुत इस प्रोग्राम में समझाने की कोशिश की है। क्योंकि आजकल बहुत से हम भी होते हैं उसमें शामिल, बहुत से हमारे जो दोस्त हैं वो थका थका महसूस करते हैं इतना सोने के बाद भी, इतना काम भी नहीं कर रहे होते। हम अपने मम्मी पापा को देखो कितना काम करते हैं वो बिल्कुल भी टायर्ड नहीं होते। खैर, मैं बस यही कहूंगी कि अब मेरे जाने का टाइम आ गया और जाते जाते बस आपसे यही कहूंगी दोस्तों कि हर दिन जिंदगी में कुछ कहना चाहती है, हर दिन जिंदगी हमें कुछ कहना चाहती है पर अक्सर हम उसे शोर में उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। कभी खुद के साथ बैठिए, डिजिटल शोर को हल्का कीजिए और अपनी इनर वॉइस को सुनिए, क्योंकि जब अंदर सुकून होता है तो जिंदगी अपने आप रिदम में आ जाती है। इसी के साथ मैं प्रियंका वर्मा लेती हूँ आपसे इजाजत। स्टे माइंडफुल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे अलर्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।

क्या मोटिवेशनल ट्रैक है, सीरियसली गाना सुना नहीं गया होगा, महसूस भी किया होगा। आकाशवाणी रेन पर मैं हूँ प्रियंका वर्मा, आपके साथ अल्फा जेन प्रोग्राम चल रहा है, तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नींद पूरी हुई पर सुकून कहीं खो गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। मगराहाट पश्चिम में 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 3 बजे तक 72.43% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज गुजरात के सूरत में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए और 1 जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रहने और लू चलने की आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मई के दूसरे और चौथे सप्ताह में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वी तट पर भी लू की स्थिति रहने का अनुमान है। हालांकि पहले और तीसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और बारिश तथा बादलों के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स ने 226 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। वहीं डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना फ्रांस से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल भारत ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। लक्ष्य सेन चोट के कारण आज मैच नहीं खेल पाएंगे और उनकी अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट पर उतरेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो हेलो हेलो, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा, और लेकर आ गया हूँ ये प्यारा सा प्रोग्राम जिसका नाम है सिटी लाइट्स, जिसमें हम करते हैं सिटी एंड अराउंड जो भी चीजें हो रही हैं उनके बारे में बात, आपको देते हैं इन्फॉर्मेशन, आपको कराते हैं एंटरटेनमेंट विद द म्यूजिक डेफिनेटली, एंड बहुत सारी बातें हम आपसे करेंगे इस शो में। आपको क्या करना है, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, सुनते रहना है आकाशवाणी रेनबो। और शो का आगाज हमेशा की तरह एक प्यारे से ब्यूटीफुल गाने के साथ। जो गाना है ना वो वही बातें कर रहा है जो मैं आपसे कहता हूं। अब आप गाना सुनिए, उसके बाद मैं आपसे और बातें करूंगा इसी गाने के बारे में और दिल्ली एनसीआर में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में। वेदर की अपडेट आपको देंगे, साथ ही साथ ट्रैफिक की भी आपको अपडेट देंगे, तो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। मैं आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा।

ये आपसे जो मोह है, जो प्यार है, उसी के धागे हैं जो हमें खींचे ले आते हैं आपकी तरफ। एंड 24x7 रहते हैं हम आपके साथ, और आकाशवाणी रेनबो और सिटी लाइट्स में हम आपको बताएंगे सिटी की अपडेट्स, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नया है, और ऑफ कोर्स वेदर। वेदर के बारे में अगर बात करें तो भाई मौसम जो है ना बहुत ही अनप्रडिक्टेबल सा होता जा रहा है, और दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हो रही है। और अभी ताज़ा अगर आप मैं बताऊँ तो दिल्ली का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, और फिलहाल अभी तो खिड़की से देख पा रहा हूँ तो धूप निकली हुई है। और बट कहा जा रहा है अगर मौसम विभाग की माने तो 6 मई तक मौसम सुहावना बना रहेगा, और ये हो रहा है साइक्लोनिक जो सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो चल रही है तो उसके चलते येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, और बिटवीन संडे एंड मंडे यानी कि रविवार और सोमवार को दिल्ली में धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना बताई जा रही है। और इसको लेकर ये भी दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है 2 दिन का, और कहा जा रहा है कि इस दौरान जो टेम्परेचर रहेगा वो बिटवीन 35 डिग्रीज टू 38 डिग्रीज के आसपास रहने वाला है। और या कहा यह भी जा रहा है कि आफ्टर दिस स्पैन, ये जो 2 दिन का मौसम का हाल है, इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत में बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी पड़ने वाली है। तो भाई ये जो मौसम अभी आपको सुहावना लग रहा है, ये लग रहा है कि चलो थोड़ा सा टेम्परेचर

गिरा है, ये जो वो आने वाली गर्मियां है उसकी दस्तक है। और भाई अपना ध्यान रखिएगा सर, यही आपको कह सकते हैं। और इस मौसम में भी अपना ध्यान रखिएगा, कहीं आने बाहर आने जाने से पहले जरूर चेक कर लीजिएगा कि भाई मौसम क्या रहने वाला है, मौसम कैसा है। भाई तेज आंधी और तूफान में आप फंस जाए कहीं, वो तो हम नहीं चाहेंगे। तो बस क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो भी चल सकती है जब आंधी आएगी। तो बस हम तो चाहते हैं भाई यू रिमेन सेफ एंड साउंड एंड स्टे विद अस, बाकी एंटरटेनमेंट के लिए, म्यूजिक के लिए एंड इंफोटेनमेंट के लिए हम हैं ना आपके साथ हमेशा। एक गाना आपके लिए प्यारा सा जो मैंने आपको सुनाया था अभी गाना, उससे पहले मैं प्ले करने वाला था गाना, बिकॉज ऑफ सिस्टम इश्यूज इट डिड नॉट प्ले समहाउ, बट भाई दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, तो ये गाना तो बनता ही है।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ऑलराइट। सो ये गाना सुन रहे थे आप, बहुत ही प्यारा गाना सुन रही थी चौहान की आवाज में। और आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स में, आपके साथ आपका म्यूजिकल हम सफर, आरजे निखिल वर्मा। भाई आज आपको एक मतलब आई डोंट नो इफ यू ऑलरेडी न्यू इट, बट आज एकदम से मैं बाहर गया था, यू नो आई वाज आउट इन अ रेस्टोरेंट और मैं वहां बैठ के मतलब कुछ खा रहा था और अचानक से सायरन बज गया पूरे रेस्टोरेंट में सबका, एक साथ सबके साथ ये हुआ होगा। एंड मतलब जिनसे भी मैंने पूछा, जिनसे भी मैंने रब्ता किया, उन्होंने बताया, बट यू नो व्हाट, एवरीबॉडी गॉट इन अ पैनिक मोड कि ये हो क्या रहा है एकदम से। जबकि ये एक मतलब ऐसा कुछ मैसेज या कोई डराने वाली बात नहीं थी, ये सिर्फ एक ट्रायल था। और ये ट्रायल था टाइम डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम का, जो कि आज ही लॉन्च हुआ है। और ये एक मैसेज आया था और वो मैसेज भी अगर आपने पढ़ा होगा, खैर वो मैसेज पढ़ने के बाद ही हमें पता लगा कि ये एक अलर्ट मैसेज है, इट्स अ ट्रायल मैसेज। और उस मैसेज में लिखा हुआ भी था खास साफ साफ कि ये स्वदेशी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं और ये सेल ब्रॉडकास्ट सेवा जो है जिसकी शुरुआत की गई है और आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी, जिससे सतर्क नागरिक और राष्ट्रीय हित में भी ये है। और इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता की तरफ से कोई कार्रवाई या कोई एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक अलर्ट आया था, बट उसकी टोन, उसका जो अलार्म था, सायरन जिसे हम बोल सकते हैं, वो इतना लाउड था क्योंकि रेस्टोरेंट में काफी लोग बैठे हुए थे एंड एवरीबॉडी वाज इन अ पैनिक मोड कि ये हो क्या रहा है, क्या मैसेज आया है, एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट इट। और आई सॉ कि लोग जो रेस्टोरेंट में थे, जो किचन में थे, वो सब बाहर आ गए। तो बेसिकली ये एक दिल्ली NCR के समेत जो कई विभिन्न राजधानियां हैं वहां पे आज टेस्टिंग के दौरान हिंदी, इंग्लिश में और स्थानीय भाषाओं में

अलर्ट मैसेज गए हैं। और ये मैसेज की खासियत ये है कि भाई ये जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, दिस इज ऑल अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट और इस सिस्टम को जो बोला गया है टाइम डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम बोला गया है। इसकी खास बात यह है कि सेल ब्रॉडकास्ट टेक्निक से नेटवर्क जाम होने पर भी आपको अलर्ट मैसेजेस जो है वो पहुंचाए जा सकेंगे। और इसकी यह है कि जो केवल प्रभावित क्षेत्रों के लोग होंगे, जिस एरिया में जो होगा उस एरिया में अगर कुछ इम्पैक्ट हो रहा है तो उन लोगों तक के मैसेज जाएंगे। अलर्ट पॉपअप तेज आवाज और वाइब्रेशन के साथ आएगा अगर आपका फोन साइलेंट पे है तब भी। नेचुरल डिजास्टर जैसे भूकंप हो गए, बाढ़ हो गई, सुनामी हो गई, साइक्लोन्स हो गए, चक्रवात जिसे हम कहते हैं, गैस लीकेज या कोई भी आपदा आती है तो उसकी तत्काल चेतावनी आपको मिल सकेगी। और ये स्वदेशी जो हमारा सशक्त प्लेटफॉर्म है उस पर आधारित है जिसे सी डॉट ने विकसित किया गया है। तो जस्ट घबराने की कोई बात नहीं। और अगर आप अभी तक सोच रहे होंगे कि क्या हुआ, तो ये सिर्फ एक ट्रायल प्रक्रिया थी जो कि आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। सो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक टेक्नोलॉजी कि भाई आपको बैठे बैठे पता चल जाएगा अगर कुछ डिजास्टर हो रहा है या कुछ हो रहा है, सो यू हैव इनफ टाइम टू टेक अ शेल्टर और सुरक्षित स्थान पे भी आप जा सकते हैं। तो ये वो ट्रायल का मैसेज था। फिलहाल आपको सुना रहा हूँ एक प्यारा सा गाना हरिहरन और अलका याग्निक की आवाज़ में।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: वेलकम बैक, सिटी लाइट सुन रहे हैं आप। मेरे साथ मैं कौन, आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा। और भाई वीकेंड शुरू हो चुका है, तो भाई अगर आपके घूमने के प्लान्स हैं तो बिल्कुल जाइए, लेकिन ट्रैफिक के अपडेट्स भी आपको दे देते हैं कि कहां कहां ट्रैफिक है, और अगर आप उस रास्ते के से जा रहे हैं तो बच के चलिएगा या थोड़ा टाइम से निकलिएगा। फिलहाल अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको सरदार पटेल मार्ग पे, नेताजी सुभाष मार्ग पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर और लोथियान मार्ग पर भी ट्रैफिक है। और यहाँ पर एवरेज ट्रैफिक जो डिले है वो 8 से 10 मिनट है, यानी कि आपको 8 से 10 मिनट का यहाँ पर डिले मिलेगा बिकॉज ट्रैफिक बहुत ही स्लो चल रहा है। तो अपना टाइम लेकर

आप इन रास्तों से निकल रहे हैं, और इफ यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर सो तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर आप इन रास्तों से निकल रहे हैं तो या तो ऑल्टरनेटिव मार्ग ढूंढिए, या तो फिर आप उतना टाइम लेकर अपने घर से निकलिएगा. और साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि जब ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, कहीं घूमने की बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी बता देता हूँ कि जो दिल्ली मेट्रो है उसकी कल सुबह की टाइमिंग्स जो है, जो फर्स्ट मेट्रोज है उसमें मामूली सा बदलाव है, ज़्यादा बदलाव नहीं है. लेकिन फिर भी अगर आप कहीं इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं, आपको टाइम से कहीं पहुँचना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ. क्योंकि आज जो है द्वारका सेक्टर 21 से जो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी और वैशाली वाला जो मार्ग है उस पर आज रात यानी कि 2 मई से कल सुबह तक रख रखाव का काम होगा, मेंटेनेंस का काम होगा. और उसके चलते हुए थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करें, ये हिदायत दी गई है. ज़्यादा मार्ग जो है इसके ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन जो जहाँ टाइमिंग चेंजेस हुई हैं उसमें सिर्फ आपकी जो मेन लाइन है वो है लक्ष्मी नगर द्वारका सेक्टर 21 के बीच की. यहाँ पर जो पहली ट्रेन है उसका संचालन सुबह 6:21 पर होगा. रेगुलर टाइम इसका 6 बजे का रहता है, बट अभी 20 मिनट के डिले से यहाँ से ये ट्रेन आपको मिलेगी अगर आप लक्ष्मी नगर से द्वारका सेक्टर 21 की तरफ आ रहे हैं. और यदि आपका बीच में भी कहीं हॉल्ट है, या आपको बीच से कहीं जाना है, आपको किसी और लाइन को कनेक्ट करना है और फिर आपको कहीं पहुँचना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम से निकलिएगा और उसी हिसाब से जाइएगा. बाकी जो मामूली चेंजेस हैं वो आपके है 6:05 पर वैशाली द्वारका वाली जो मेट्रो है उसका रेगुलर टाइम 6 बजे का होता है, तो बस 5 मिनट आपको देरी से मिलने वाली है. और साथ ही साथ यमुना बैंक द्वारका सेक्टर 21 के बीच जो पहली ट्रेन है उसका पहला संचालन जो होगा वो 5:53 पर होना है. तो इसलिए अपना अतिरिक्त टाइम लेकर अगर आप सुबह सुबह कहीं निकल रहे हैं, आपको कोई बस पकड़नी है, आपको कोई ट्रेन पकड़नी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही निकलेगा. क्योंकि हम नहीं चाहते भैया आप कहीं जाए, खुशियाँ खुशियों से जाए और फिर आपकी ट्रेन या बस छूट जाए जस्ट बिकॉज आप चंद मिनटों से लेट थे. तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलिए, और हम हमेशा आपको सारी ट्रैफिक की अपडेट हो, किसी मेट्रो की अपडेट्स हो, वो हम आपके लिए लेकर आते हैं. आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो. फिलहाल आपको सुना रहा हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गाना.

ऑलराइट। और अब आप बात कर लेते हैं भाई, मेट्रो की बात हम कर रहे थे, लेकिन मेट्रो स्टेशन के आसपास जो भीड़ भड़ाका होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है ई रिक्शा का। और उसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक प्लान बनाया है और ऑपरेशन सर्कुलेशन जारी किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से हुई है, जिसमें मेट्रो स्टेशनों का सर्वे किया जाएगा। साथ ही साथ ये देखा जाएगा कि भाई किस किस मेट्रो स्टेशन के आसपास कितनी भीड़ है, कितने किस कैसी ट्रैफिक की स्थिति है, कैसे ट्रैफिक जाम लगते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसे मेट्रो स्टेशंस हैं जहां पर उनका एक परमानेंट स्टैंड नहीं है और ई रिक्शा कहीं भी खड़ी हो जाती है, जिससे जो आसपास के लोगों की कंप्लेन होती है, आसपास के जो शॉप्स हैं और वो ऑपरेट नहीं कर पाते ढंग से, क्योंकि उनके शॉप्स के आगे ई रिक्शा लगे रहते हैं, और जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी आना जाना कम हो जाता है। तो इसके लिए काफ़ी कंप्लेंट्स जा चुकी थी और दिल्ली मेट्रो के पास भी जा चुकी थी और दिल्ली पुलिस के पास भी जा चुकी थी, आई मीन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पास भी जा चुकी थी। तो उन दोनों का ये जॉइंट ऑपरेशन है, जिसको ऑपरेशन सर्कुलेशन कहा गया है, और ये 3 दिन तक चलने वाला है, जो कि आज से शुरू हो गया है। और इसमें देखा जाएगा कि किस मेट्रो स्टेशन में कहाँ वाहन व्यवस्थित नहीं खड़े होते हैं और किस मेट्रो स्टेशन में सबसे ज़्यादा जाम लगता है, और फिर उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आसपास जाने के लिए लोग ई रिक्शा का ही उपयोग करते हैं अगर मेट्रो स्टेशन से उतरेंगे तो उनकी एक व्यवस्थित जगह बनाई जाएगी, कहाँ बनाई जाएगी, कैसे बनाई जाएगी, ये सब भी ऑपरेशन सर्कुलेशन का

मौका भी मिलना चाहिए, अपने बिजनेस करने का सबको मौका भी मिलना चाहिए आने जाने का, और साथ ही साथ इनके लिए भी एक डेजिग्नेटेड स्टैंड होना चाहिए ताकि ये यू नो ट्रैफिक की जो स्थिति है उसको ना बिगड़ने दे सके। एक गाना और आपके लिए और उसके बाद एक ब्रेक, और घड़ी की सुइयां भी कह रही है कि भाई अब आपको जाना होगा क्योंकि अब 10 से 11 मिनट ही मेरे पास बचे हैं, लेकिन म्यूजिक एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेटमेंट हमेशा आपके पास आता रहेगा। मैं जाऊंगा तो आपके साथ रहेंगे चांद चांद रानी मुखर्जी, और वो लेके आई है आपके लिए मैसेज मसाला मिक्स, तो आप रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी तो आपको गाना सुनाना है।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।
1: ऑलराइट, और अब वक्त हो गया मैं लूँ आपसे इजाजत, वादे के साथ कि मिलूंगा बहुत जल्द, और आप अपना ध्यान रखिएगा तब तक। और चांद स्टूडियो में आ चुकी हैं लेकर अगला प्रोग्राम, जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। तो रहेगा चांद के साथ, बताइएगा भाई अपने दिल की बात, और सुनते रहेगा म्यूजिक, एंटरटेनमेंट एंड इंफरटेनमेंट आपके पास हमेशा रहेगा। छोड़े जा रहा हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे ट्रैक के साथ, टेक केयर, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 3 बजे तक 72.43% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता है।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज गुजरात के सूरत में संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ काम करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 1 जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने

की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने और लू चलने की आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मई के दूसरे और चौथे सप्ताह में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वी तट पर भी लू की स्थिति रहने का अनुमान है। हालांकि पहले और तीसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और बारिश तथा बादलों के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस से। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हाय फ्रेंड्स, हमें बताया बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत खुश और बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छे क्योंकि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। और आकाशवाणी रेनबो पर ये वक्त होता है उस प्रोग्राम का जिसमें हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के कोई टॉपिक लाते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी क्या सोच है और आपकी क्या विचार है उस टॉपिक के बारे में। आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, जिससे हम बाकी लोगों को भी बता सकें कि इस टॉपिक पर इस तरह से हम सोच सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को और बढ़ा सकते हैं। तो बस आपकी सोच को अपनी सोच के साथ जोड़ने के लिए हम लेकर आते हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। और मैसेज मसाला मिक्स में आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना जाना करते हैं और दूसरे जो अपनी बाइक या अपनी कार को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं जैसे कि हम, और हमेशा उससे ही चलना पसंद करते हैं जैसे कि हम। तो आज का सवाल ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी चलाते हो तो आपको आपका अपनी गाड़ी से क्या रिश्ता है। जी हाँ, आपको अपनी गाड़ी से क्या रिश्ता है। और जब आपको बस या ऑटो या किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ता है तो क्या आप अपनी धनों को मिस करते हैं। आकाशवाणी रेनबो पर चांद मुखर्जी को बताइए, व्हाट्सएप में जाइए 9868107070 पर बताइए 9868107070। चांद है आपके साथ।

0: से यही होता है, जब अपनी गाड़ी अपने पास होती है ना, तो ऐसा लगता है कि दिल बिल्कुल दिल से हम घूमते हैं, दिल से हम चलते हैं, दिल से बिल्कुल दिल मस्ती में होता है। बस यही कुछ आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आप अपनी बाइक या अपनी कार चलाते हैं, तो आपका अपनी गाड़ी के साथ क्या रिश्ता है, क्या क्या अहमियत है उसकी, हमें बताइए। 9868107070 ये है वो व्हाट्सएप नंबर जिसमें आप मैसेज कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या सोच है, आपकी क्या कहना है, आपका क्या कहना है अपनी गाड़ी को लेकर। दोस्तों अब हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा चांद मुखर्जी, अब तो नहीं 20 वर्ष पहले स्कूटर चलाते थे और इस दुल्हन और उसे दुल्हन की तरह सजा कर रखते थे, मगर अब मेट्रो ट्रेन DTC बस से सफ़र करते हैं। हाँ वो पुराना स्कूटर धनो नहीं हीरा था, जिसे कई किलोमीटर की यात्रा की थी, आज स्कूटर की बहुत याद आती है, क्या करें। अनिल शर्मा जी ने लिखा है, जो वरिष्ठ श्रोता हैं सरिता विहार से, रोज़ मैसेज करते हैं, अक्सर हमें मैसेज करते हैं, और आज भी आपने मैसेज किया और अपने हीरे के बारे में हमें बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। और सच में जो गाड़ी चलाते ना, वो अपनी गाड़ी के चलाने की खुशी वही समझ सकते हैं, जैसे कि अनिल जी ने कहा था। अगला मैसेज हमारे पास मोहम्मद सरफराज आलम जी का, जो कि हर दर्शना बाजार अररिया बिहार से आए, ये रोज मैसेज करते हैं और बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं कि मेरी धनो सिर्फ गाड़ी नहीं, एहसास है एक, हर सफर में छुपा उसका अपना ही अंदाज है, जब स्टेयरिंग थामू तो दुनिया अपनी लगती है, उसके संग हर राह जैसे खुशियों से सजी लगती है, पर जब पब्लिक सफ़र में खुद को पाता हूँ मैं, भीड़ में भी तन्हाई सा महसूस कर जाता हूँ मैं, हर मोड़ पे याद आती है उसकी रफ्तार, उसके बिना सफ़र लगता है अधूरा हर बार, वो साथ हो तो रास्ते भी गीत सुनाते हैं, और उसके बिना ये लम्हे बस कटते ही जाते हैं। बिल्कुल बेहतरीन आपने लिखा है सरफराज आलम जी। अगले मैसेज की तरफ हम जाते हैं, इन्होंने लिखा है जी, कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से, फर्नीचर मार्केट से लिखा है इन्होंने। गुड इवनिंग स्टार्ट, गुड स्टार्ट सॉन्ग, अमेजिंग वॉइस, शिव शंकर शर्मा जी, आपने इतने मैसेज किए। अगर आप, अच्छा हो सकता है आप अपनी गाड़ी ना चलाते हो सकता है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो, कोई बात नहीं, आपने मैसेज किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज हमारे पास आया है कि मैं आपको देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल से आपको सादर प्रणाम, आपको भी साष्टांग प्रणाम। लिखते हैं कि आपकी गाड़ी की बात, अपनी गाड़ी की बात ही सबसे अलग होती है, उसका ध्यान तो बहुत रखना पड़ता है क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा खड़ी रहती है, उसके साथ की तो अब आदत हो गई है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आपने नाम नहीं बताया अपना, आपका नाम क्या है? नीरज सिंह है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद नीरज सिंह जी मैसेज करने के लिए देवभूमि से। और शुभ संध्या, में सिलाई का काम करता हूँ और मैं अपने साइकिल से ही रोज आना जाना करता हूँ, बस और मोटरसाइकिल का चक्कर मेरे पास नहीं है, इसलिए इससे मैं ज़्यादा झंझट होता है, इसलिए मैं अपनी साइकिल से ही रोज काम पर आना जाना करता हूँ। मैं गौतम कुमार औरंगाबाद बिहार से। जी गौतम कुमार जी, ये तो आप बहुत ही अच्छा करते हैं, एक तो अपनी गाड़ी की गाड़ी हो गई, दूसरा आपका मतलब जो एक्सरसाइज का एक्सरसाइज हो गया, कितनी बेहतरीन बात है ना। और आप जो जिससे प्यार करते हैं उसके हर पल उसके साथ रहते हैं, तो सच में आप हमारी आवाज़ से भी खुशी समझ रहे होंगे, क्योंकि जब हम अपनी गाड़ी की, हमें गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो ही हमें इतनी खुशी हो रही है कि आप समझ सकते हैं कि अपनी गाड़ी के हम कितना क्लोज है, कितना प्यार करते हैं अपनी गाड़ी से। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो मैसेज मसाला मिक्स। आज के टॉपिक पर हम यही कहेंगे कि हम अपनी स्कूटी या बाइक को उतना ही मिस करते हैं, लेकिन अगर कहीं हमें दूर जाना होता है तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं दूर पहुंचकर छोटी छोटी जगहों पर जाना होता है तो हमें अपनी बाइक की बहुत याद आती है। बहुत बहुत धन्यवाद किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किश्नु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से लिखते हैं। बिल्कुल सही फरमाया है आपने, बिल्कुल सही बात कही है। अगला मैसेज लिखते हैं कि गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंचती है, मुश्किल में भी साथ देती है। साकिर खान, फरमान खान जी, गोलू विशाल कुमार राज नगर पालम दिल्ली से लिखते हैं। बिल्कुल थैंक यू आपने मैसेज किया उसके लिए। तो दोस्तों अब बहुत ज़रूरी हो गई है एक चीज़, क्या, एक ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कमर्शियल, और उसके बाद एक प्यारा सा गाना सुनाएंगे। बिल्कुल आप अपनी गाड़ी के बारे में सोचिएगा, हम अपनी गाड़ी के बारे में सोचेंगे। सुनते रहिएगा आकाशवाणी रेनबो, चांद चांद है आज की शाम आपके साथ।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
0: अपनी गाड़ी पर बैठकर हमेशा इसी गाने को दिल में गुनगुनाते हुए फील करते हैं हम।

बिल्कुल दोस्तों, अपनी गाड़ी पर बैठकर ना ऐसा ही फील होता है जैसे कि उड़ ही रहे हो हम। और दोस्तों अभी हम घर गए थे अपने, तो वहां पे 10 कदम की दूरी भी हमने अपनी गाड़ी से ही तय की, क्योंकि हमें अपनी गाड़ी बहुत बहुत बहुत बहुत ज्यादा प्यार है अपनी गाड़ी से हमें। और इसीलिए हमने आपसे जानना चाहा कि क्या आपको भी अपनी गाड़ी से प्यार है। अगर आपको ऐसा मौका होता है कि आपको गाड़ी चलानी पड़े या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़े, तो आप किसे प्रेफर करते हैं अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो। बस यही कुछ हम जानना चाहते थे, आपका रिश्ता आपकी गाड़ी के साथ कैसा है, यही हम आज के टॉपिक पे जानना चाहते थे। रिश्ते दोस्तों हमेशा इंसानों से ही नहीं, चीज़ों से भी बन जाते हैं, और जब वो साथ नहीं होते तो दिल थोड़ा खाली खाली से लगता है। अगर आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी बोल पाती तो क्या कहती आपसे? हमें तो लगता है वो कहती कि भाई मुझे रोज साफ किया करो अपनी तरह। चलिए आपके मैसेजेस का सिलसिला शुरू करते हैं। लिखते हैं मैसेज हमें रंजीत कुमार मंडल अररिया बिहार से, कि जब गाड़ी सवारी गाड़ी से उतरकर पैदल चलना पड़ता है तब अपनी बाइक की याद आती है कि साथ रहती तो इतना दूर नहीं चलना पड़ता। जी, ये तो है, और वो हमेशा साथ होती है ना, तो किसी का हमें सहारा नहीं लेना पड़ता। कहीं भी जाना, खट से बैठे स्टार्ट की और चले गए उसमें बैठ के। राजकुमार के संतानी अंकोला महाराष्ट्र से गुड इवनिंग लिखते हैं हमें, ये हमारे रेगुलर श्रोता है, और उन्होंने गुड इवनिंग कहा है, आपको भी गुड इवनिंग। अगला मैसेज हमारे पास अच्छा जी, युवराज चौहान जी का आया है, लोखंडिया बुरहानपुर से लिखते हैं, मेरी गाड़ी का नाम परमदे है। अरे वाह, आपने अपनी गाड़ी का भी नाम रखा है। हमने भी रखा है अपनी गाड़ी का नाम, लेकिन हम बताएंगे आपको प्रोग्राम के बीच में कहीं पे, अगर आप सुनते रहेंगे हमें तो। अगला मैसेज हमारे पास आया है, लिखते हैं कि गाड़ी मेरे पास तो नहीं है लेकिन आपको गाड़ी गिफ्ट करें तो तब हम आपको बता पाएंगे। जी प्रदीप सलूजा जनकपुरी न्यू दिल्ली से, तो ठीक है प्रदीप जी, हम आपको गाड़ी ज़रूर गिफ्ट कर देंगे। आप जब खाली बैठे रहते हैं, जब भी आपके पास टाइम होता है, हमें नहीं पता आप कभी तो मतलब 24 घंटों में कितने भी घंटे खाली रहते हैं, उस घंटे में बस भगवान से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना किया करिए कि चांद को खरबपति बना दो, हम ज़रूर आपको गाड़ी गिफ्ट करेंगे, प्रॉमिस रहा हमारा। अगला मैसेज हमारे पास आया है रामधारी अवाना जी का, लिखते हैं कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स के प्रस्तुतकर्ता को चांद को सादर नमस्कार। आप भी अपनी कोई याद साझा कीजिए। आज भी मैं साइकिल को बहुत याद करता हूँ, पहली सैलरी से खरीदी थी और आज भी उसे संभाल कर रखा है। इस तरह तरह की रिबन स्टिकर से सजाया करता था, उसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया और मुझे मंजिल तक पहुँचाया। उसकी वही वफादारी मुझे आज भी छू जाती है। खाली समय में मैं उसके पास जाकर उसे दिल से थैंक यू कहता हूँ। आज हम आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन साइकिल को फिर से याद किया जा रहा है आज। ओ धन्यवाद। गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील व जिला हासी से रामधारी अवाना जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मैसेज किया, और दूसरी बात ये कि साइकिल हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो अपने पास ना, मतलब कोई भी अपनी जी जो हमारे हाथों से चलती हो, उसको हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा हमसफ़र है, ऐसी साथी है कि जब हम रास्ते में होते हैं ना तो हम

पूरी तरह से उसके भरोसे होते हैं कि अगर कहीं रास्ते में कुछ खट से हुआ ना तो हम परेशान हो जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है अगर आप उससे प्यार करते हैं तो। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, मेरी कार मेरी जान है, क्या बात है, उसके बगैर मैं बिल्कुल अकेला हूँ, ये ना तो ये ना हो तो मेरा दिन नहीं निकलता, मेरा मन नहीं लगता, या ये है तो मैं हूँ और ये है, ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। मैं मेरठ से राजेश कुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्यारी बात कही है आपने, बिल्कुल सही बात कही है आपने। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी फ्रॉम शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, हम तो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी चलाते हैं और उसको बाइक साफ़ सुथरा रखते हैं और उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप ऐसा करते हैं इसलिए क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बाइक की सफाई बहुत ज़रूरी है। विजय कुमार जी ने हमें मैसेज किया है कि हम कैसे, हम बहुत अच्छे हैं और गाड़ी तो नहीं चलता लेकिन अब हमको दिखता, अच्छा जब हमको दिखता था तब हमको कहीं पे जाना आने के लिए साइकिल से ही जाना पसंद करते थे, टाइम की बचत भी होती थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल बहुत वेट करना पड़ता है, और हम अपनी साइकिल को बिल्कुल चमका कर अपने रानी की तरह रखते थे। मेरी साइकिल का नाम नीलम था। थैंक यू, आप सदा खुश हैं, बहुत बेहतरीन विजय जी। चलिए ईश्वर करे जैसे आपको ये प्रॉब्लम हुई है उसी तरह से ये प्रॉब्लम आपकी जल्दी से ठीक हो जाए, या कभी ना कभी तो ज़रूर ठीक हो जाए, आप उसके लिए कोशिश करते रहिए क्योंकि चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है कि किसका आया है, हमारे पास अगला मैसेज आया है शुभ संध्या, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है, जब कभी ज़्यादा दूर जाना होता है तभी ड्राइव करता हूँ, नहीं तो पैदल चलकर जाता हूँ। एक्सरसाइज के साथ साथ प्रदूषण कम करने में सहयोग होता है। रवि जोशी मेरठ से ऐसा लगता है, बिल्कुल रवि जोशी जी, ये बात तो आपने इतनी 100% सही बोली है आपने, और आपने मैसेज किया उसके लिए थैंक यू। अगला मैसेज हम आपको सुनाएं उससे पहले एक बेहतरीन सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर आएगा, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद आप वो प्यारा सा गाना सुनेंगे जो आपके रेडियो सेट्स पर आएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स, और आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उससे कैसा रिश्ता है आपका, ये आप हमें बता सकते हैं 9868107070 पर। और दोस्तों रास्ते तो बहुत मिलते हैं ज़िंदगी पर जो अपने साथ चले वही सफ़र ख़ास हो जाता है ना।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक। रेनबो 102.6 पर।

खुद से जो अपनी गाड़ी चलाने का शौक रखते हैं या जो गाड़ी चला पाते हैं वही इस जज्बे को समझ सकते हैं। और यही आज हमने आपसे जानना चाहा है कि आज आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। हिरन मगरी सेक्टर 4 उदयपुर राजस्थान से सुशील यादव रेणु यादव जी का मैसेज हमारे पास आया है। लिखते हैं कि परिवार का एक अहम सदस्य है अपना व्हीकल, हमारी आजीविका को चलाने में एक अहम सहायक है अपनी गाड़ी, जिसका सफर लूना से शुरू हुआ, फिर एक मजबूत ब्रांड का लोकप्रिय एवं भरपूर विश्वास से भरा स्कूटर मोटरसाइकिल और अब है सुंदर सी कार भी। वाकई हमारे जीवन में एक जीवित सदस्य की तरह है। गाड़ी को सही तरह से मेंटेन करने पर ही वो आपके हर सफर को सार्थक बना देगी। बिल्कुल सही बोला है, गाड़ी को हम जब इस्तेमाल करते हैं तो जो प्रदूषण चेकिंग होती है उसका कराना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ऐसे ही उसको यूज़ करते हैं रफली और बस ऐसे ही निकल पड़ते हैं उसके साथ। लेकिन उसका ख्याल रखना भी, जैसे कि आपने कहा कि परिवार के सदस्य की तरह है, तो बहुत ज़रूरी है। अगला मैसेज हमारे पास आया है, शुभ संध्या चांद मुखर्जी, आपको भी शुभ संध्या। अपना वाहन अपना साधन होता है, वो हमें जानती है और उसको जानते हैं हम, एक लगाव हो जाता है अपने वाहन से। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़ खेड़ा मेरठ से ऐसा लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी मैसेज करने के लिए, और आपने बिल्कुल सही बात की। हेलो रितिका आर्या बोल रही हूँ मैं गाज़ियाबाद से, मुझे स्कूटी चलाने में बड़ा मज़ा आता है। स्कूटी पर बैठ करके हवाओं से बातें करना एक अलग ही सुकून देता है। बस क्या बताएं, शब्द ही कम है बस उसे बताने की ज़रूरत है, वो सिर्फ हम फील कर सकते हैं रितिका आपकी बात को। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि कब वो बिगड़ जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है, इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि चोट भी बहुत ज़्यादा ही लगती है, इसलिए इस बात का ख्याल रखना।

बहुत जरूरी है। अगला मैसेज हमारे पास आया है किन का, हम देखते हैं। हमारे हाथों साइकिल है जो कि हमारे पापा की है। साइकिल हमारे साथ बचपन से है, हम इसे अपने बहुत प्यार से हमें इससे बहुत प्यार है। मेरठ से आयशा, अनु, आ, आ, उजैफ उजैफ कैफ इकरा बोल रहे हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैसेज करने के लिए। और साइकिल से बढ़िया साथी तो कोई हो ही नहीं सकता, उसमें आपको कोई खर्चा नहीं होता और सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आपका वेट मेंटेन रहता है ये, लेकिन काफ़ी दूर जाना हो तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अगला मैसेज हमारे पास अशोक नागरा, सुनीता नागरा एंड रॉबी नागरा चंडीगढ़ से लिखते हैं कि अपनी गाड़ी होती है। वैसे तो मैं हमेशा अपनी गाड़ी का प्रयोग करता हूँ, लेकिन जब कहीं बाहर जाना होता है तो लोकल ट्रांसपोर्ट प्रयोग करते हैं जो कि अनसेफ रहता है। क्यों? आपको बताता हूँ, 2015 में मेरा ट्रांसफ़र महाराष्ट्र हो गया था। वहाँ मराठी चलती है, तो हम लोग जब भी लोकल ऑटो या टैक्सी लेते थे, हमारा एक मराठी पेट डायलॉग होता था जो हमने मराठी में सीखा था। हम जब भी गाड़ी में बैठते वही बोलते, ताकि ड्राइवर को लगे कि हम भी लोकल ही हैं, क्योंकि अभी हमें मराठी नहीं आती थी। तो उस डायलॉग से ड्राइवर सही रास्ते से सही समय पर हमें पहुंचा देते थे। जी, यही तो अपने देश की खासियत है कि इतनी ज़बानें हैं और हर ज़बान को अगर हम थोड़ा थोड़ा कुंचम कुंचम सीख लें तो जाहिर सी बात है हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं। जीवन में दोस्तों इतनी ज़्यादा खुशियाँ हैं कि हम पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, जो कि वक्त ही नहीं है उसके लिए, परेशान होने के लिए टाइम ही नहीं है। और ख़ासकर हम इंडियंस के पास तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे जो दिन है, हमारी जो जीवन दिनचर्या है और हमारे आसपास का हमारा जो कल्चर है, उसमें इतनी ज़्यादा खुशियां हैं कि जिसकी जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। खुशियों को कभी अंत ही नहीं है यहाँ पे। तो अगला मैसेज हमारे पास निम्बाराम जाट, गांव बिरलोका, ज़िला नागौर, राजस्थान से काफ़ी मैसेज आ रहे हैं हमारे पास। और इनका मैसेज आया है, जिनको इतनी गाड़ियां प्यारी हैं उनके साथ साथ इससे कई गुना ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, तभी गाड़ियों की वैल्यू है और गाड़ी रखनी चाहिए। गाड़ी वालों को की वजह से आज हमें शुद्ध हवा नहीं मिल रही है। निम्मा राम जी, आपकी बात से हम पूर्णतया सहमत हैं कि गाड़ी की वजह से बहुत पॉल्यूशन होता है, लेकिन अगर हम गाड़ी से नहीं चलेंगे तो काफ़ी चीज़ों में पीछे रह जाएंगे। इसलिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, अगर सेफ्टी के साथ हम पोल्यूशन चेकिंग कराते हुए, अपनी गाड़ियों का ख्याल रखते हुए अगर हम अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करें तो ज़िंदगी आसान भी हो सकती है ना। और जहाँ पैदल जाना हो, पास की जगह हो, लेकिन हम तो क्योंकि बहुत दूर रहते हैं अपनी गाड़ी से, इसलिए जब हम उसके पास होते तो एक सेकेंड अगर हमारा बस चले तो शायद उसी के ऊपर हम सो भी जाएँ, इतनी हमें वो प्यारी है। अगला मैसेज हमारे पास लिखते हैं कि मैंने अपनी गाड़ी को फैमिली मेंबर सा रखा हुआ है, उसका नंबर भी बता दिया इन्होंने, 2617 इकबाल राय गुलाटी कुरुक्षेत्र से लिखते हैं। अच्छा, फैमिली मेंबर की तरह संभाल कर रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये होती है गाड़ी इतनी प्यारी है। अगला मैसेज हमारे पास आया है, नमस्कार, कैसे हो आप? हम बहुत अच्छे हैं, मैं भी एकदम अच्छा हूँ। रोज़ मैं मेरा परिवार प्रोग्राम सुनते पसंद आते हैं, प्रोग्राम में आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आप टॉपिक के ऊपर बोलें ना, अगर हम ऊपर के मैसेज में जाते हैं तो आप रोज़ वही मैसेज भेजते हैं। ये पूरी टीम है इनकी, ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू जी, सुरेश जी, राजपाल, पंकज जी, काजल जी, सीमा जी, मानवी जी, तन्वी जी, लक्ष्य जी, सोनी जी, मोहिनी जी, ऋतिक जी, बलवीर सिंह जी। अगर आप टॉपिक के ऊपर भी कुछ लिखें ना, तो सच में सच मानिएगा, बहुत बहुत बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक गाना सुनाते हैं। दोस्तों, अगर अपने पास गाड़ी होती है ना, तो हम किसी को ऑफर भी कर सकते हैं, अगर वो फोर व्हीलर हो तो। टू व्हीलर में हम कम ही लोगों को बैठाना पसंद करते हैं, हम सिर्फ अपनी मम्मा को बैठाते हैं, लेकिन लेकिन अगर आपके पास फोर व्हीलर हो ना, तो आप उन लोगों को बैठा सकते हैं। अगर आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके दोस्त आपके साथ जाना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं, है ना, और इंजॉय कर सकते हैं हमारे साथ आज की शाम। मैसेज मसाला मिक्स चांद मुखर्जी है, प्रोग्राम चल रहा है आकाशवाणी रेनबो पर 9868107070 पर। आप मैसेज करके बता सकते हैं कि आप अपनी गाड़ी से कितना प्यार करते हैं।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

और दोस्तों अपने अपने धनों का आप ख्याल जरूर रखिएगा, टाइम टाइम पर चेकअप्स होने चाहिए उसकी, रोज सफाई होनी चाहिए, वक्त पर ऑयलिंग वगैरह करवाते रहिएगा और बीच बीच में अपने धनों को आराम दीजिएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा उसमें भी अपना दिल लगाइएगा। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो ये जिंदगी है ना, इसका जो सफर है ना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको लगता है कि किसी रेस में आप दौड़े और आप हार गए, तो लेकिन आप इस बात को सोच के खुश हो सकती हैं कि कोई तो जीता है भाई, उसकी खुशी में खुश हो जाइए। बस सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका खुश रहना। बस इसी खुशी के साथ आप इजाजत दीजिए इस प्रोग्राम से। नेक्स्ट प्रोग्राम के बाद के प्रोग्राम में, यानी सिर्फ एक घंटे के बाद, पूरे घंटे के लिए चांद आपके साथ रहेगी, तो सुंदरी आकाशवाणी रेनबो, तो बस हम यही, आप यही रहेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीट के 15 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं समझा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में सम्पन्न हो गया। सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए और 1 जवान घायल हो गया। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्ण कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए रवाना की गई टीम के साथ ये घटना हुई। घायल जवान का उपचार हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ कार्य करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेट कीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज

चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। जयपुर में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने आईपीएल इतिहास में 226 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बुलाओ, जिसको नाचना है ना चाहो, मेरे साथ शर्त लगाओ, ये करके दिखाओ।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: धागे धागे धागे, देना देना देना।

0: व्याकुल व्याकुल राधे का मन है, राधे के मन में वो मोहन है, जिस मोहन का श्यामल तन है, मदिरा सागर नयन नयन है, गिरधारी बन कुंज पे रैया, किसन कन्हैया बंसी बजैया, गोकुल के वो है मुरलीधर, राधा झूमे जिनकी लय पर, कहती घूमे गिरधर गिरधर, राधा के गिरधर आए,
1: देखो राधा
0: आए, हाँ गिरधर आए,
1: राधा

चांद को देखा तो तेरी याद आ गई, चांद को देखा तो तेरी याद आ गई, वक्त जैसे उसी पल कहीं ठहर सा गया। म्यूजिक मस्ती आज की शाम आपके अपने चांद के साथ, चांद चांद मुखर्जी।

दोस्तों इस पूरे स्टूडियो में हम बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन आपके मैसेजेस हमारे इतने लंबे लंबे मैसेजेस हमें बता रहे हैं कि आप हर लम्हा हमारे साथ हैं। थैंक यू।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

दोस्तों आपने कितने ठुमके लगाए ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम खुद को रोक नहीं सकते दोस्तों, ये है हमारी हालत। हम क्या करें, म्यूजिक बजता है और वो भी डांस म्यूजिक, तो आई कांट स्टॉप माई सेल्फ।

0: जल्दी है क्या?
1: बिल्कुल जाने का मन नहीं था, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर सभी हाजी आ चुकी हैं और आपसे आपकी चांद की मुलाकात होगी फिर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं रेनबो के ही किसी ना किसी प्रोग्राम में। तो क्या अब आपका चांद जाए? जाने का मन बिल्कुल नहीं है। बाय।

हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हमेशा की तरह फिट एंड फाइन। इसी आशा उम्मीद के साथ स्टूडियो में ऑन पहुंची एक बार फिर से आपके साथ आपके दिल की आवाज हमराज। जी हां, मैं हूं आपके साथ आपके दिल की हमराज आरजे सभिया नकवी। वड्डे वाला वेलकम ये आप सभी का एक ऐसे शो में जो कि आप रोज अपना पसंदीदा शो बना चुके हैं। जी हां, जिसका नाम है आपकी याद आती रही। इस शो में मैं हूं आपके साथ आपके दिल की आवाज और रोजाना की तरह करेंगे आपसे ढेर सारी बातें, ढेर सारे आपके दिल के राज शेयर करेंगे यहाँ पर और जानेंगे आपके खूबसूरत दिल के जज्बात। तो कहीं मत जाइएगा जनाब, वादे के मुताबिक मैं तो आ गई हूँ अपने दिल में ढेर सारा प्यार आपके लिए, ढेर सारी चाहत, ढेर सारी बातें लेकर। आपको भी वादा निभाना है, बने रहना है इसे एक घंटे मेरे साथ, कहीं नहीं जाना है मुझे छोड़कर, क्योंकि आप जब छोड़कर जाते हैं तो वाकई दिल बड़ा घबरा सा जाता है। जी अगर आप चाहते हैं और खास रखना चाहते हैं मेरे दिल का ख्याल, तो आपको रहना है इसे एक घंटे मेरे पास मेरे साथ, कहीं नहीं जाइएगा। फिलहाल चाहत में क्या कुछ कहना चाहती है या आपके साथ आपके दिल की हमराज, मैं कह के नहीं बल्कि कुछ आपको इस सूरत में पहचाना चाहती हूँ।

वेल दोस्तों, किसी को दीवाना बनाना इतना आसान भी नहीं। किसी को दीवाना बनाने के लिए, किसी के साथ दीवाना बनने के लिए भाई बड़े सारे जो एफर्ट्स हैं वो डालने पड़ते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। अगर किसी को अपनी दीवानगी बताना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। जी हाँ, आपकी दीवानगी को सहने के लिए और आपकी दीवानगी को समझने के लिए मान पहुँचते हैं स्टूडियो में। शो चल रहा है, आपकी याद आती रही, यादों के इर्द गिर्द ये खूबसूरत सफ़र तय होता है रोज़ाना ठीक 9 बजे, और 1 घंटा ये शो रहता है आपके साथ। इसमें आप खट्टी मीठी यादें अपनी हमारे साथ शेयर करते हैं और हम बीच बीच में उसी में छोटे छोटे अंतराल पर आपके वो खूबसूरत मैसेजेस शामिल करते हैं जिसमें आप ढेर सारी दिल की बातें कह डालते हैं मुझसे। फिलहाल कुछ और मैसेजेस स्टार्टिंग हमारे पास हो चुकी है, उन मैसेजेस की चलिए उनको शामिल कर लेते हैं। हेलो सभिया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू यू सर, आपकी याद आती रही, आज फिर से आपसे कॉन्टैक्ट हो चुका है। जी हाँ, रंजीत मस्ताना साहब रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ और कौन जुड़े हैं? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सभिया नकवी जी, जब आप शो में आती हैं तो प्रोग्राम में 4 चांद लग जाते हैं, थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत के लिए। सागर खान, फरमान खान, गोलू, दीपक और विशाल कुमार राजनगर पालम दिल्ली से हमारे साथ हैं। ये जो आपने बात कही है 4 चांद लगने वाली जनाब, ये मैं कहूँगी यहाँ पर कि 4 चांद मेरे आने से नहीं बल्कि आपके आने से लग जाते हैं, क्योंकि आप मुझे ये बता देते हैं कि सभिया इस शो में बिल्कुल तन्हा नहीं हो, अकेली नहीं हो। अब तुम पूरे जोश और खरोश से शो करो, हम तुम्हारे साथ हैं 90s की म्यूजिक को एंजॉय करने के लिए, साथ ही खूबसूरत भरी जो आपकी खट्टी मीठी यादें हैं उनको शेयर करने के लिए आपके साथ, कभी कभी बीच में जो रिलेशनशिप्स फंडे में देती हूँ वो भी देने के लिए। फिलहाल ऐसा ही साथ अपना दर्ज करा दिया है मुझे अनुभव ने नालंदा बिहार से। जी हाँ अनुभव, आपने कल भी मुझे बहुत सारी दिल की बातें लिख भेजी। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, आप पहले भी शो सुना करते थे मेरा, और एक बार फिर से आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, काफी दिनों बाद कांटेक्ट हुआ है। जाहिर सी बात है आपने अपनी तरफ से मुझे बहुत मिस किया होगा और मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत मिस किया है। तो दोनों तरफ से जब मिस करने का सिलसिला लगातार बना रहता है ना, तो उस रिश्ते की जो पहुंच है, जो खूबसूरती है, वो अलग ही नजर आती है। हमेशा की तरह सौरभ अनेजा गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आपकी तो मैं क्या बात करूं, आपकी इतनी सारी बातें हैं कि मुझे लगता है कि मेरे पास शायद शब्द कम पड़ जाए लेकिन आपकी बातें पूरी नहीं होती। आपकी मैंने हर एक बात सुनी है और दिल से कबूल भी किया। वेल, कुछ और मैसेजेस के साथ फिर से लौट के आती हूँ, लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाई 90s के म्यूजिक के साथ भी हमें आपको ले जाना है दूर तक, एक ऐसे रात तक जहाँ हमारी और आपकी हर किसी की याद वाबस्ता है। तो बिल्कुल एक ऐसा खूबसूरत गाना, बल्कि आज मैंने कोशिश ये की है दोस्तों कि शो में कुछ उस तरह के, बल्कि 90s के तो बहुत सारे गाने हैं लेकिन उस इरा के स्पेशली जिसको हम खास तौर पर 90s का नाम देते हैं, उस तरह के कुछ गाने मैंने शो में शामिल करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये कलेक्शन पसंद आएगा। फिलहाल तो ये गाना सुनिए और याद कीजिए अपने अपने उस पहले प्यार को जब आपने वो पहली मिठास महसूस की होगी।

बैकग्राउंड में बजता हुआ ये म्यूजिक कह रहा है कि वाकई तुमसे अच्छा कोई नहीं। और जहां तक नींद और चैन खोने का सवाल है दोस्तों, वो तो खो ही जाता है जब आप जानबूझकर किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। भाई ये जो काम है ना, इंसान खुद तो करता नहीं, पता नहीं क्यों एकदम से इन्फेक्चुएशन कहीं, अट्रैक्शन कहीं, या किसी की बातों में वो जादू कहीं कि आप खुद ब खुद उसके होते चले जाते हैं। और जब होना ही है तो पूरी शिद्दत के साथ क्यों ना हो जाइए। क्यों किस्तों में आप अपने आप को रोकते हैं या किसी भी बंधन से आप खुद को रोक जाते हैं। अब किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, किसी से प्यार कर रहे हैं, किसी के लिए प्यार मोहब्बत छोड़िए, दोस्ती, जज्बा, कोई भी एक साफ सुथरा आप अपने अंदर ख्यालात रख रहे हैं, तो उसमें कहें की पायदारी, उसमें कहें की जो कह सकते हैं कि पर्देदारी कहा जा सकता है इसको शायद, हाँ, क्यों ये रखना है भाई। खुलकर अपने दिल के जो जज्बात हैं उनका इजहार कर दिया करिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम अपने दिल की बातों को किसी के साथ शेयर करने से बहुत डरते हैं। ऐसा सही भी है, हर कोई आपको समझे, अंडरस्टैंड करे, आपकी फीलिंग्स को समझे, ऐसा ज़रूरी नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पूरे खुलूस से, मोहब्बत से, दिल से, साफ दिल से अपने दिल की बात किसी को बता देते हैं और पता चलता है कि बंदे ने भाई आगे जाके आपके दिल की बात शेयर कर दी। वहाँ बहुत दुख होता है, दुख होता है कि भाई किसी को अपना जाना, लेकिन बंदे ने आपकी सच्ची फीलिंग्स की कदर नहीं की या बंदी ने आपकी सच्ची फीलिंग्स की कदर नहीं की। तो ऐसे लोगों को पहचान लीजिए। इंसान एक दो बार तो धोखा खा सकता है, लेकिन बार बार अगर आप फिर धोखा खा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। क्यों ट्रस्ट करना है ऐसे इंसान पर जो आपके दिल की फीलिंग्स को ही नहीं समझे। इतनी बड़ी दुनिया है दोस्तों, अपने मुताबिक या अपने अनुसार आप उन लोगों को चुनिए जिनको आप चुनना चाहते हैं, जैसे कि मैंने चुना है आपको। और इस शो में चुन चुन कर जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको ज़रूर शामिल करूंगी मैं। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। गुड इवनिंग आरजे सबीहा नकवी मैडम जी, वेरी गुड इवनिंग सर, वेलकम बैक शो, थैंक यू सो मच। आपकी याद आती रही शो, बढ़िया आप शो कर रही हैं, थैंक यू सो मच सर। और आपको गाने भी पसंद आ रहे हैं और साथ ही साथ

मेरा तो काम और भी आसान कर देते हैं आप, सिंगर्स के नाम भी मुझे लिख भेजते हैं, लेकिन क्यों इतनी तकलीफ करते हैं? सिर्फ आप मुझे अपनी फीलिंग्स, अपना फीडबैक बताएं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और इसी से ही कहीं ना कहीं मुझे एक सेटिस्फेक्शन, एक संतोष मिल जाता है। हेलो, गुड इवनिंग नकवी जी, जयंत पटना जी, जयंत जी पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और मैसेज हमारे पास पहुँचा है, तरुण कुमार जी हैं ये अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, कह रहे हैं कि आपकी नफासत, आपका खुलूस सच में दिल को छू देने वाला है। आपका शो में आना जैसे दिल की धड़कनों को एक नई रफ्तार दे देता है। जो गीत यानी जो सॉन्ग्स आप सुनवा रही हैं वो भी बेहद खूबसूरत हैं, दिल को सुकून दे रहे हैं। थैंक यू सो मच तरुण कि आपको हमारा ये कलेक्शन अच्छा लग रहा है। इसी के साथ चेतन कुमार हमारे साथ जुड़े हैं गया बिहार से, कुछ लिख भेजा है, चलिए बहुत जल्दी के साथ पढ़ना चाहूंगी। अपनी आंखों में कोई ख्वाब चुनिंदा रखना, दिल के पिंजरे में मोहब्बत का बरिंदा रखना, इत्तेफाकन मैं अगर तुझसे छड़ जाऊं कभी, अपनी यादों में तुम मेरे प्यार को जिंदा रखना। बहुत खूब, बहुत खूबसूरती के साथ अपनी बात को बयां की है आपने। और सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी हमारे साथ हमेशा की तरह, ये कहूं कि मेरे साथ तो हमेशा की तरह जुड़े हैं, शांति नगर सोनीपत से रिस्पेक्टेड सभी आरजे जी, बिल्कुल आपकी शुभकामनाएं सर पर, बेस्ट विशेज आप मुझे दे जाते हैं, और आपकी बेस्ट विशेज पाकर देखिए कैसे खिलखिलाती हुई मैं आ जाती हूँ। उमेर मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, इन्हें भी 90s का म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है। दानिश खतौली से हमारे साथ जुड़े हैं, सभी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, हमेशा की तरह आपको शो अच्छा लग रहा है और गाने भी पसंद आ रहे हैं। मैसेज पढ़ लिया है, प्लीज लिखने की कतई भी जरूरत नहीं है। फिलहाल खूबसूरत गानों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, बने रहिए मेरे साथ। एक और 90s का चुनिंदा गाना आपके लिए चुन के लेके आई हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको उतना ही पसंद आएगा जितना बाकी के जो सॉन्ग्स हैं आप पसंद कर रहे हैं। फिलहाल जल्दी से लौट के आइए, बने रहिए अपने दिल की आवाज़ आरजे सबीहा नकवी।

वेल आप सुन रहे हैं अपना डेली डोज म्यूजिकल शो जिसका नाम है आपकी याद आती रही। इस वक्त हम सुने जा रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ दिल्ली और एनसीआर में, साथ ही साथ पूरा इंडिया यानी पूरा हिंदुस्तान इस वक्त हमारे साथ हमारी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर मोबाइल ऐप और डीटीएच के जरिए से भी हमारा और आपका कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है। मैं हूँ आपके साथ आपके दिल की आवाज़ आरजे सभिया नकवी। शो का नाम है आपकी याद आती रही। जी हाँ, यादें जो आपका पीछा या आपका साथ कभी नहीं छोड़ती, यादें आपके साथ हमेशा कदम से कदम साथ मिलाकर रहती हैं और चाहे कुछ भी हो, अच्छी हो बुरी हो, लेकिन हमेशा आपका साथ निभाने के लिए आपके साथ तत्पर रहती हैं। यादों को एक खूबसूरत सफर हमेशा जिंदगी भर आपको याद रहता है। यादें बहुत सारी होती हैं, कभी इंसान से बचपन से जुड़ी, कभी जब वो अपनी यंग एज में होता है, अपने स्कूल डेज में होता है तब भी बहुत सारी यादें होती हैं, कॉलेज जब उसका स्टार्ट होता है वहाँ से भी उसकी खूबसूरत यादें जुड़ती हैं, दोस्ती भरे रिश्ते होते हैं, और फिर एक दौर आता है जब आप घर गृहस्थी में फंस जाते हैं, फिर आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे माँ बाप बहुत सारे रिश्ते बनते चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा होते हैं तो वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के रिश्ते होते हैं, जैसे कि ताई ताए चाचा चाची उनके बच्चे, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के रिश्ते और खूबसूरत यादें आपके जीवन में आपकी ज़िंदगी में आती रहती हैं, और इन्हीं यादों को सहेज के रखना तो आपकी ज़िंदगी का काम है। क्या पता कब ज़िंदगी की शाम हो जाए, अगर ये यादें साथ रहेंगी तो ज़िंदगी का सुहाना सफ़र हमेशा हसीन बना रहेगा। फ़िलहाल आपके जो हसीन और खूबसूरत से मैसेजेस हैं वो मुझ तक पहुँच रहे हैं, चलिए उनको भी साझा कर लेते हैं। हमारे साथ हैं नमस्ते मैम। नमस्ते जी, मैं अनालू वारक मालापन गोवा से। अच्छा, इस वक्त मैं आपको सुन रहा हूँ, आपकी ये जो प्रोग्राम आप पेश कर रही हैं बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी बेहद खूबसूरत है। जब भी आप अच्छा ओके, अगर आप मेरा मैसेज शामिल कर लेंगी तो और अच्छा लगेगा। गोवा में इस वक्त तो बहुत गर्मी है, अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर गोवा आइएगा। जी हाँ जनाब, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि गोवा की सैर भी कर सकें हम, और वाकई देश हमारा जो है बहुत खूबसूरत है और इसके अलग अलग हिस्से भी बेहद खूबसूरत हैं। और इसी तरह मास्टर राधे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कासगंज से। गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग टू यू, और इनको भी

हमारे जो सॉन्ग्स हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, 90s के जो खूबसूरत गाने हैं इनको भी पसंद आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लिसनर्स जुड़े हैं, हितेंद्र दास, मनस दास, बर्षा और शेफाली और मधब दास, और ये कहाँ से मैसेज कर रहे हैं हमारे साथ, नगेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट आसाम, आसाम से शायद हमारे साथ हैं। चलिए कुछ और मैसेजेस के साथ इसी तरह जुड़ी रहूंगी आपके पास, आपके साथ, आपको कहीं नहीं जाना है, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहना है। तुगलकाबाद दिल्ली से भी हमारे साथ कुछ लिसनर हैं और ये भी हमें सुन रहे हैं, गुड इवनिंग मैम, हम भी आपको सुन रहे हैं और सॉन्ग्स सेलेक्शन जो है आपका बहुत अच्छा लग रहा है, साथ ही आपकी क्यूट बातें भी पसंद आ रही हैं, थैंक यू सो मच इसी तरह जुड़ने के लिए। फिलहाल ये गाना आपके लिए 90s केरा से चुराया गया एक और खूबसूरत गाना, उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आएगा।

वेल दोस्तों, ये गाना जो आप सुन रहे थे फिल्म सड़क से था। जी हाँ, जिसमें एक बहुत खूबसूरत पेयर आपको नजर आया था, संजय दत्त साहब और महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट, और उनका ये पेयर काफी हद तक पसंद भी किया गया था। इसके सभी गाने अल्टीमेट थे, और जैसे कि ये गाना आपने सुना, हालांकि इस गाने में जो शुरू के बोल थे दिन दिन तक, लेकिन इनकी कोई मीनिंग, कोई लॉजिक नहीं है। काफी सारे 90s में गाने ऐसे हैं कि जो आपने सुन भी रखे हैं, इस वक्त तो फिलहाल मेरे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे गाने हैं जिनकी कोई लॉजिक, कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो सुपर हिट हुए हैं। और अक्सर ऐसी चीज़ें जो बिना सोचे समझे बना दी जाए, ऐसा म्यूज़िक जो बिना सोचे समझे तैयार कर दिया जाए, वो ज़्यादा पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में मददगार साबित होता है, हेल्पफुल साबित होता है। इसलिए कहा जाता है कि लाइफ में भी ज़्यादा सोच समझ कर, ज़्यादा प्लानिंग के साथ नहीं चलना चाहिए। जैसे भी आपकी ज़िंदगी जा रही हो, उसको खुली आज़ादी दे दें, बस एक खुला परिंदे की तरह अपनी लाइफ को रखें, जो हो रहा है उसे एक लहर में, एक लय में होने दें। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ प्लान करते हैं दोस्तों, लेकिन पूरा कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं ना कि आपको पल भर की खबर नहीं, और आप जिंदगी भर की प्लानिंग करने बैठ जाते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि प्लानिंग बिल्कुल ना करें, अपने जो गोल को लेके हैं उनका कोई प्लान ना बनाएं, वो ज़रूर बनाएं, लेकिन बहुत जो ज़्यादा सोचते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं कि हम ये करेंगे, इस ईयर में ये करेंगे, या इतनी उम्र में ये अचीव कर लेंगे, या प्रेशराइज खुद को कर लेते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी की तरह जिए, जिंदा दिली की तरह जिए, लाइफ को आज़ाद छोड़ें, खुद को आज़ाद छोड़ें, रिलेशनशिप्स को समझें, दोस्ती को निभाएं, और अपने साथ, अपने जुड़े लोगों के साथ खूबसूरत यादें बनाएं। यही तो हमारे शो का भी लॉजिक है, यही हमारे शो का मकसद है। तो इसी मकसद के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, आपके मैसेजेस लगातार पढ़ते रहेंगे। जी, हमारे साथ बिहारी कॉलोनी शाहदरा से जुड़ चुके हैं हमारे वही एक लिसनर, जो रोज मुझे कहते हैं, मैडम बड़े दिनों बाद आपका शो सुन रहे हैं। आपको बता दूं कि भाई 3 दिन से तो मैं ही शो सुना रही हूं, तो बड़े दिन कहाँ हुए, रोज ही तो शो सुन रहे हैं। मुझे लगता है आप एक बार टाइप करके रख लेते हैं दोस्त, और रोज यही टाइप कर देते हो मुझे। ये तो मजाक था। राहुल रेणु हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत दिनों में सुने या रोज रोज सुने, लेकिन हम आपके लिए आते हैं, तो आपके मैसेजेस आप तक पहुंचाना भी जरूरी है जनाब। गुड इवनिंग, वेलकम सभिया, वेलकम टू यू सर, आपकी याद आती रही शो में हमेशा की तरह, आपके गीत संगीत बेहद पसंद आ रहा है, प्रेजेंटेशन भी कमाल की है। ये कह रहे हैं किशन मंजानी, लीलम स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद बिहार से। चलिए, थैंक यू सो मच, आप इस शो में हमारे साथ बने रहे और हमारा साथ आपने निभाया, इसी तरह साथ निभाते रहिए। और हमारे साथ कौन जुड़े हैं, शुभ संध्या नकवी जी, शुभ संध्या जी और अभिनंदन। 90s के म्यूजिक हमेशा की तरह बहुत पसंद आ रहा है, पिछले 50 साल से रेडियो सुनता आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कह रहे हैं इकबाल राय गुलाटी कुरुक्षेत्र से, थैंक यू सो मच सर कि आप इतने अरसे से रेडियो सुन रहे हैं, और आपका रेडियो सुनने का जो जुनून है वो आज भी इसी तरह बरकरार है, इसी तरह बरकरार रखिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। रंजीत मस्ताना रायबरेली से एक बार फिर से हमारे साथ हैं। सभिया लव गुरु, मुझे किसी की बहुत याद आती है, अब वो मुझसे दूर हो गई हैं, लेकिन उनकी यादें और उनका भोलापन, मासूमियत, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो बातें, वो लम्हे हमेशा हम दोनों जो साथ बिताए थे, आज भी रुला जाते हैं। खैर, ये जो आपकी पर्सनल मोहब्बत है या दोस्ती जो भी है, मैं दुआ करूंगी कि आप दूर हैं तो जहां भी हो खुश हो, और खुश रहिए रंजीत मस्ताना जी, जहां भी हैं उनके अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए कामना करें, यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। वेल, चलिए आपके लिए क्या कर सकते हैं, एक और गाना प्ले कर सकते हैं, सुन के शायद आपकी मीठी यादें और खूबसूरत हो जाएं, और आप उस इरा में चले जाएं जिस इरा में हम आप सब इस शो में अपने आप को महसूस करते हैं। एक और खूबसूरत गाना 90s के झरोके से चुराया हुआ।

जी हाँ, 90s का म्यूजिक हमेशा हमारी यादों को तमताज़ा कर जाता है। 90s में बहुत सारे ऐसे पेयर भी आए जो कि पहली फिल्म से जिन्होंने डेब्यू किया और वो ही सुपरहिट रहे। जैसे कि इसी फिल्म की हम बात करें, अगर फूल और कांटे, इसमें अजय देवगन और मधु ने अपना फिल्मी डेब्यू किया था और ये फिल्म भी सुपरहिट रही। वहीं अगर हम फिल्म आशिकी की बात करते हैं तो उसमें भी जो नया पेयर था, अनु अग्रवाल और राहुल राय, वो भी नए थे और उन्होंने भी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी पहली फिल्म से ही अपने झंडे गाड़ दिए थे। हालांकि बाद में इतने सफल नहीं रहे ये दोनों, अनु अग्रवाल और राहुल राय, लेकिन अजय देवगन और मधु का करियर तो एक बेहतरीन करियर साबित रहा, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन हर जगह हर बात हर किस्मत चमक जाए ये भी सही नहीं होता, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसीलिए कोशिश करते रहें। क्या पता अब किस्मत जिंदगी कब मेहरबान हो जाए, अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी हटाकर पॉजिटिविटी को जगह दें और सारी नकारात्मकता को छोड़कर सिर्फ ये सोचेंगे भाई कोशिश तो करनी है। अब भले ही कुछ जो स्टेप्स हैं वो नाकामयाबी में बदल जाएं, लेकिन हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कोशिश करते ही आप अपने हौसले को कहीं दूर फेंक देते हैं दोस्तों। फिर आपको लगता है कि आप किसी काम के नहीं, भाई अब आपसे कुछ होगा नहीं, या आपका जो मॉरल है वो बहुत हद तक डाउन हो जाता है। लेकिन डाउनफॉल नहीं करना है अपना, हमेशा अपने मॉरल को अपने हौसले को हमेशा एक अप लेवल पर रखना है। इसीलिए तो जिंदगी है बार बार उठ के बार बार गिर के उठ के नाम जो जीने का है वही जिंदगी कहलाती है। और वो शेर भी है ना कि गिरते ही सैर सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। शेर मुझे मेरे वालिद साहब यानी मेरे जो डैडी थे वो सुनाया करते थे, अचानक से जहन में आया तो उनकी भी याद आ गई। और वाकई पेरेंट्स की भी बहुत खूबसूरत यादें होती हैं आपके बचपन से जुड़ी, या आपके लिए जो अपना जिंदगी भर एफर्ट्स लगाते हैं उस एफर्ट से जुड़ी। कदम कदम पे आपको अपने पेरेंट्स की कमी या उनके द्वारा किए गए आपके एक एक काम को आप सराहते हैं, याद करते हैं, और कराना भी चाहिए आपको, करना भी चाहिए याद। और अपने भी अगर आपके भी बच्चे हैं तो उनको भी याद कराना चाहिए कि किस तरह से माँ बाप एक दौर में अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों पर खर्च कर देते हैं। और वहीं बदनसीबी कभी ऐसी होती है कि बच्चे भूल जाते हैं कभी कभी। हर बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप तो बड़े काबिल से बच्चे हैं भाई, सब कुछ याद रखते हैं। और इसी तरह याद रखिए, खिदमत करिए अपने पेरेंट्स की, सेवा करें और मेवा पाएं। फिलहाल मैसेज पाएं, एक मैसेज हमारे पास आया है। जी हाँ बिल्कुल, आपका मैसेज पढ़ रही हूँ, आपने दोबारा रिक्वेस्ट भेज दी है। इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि कुछ मैसेजेस इधर उधर हो जाते हैं। वेल, थोड़ा सा आप भी ख्याल रखा करें, पढ़ जरूर देती हूँ मैं। आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। हम भी बैठे हुए एक साथ मिलकर, ये कह रहे हैं आयशा, अनु और हुजैफा, कैफ और इकरा। अच्छा चलिए, आपने कहाँ से मैसेज किया है ये तो मुझे नहीं बताया, लेकिन आप ये शो सुन रही हैं ये आपने मुझे बताया। हमारे साथ जुड़े हैं कंकड़खेड़ा मेरठ से राजेश भल्ला, जो कि एक एडवोकेट हैं पेशे से। आज भी आपकी प्लेलिस्ट गजब की है और मनोरंजक है, थैंक यू सो मच कि आपको हमारे गाने पसंद आए। और 90s के जो ये गीत है वाकई बहुत अच्छे हैं, ये कह रहे हैं तरुण कुमार छत्तीसगढ़ से। 90s का ये सुंदर गीत सचमुच मन को सुकून और एक अलग ही आनंद से भर देते हैं। इतनी खुशी हो रही है शब्दों में कि बयां करना मुश्किल है, बस सुनते रहें और मुस्कुराते रहें। सच में ये गीत हमारी हर भावना को जैसे छू सा लेता है और दिल को जज्बातों और खूबसूरती से उजागर कर देता है। जी हाँ, बहुत अच्छे से आपने अपनी दिल की बात बताई। एक छोटा सा अनुरोध और आप कर रहे हैं, जो उद्घोषक है कृपया अपना नाम। अच्छा ओके, अपना नाम मैं बता देती हूँ। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ तरुण, आपके दिल की आवाज़ आरजे सबीहा नकवी। एक बार फिर से बता दूं, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे सबीहा नकवी। बार बार इसीलिए नाम दोहराते हैं हम आरजे, ताकि अगर हमारे साथ नए नए लिसनर जो ट्यून इन करते हैं वो हमारे नाम को सुन सके। तो जी हाँ, अब आपको याद रहेगा उम्मीद है कि मेरा ये नाम। विजय कुमार नामदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते सबीहा मैम, कैसी आप? बिल्कुल ठीक, गुड इवनिंग। आपका दिन बहुत खास है, आप हमारे बहुत खास फ्रेंड हैं। चलिए थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़े। और आपने बड़ा लंबा सा मैसेज किया है, ये मैं पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद लौट के आती हूँ। फिलहाल आप इंजॉय करिए 90s का एक और गाना।

जी हाँ, वादा हो, कसम हो, प्यार हो, दोस्ती हो, इसे निभाना तो चाहिए। अगर आप इसको नहीं निभाएंगे तो किन रिश्तों को निभा पाएंगे। भाई मैं तो अपना हर वादा निभाने की जी तोड़ कोशिश करती हूँ, इसीलिए वादे के मुताबिक आ रही हूँ बस एक घंटे बाद आपके साथ मौसिकी के खूबसूरत सफर को लेकर जिसका नाम है बज़्म रंगे महफ़िल। और इसके बाद इंशाल्लाह फिर कल 9 बजे आपसे फिर से होगी मुलाकात। लेकिन उससे जाने से पहले जो कुछ मैसेजेस पहुंचे हैं हमारे पास उनको भी शामिल कर लेते हैं। पुरखलूस आदाब अर्ज़ हो सभी हनकवी, अल्लाह से यही दुआ करते हैं आप खुश रहें। थैंक यू सो मच, आप भी खुश रहें। कह रहे हैं आदिल कमर गुन्नौर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। विजय, आप बिल्कुल भी अपने मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं लाएं। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा सब्र करें, थोड़े से पेशेंस रखें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होगा। ये मैं कह रही हूँ, एक दोस्त की दुआ है आपके लिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। ये कह रही हैं प्रीति पॉल, वेस्ट बंगाल कोलकाता से। ओके, थैंक यू सो मच प्रीति। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुड्डू धाकड़, मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बेड़ावन गांव

से गाने बहुत ही शानदार आप प्ले कर रही हैं। 90s का म्यूजिक सुनकर अपने कॉलेज का जमाना याद आ गया। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये है हमारे साथ तुम्पा शायद। नमस्कार सभी हैं मैम, बातों का सिलसिला खूबसूरत चल रहा है। थैंक यू सो मच। अगर मैंने नाम गलत लिया है तो पहले ही सॉरी फील कर लेती हूँ मैं, लेकिन आपका मैसेज हम तक पहुँचा उसके लिए बेहद शुक्रिया। चलिए अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपको छोड़े जाती हूँ आज के आखिरी ट्रैक के साथ। बस इसे इंजॉय करिए, जा नहीं रही हूँ बल्कि जल्दी ही लौट के आ रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सिर्फ छोटा सा खुदा हाफिज़ फिलहाल इस वक्त के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की

0: 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली सीबीएस का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित सीबीएस को दूरसंचार विकास केंद्र सी डॉट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में क्रांतिकारी पहल बताया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हुई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी करेंगे जबकि स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना

0: दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के चार जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालसुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

हाँ, एक ऐसी खूबसूरत कहानी इस मौसीकी के सफ़र में हम एक दूसरे को सुनाते हैं, जिसमें बहुत सारे जज्बात, बहुत सारे एहसास शामिल रहते हैं। कुछ आपकी सुनूंगी, कुछ अपनी कहूंगी, साथ ही साथ शेर व शायरी का दौर भी जारी रहेगा। जो कुछ भी अच्छा कलाम है आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश रहेगी मेरी, लेकिन वादा है आपका भी कि आप भी मेरे साथ रहेंगे, मौजूदगी इसी तरह दर्ज कराएंगे, वादा आप भी निभाएंगे मौसीकी के इस खूबसूरत सफ़र पर मेरे साथ, यूं ही धीरे धीरे मध्यम कदमों से चलते जाएंगे। तो ये सफ़र इसी तरह रहेगा, बरकरार आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए अपना ये खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है बज़्म रंगे महफिल, जो इस वक्त सुना जा रहा है दिल्ली और दिल्ली के तमाम आसपास के इलाकों में। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त हम पहुंच रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज पर दिल्ली और दिल्ली के तमाम आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ पूरा हिंदुस्तान इस वक्त हमारे साथ हमारी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर। तो लीजिए जनाब, पहला खूबसूरत जो नगमा आप तक पहुँच रहा है, और हाँ ये भी बता दूँ कि आज एक बार फिर से बज़्म रंगे महफिल नाम रहेगा, उन पुरानी खूबसूरत हिंदी फिल्मों में इस्तेमाल किए गए शाहकारों के नाम, जो गज़लों में भी हैं, गीतों में भी हैं, नगमों में भी हैं, आज फिर से आपके सामने वही नज़र करूँगी। उम्मीद है कि बज़्म रंगे महफिल की ये पेशकश भी आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत, बेहद लाजवाब एक शाहकार के साथ, जो बयां करेगा जज्बात दिल से दिल तक के।

जी हाँ हुजूर, कोई इस तरह से वादा करने का आपसे अगर अहद कर ले तो फिर वो वादे पे आपका एतबार होना लाजमी है। जी हाँ, कोई शिद्दत से अगर वादा करता है तो आपको लगता है कि शायद वो सारी वादे सारी कस्मों पर खरा उतरेगा, और जब आप किसी से ये वादा कर लें तो मेरी जानिब से आपको ये सलाह है कि उस वादे पर आप खरे भी उतरें, उस वादे को निभाएं भी, उस वादे के साथ कोई भी दगा ना करें, कोई धोखा ना करें, कोई फरेब ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते शायद सामने वाले इंसान को आपसे ना चाहते हुए भी बहुत सारी उम्मीदें बन जाती हैं। अगर किसी के साथ आपने कोई भी वादा किया है, बेख्याली में ही सही, लेकिन कोशिश करें कि वो वादा निभा दें, या फिर ऐसा कोई वादा करें ही नहीं जो दूसरा इंसान आपसे किसी भी तरह की वाबस्ता उम्मीद रखे। ऐसी उम्मीदें जो टूट कर किरची किरची बिखर जाएं, ऐसी उम्मीदें जो इंसान को अंदर तक जख्मी कर दें, ऐसी उम्मीदें क्यों बांधनी। अगर आप कोई वादा निभा नहीं सकते, किसी की ज़िंदगी बदल नहीं सकते, किसी को हसीन खूबसूरत ज़िंदगी दे नहीं सकते, तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसकी ज़िंदगी में वो ज़ख्म दे दें। इसीलिए शायद शिद्दत से की गई मोहब्बत का जो मज़ा है वो अलग होता है, या फिर यूँ कहूँ कि शिद्दत से की गई मोहब्बत ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक

पार होती है। शायद इसीलिए कहा गया है कि मोहब्बत के बाद मोहब्बत मुमकिन तो है मगर, कि मोहब्बत के बाद मोहब्बत मुमकिन तो है मगर, जिंदगी में टूट कर चाहना सिर्फ एक बार होता है।

जी हाँ जनाब, किसी की कदर किसी को खोने के बाद ही आती है, किसी के दूर जाने के बाद ही आती है। और ऐसा होता क्यों है? अगर किसी की कदर करनी है तो उसके साथ रहते कर ली जाए। अगर वो दूर जाकर आप उसकी कदर को समझ रहे हैं, उसकी अहमियत को मान रहे हैं, तो फिर उसका दूर जाने के लिए आप को या उसको अपनी कदर समझाने के लिए उसको दूर जाना ही पड़ता है। या ये क्यों हम इंतज़ार करते हैं, इस चीज़ का मुंतज़र रहते हैं कि कोई दूर जाए या फिर खुदा ना खास्ता बिछड़ जाए तो उसकी अहमियत या उसकी इम्पॉर्टेंस को समझी जाएगा। जब आपके साथ कोई रहता है, बेहतरीन रिश्ता निभा रहा होता है, उस वक्त भी उसकी कदर कर लें। थोड़ी सी तवज्जो तो देखिए हर इंसान अपने लिए चाहता है, हर इंसान मुस्तहक होता है थोड़ी सी तवज्जो की, एहसास की। और अगर आप उसको वो दे देते हैं तो उसको लगता है कि पूरे जहाँ की खुशियाँ उसने हासिल कर ली। इसीलिए अगर थोड़ी सी तवज्जो कोई भी इंसान आपसे मांग रहा है, वक्त मांग रहा है, तो उसे ज़रूर दें। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको अपना कीमती वक्त कोई भी इंसान दे रहा है तो वो अपना बहुत कुछ दे रहा है।

फिलहाल आप यही चीज़ कर रहे हैं मेरे साथ, अपने पैगामात मुझ तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, जुगनू की मानिंद कुछ पैगामात हैं जो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर झिलमिलाने लगे हैं और बताने लगे हैं कि आप भी इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमेशा की तरह सौरभ अनेजा ने गाज़ियाबाद से अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज करा दी है। बेहतरीन लफ्ज़ों में उन्होंने अपने दिल की बातें मुझ तक पहुँचाई हैं। सौरभ, बेहद शुक्रिया आपकी सभी बातों का जो आपने मुझ तक पहुँचाई हैं, और वाकई मैं जानती हूँ कि आप सच में मेरी दिल से कदर करते हैं और मेरे हर प्रोग्राम को, हर शो को आप बेहद शिद्दत से सुनते हैं और अपना फीडबैक भी देते हैं, और इसके लिए तहे दिल से मैं आपकी और आप जैसे सभी लिसनर्स की शुक्रगुजार हूं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक रेगुलर लिसनर हैं ग्रेटर कैलाश से, ओम प्रकाश जी। गुड इवनिंग आरजे सबिहा नकवी एंड लव गुरु, जो कि ये खिताब मुझे दिए रखते हैं। चलिए, थैंक यू। और कह रहे हैं कि बेटा हाउ आर यू, आई एम टोटली फाइन, यानी मैं बहुत सही हूँ सर। ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, पर हर मुश्किल बेकार नहीं होती, जब सब्र से काम ले इंसान तो उसकी हार नहीं होती। ये कुछ चुनिंदा खूबसूरत लाइन है जो उन्होंने मुझ तक पहुँचाई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और हौसला मिला इन सभी खूबसूरत बातों को सुनकर। दानिश खतौली से हमारे साथ जुड़े हैं। सभी हमाम, कैसी हैं आप? आप मेरी फेवरेट आरजे हैं और अच्छे सॉन्ग्स आप प्ले कर रही हैं, और प्लीज़ मेरा मैसेज पढ़ दो। जी हाँ, आपका मैसेज पढ़ दिया गया जनाब। और कैसे आप जब गुजारिश करते हैं तो आपके मैसेजेस को इंसान नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बिल्कुल आपका मैसेज हम पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ पढ़ रहे हैं उन लोगों का मैसेजेस भी जो हमारे साथ लगातार शो में शामिल हो रहे हैं और अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा जनाब। हाँ, अनुभव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नालंदा बिहार से। वो भी मुझे कह रहे हैं कि सबिहा, आप जानती हैं कि मैं आपके शो का रेगुलर लिसनर हूँ, आपके सभी शो सुनता हूँ, आज भी इस शो में आपके साथ शामिल हूँ। तो जी हाँ जनाब, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। मुंतज़िर रहिए इसी तरह हमारे हर प्रोग्राम का, और फिलहाल लुत्फानंदोज़ होजिए आज की अगली खूबसूरत पेशकश के साथ। उम्मीद है कि आपको ये बज़्म-ए-रंग-ए महफिल का खूबसूरत सफ़र पसंद आ रहा होगा। लीजिए ये अगला खूबसूरत शाहकार आप सभी के लिए।

हुजूर मैं तो वही हूँ और आप भी वही हैं, प्रोग्राम भी वही है, बज़्म रंगे महफिल आप सुन रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ सभी हनकवी के साथ लगातार जारी है ये खूबसूरत कारवां। और ढलती हुई इस रात के सफ़र में धीरे धीरे करके जैसे जैसे रात ढल रही है मौसीकी का ये सफ़र तमाम हो रहा है और साथ ही साथ एक नया आगाज़ भी हो रहा है। जी हाँ, आगाज़ एक नई दुनिया का आगाज़, नए जज्बातों का, एहसासों का, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जो आज आप शायद इस प्रोग्राम के बाद सुनकर कुछ नई उम्मीदें बांधें, कुछ नए फैसले करें, कुछ नई चीज़ों को अपने अंदर जगा दें। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की कही गई बात से इंसान अचानक से कोई बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाता है। यानी अगर मेरी कही गई किसी भी बात से आपको थोड़ा सा भी हौसला मिले या कोई सबक ज़िंदगी में हासिल हो तो हो सकता है कि आज शायद आपकी अंदर अगर कोई बुरी चीज़ है या बुरी आदत है तो उसको हटाकर आप उसको एक अच्छी आदत में तब्दील कर लें, ऐसा मैं मान रही हूँ। अब ये कितना हो पाता है मुमकिन, ये तो आप पर मैसर करता है, लेकिन मेरी उम्मीद तो यही है कि हाँ, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को जगा दें, अच्छी बातों को जगा दें, अच्छे लोगों को जगा दें तो तमाम तर मुश्किल और परेशानियाँ आप दूर कर पाएंगे। अपनी ज़िंदगी के ऐसे ही सारे जो मसले मसाइल हैं उनसे आप आज़ाद हो सकते हैं। फ़िलहाल हमारे साथ जुड़े हैं, जी हाँ, नमस्कार आरजे सबीहा, रंगे महफिल में आपका स्वागत है। एम राजकुमार जी हमारे साथ हैं, इन्हें भी हमारा जो प्रोग्राम है अच्छा लग रहा है, बेहद शुक्रिया। और विजय कुमार नामदेव जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्ते सबीहा जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए दुआ दी। और दोनों ही प्रोग्राम्स के सॉन्ग्स बेहतरीन है, प्रेजेंटेशन कमाल है और अच्छा लग रहा है, आप हमेशा स्वस्थ रहें, थैंक यू सो मच, आप भी हमेशा खुश रहें, इसी दुआ के साथ। जी हाँ, बज़्म रंगे महफिल के कारवां को हम आगे बढ़ाते हैं और एक खूबसूरत शेर आपकी नज़र करती हूँ कि करती हैं सवालात मुसलसल उसकी निगाह, ये तर्ज तकल्लुफ मुझे अच्छा नहीं लगता, कहते हैं मुझे देखकर अक्सर मेरे अहबाब, कि कहते हैं मुझे देखकर अक्सर मेरे अहबाब, ये शख्स अकेला है मगर तन्हा नहीं लगता। जी हाँ, तन्हाई क्या होती है जनाब, ये उनसे पूछिए जो तन्हाइयों के आदि बन चुके हैं।

शिकायत की तो यहाँ गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक गुंजाइश यहाँ पैदा कर दी है। जी हाँ, अनुभव कह रहे हैं कि सभीहा, क्या मैं सिर्फ लिसनर हूँ, आपका दोस्त नहीं? बिल्कुल, हर लिसनर दोस्त ही है जनाब, और हर लिसनर दिल के पास है, हर दोस्त दिल के पास है, और लिसनर और दोस्त दोनों मुझे लगता है कि एक ही तो है। शायद दोनों एक दूसरे की तरफ उतने ही जानिब हैं जितने हम और आप। फिलहाल जी हाँ, बस में रंगे महफिल का ये खूबसूरत कारवां चल रहा है, और यहाँ शिकवे शिकायतों के लिए तो कतई जगह नहीं है। यहाँ बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी खूबसूरत बातें जिसमें मोहब्बत है, प्यार है, खुलूस है, लिहाज है, अदब है, तहजीब है, और ऐसी जगह मुझे लगता है कि थोड़ी सी भी कसक, थोड़ी सी भी शिकवे, थोड़ी सी भी शिकायतें बेजा शामिल हो जाते हैं। लेकिन बदनसीबी ऐसी है कि कई बार बाज़ दफ़ा कुछ लोग रिश्तों के मामले में बदनसीब हो जाते हैं या मोहब्बत के मामले में बदनसीब हो जाते हैं और उम्मीद खो बैठते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई उम्मीद कतई ना आप छोड़ें, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है, ये खुदा ने भी कहा है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों से भी सुना है। इसीलिए उम्मीद को ता क़यामत जिंदा रखें, खुद में, अपने आप में, बल्कि आपकी चारों तरफ, आपकी जानिब अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो

अपने अंदर नाउमीदी को पैदा कर चुके हैं, तो उनकी शख्सियत को भी निखारने में मदद करें, उनको भी एक ऐसा हौसला दें जिससे उनका भी मॉरल जो है वो ऊपर उठ सके, उनको भी हौसला मिल सके, उनकी भी हौसला अफजाई हो सके। ये नहीं कि अगर कोई आपके सामने ऐसी बातें कर रहा है जिससे आपका जो हौसला है वो कमज़ोर पड़ रहा है, आपकी शख्सियत कमज़ोर हो रही है, तो आप अपनी शख्सियत को धीरे धीरे और कमज़ोर कर लें। मुझे लगता है कि शख्सियत को निखारने के लिए बेहतरीन है कि आप खुद में अपने आप में ऐसा हौसला पैदा करें जो दूसरे की शख्सियत को निखारने में भी मददगार साबित हो सके। और जहाँ तक बात है रिश्तों की मोहब्बत की, तो जनाब ये काफ़ी हद तक किस्मत पे मुकद्दर पे भी मैसर होता है, और मोहब्बत टूट कर चाहना किसी को ये भी ज़रूरी है, ये मैसर करता है कि कैसा इंसान है। किसी के अंदर बेतहाशा मोहब्बत और जज्बात और एहसास होते हैं, कहते हैं ना कि कोई बहुत जज्बाती है, बहुत इमोशन से भरपूर है, वहीं कुछ लोग जज्बात से खाली भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द हमेशा तलाशते हैं। इसीलिए शेर अर्ज़ किया है जनाब कि बहुत कुछ तुझसे बढ़कर भी मयस्सर था मयस्सर है, बहुत कुछ तुझसे बढ़कर भी मयस्सर था मयस्सर है, न जाने क्यों ज़िंदगी में तेरी ज़रूरत कम नहीं होती।

जी हाँ जनाब, यही सवाल मेरा दिल भी पूछ रहा है कि अल्लाह जाने क्या होगा। यानी आप मुझे एक टीचर भी बनाने पे मजबूर कर रहे हैं। एक हमारे दोस्त हैं, जी हाँ अनुभव, नालंदा बिहार से मेरे साथ जुड़े हैं। कुछ जो वर्ड्स हैं, कुछ जो शब्द हैं, उनके मतलब उर्दू के जो ख़ास हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्होंने उसे दरख्वास्त की है कि सभीहा मुमकिन हो तो इनका मतलब बता दीजिए। तो जहाँ तक मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, मैं आपके साथ ज़रूर आपको मतलब बताने की कोशिश करूँगी जनाब। हाँ, आप पूछ रहे हैं कि कुफ्र क्या होता है। कुफ्र होता है जब हम कोई गुनाह कर देते हैं और उसका कफारा, यानी उसका जो कह सकते हैं कि उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ देना पड़ता है, यानी उसका हमें अज्र देना पड़ता है, यानी कुछ ना कुछ हम कहते हैं ना कि भाई आपने ये गुनाह कर दिया, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यानी कोई सेवा कर सकते हो या किसी के लिए कोई सदका दे सकते हो। वो कहा जाता है कि कुफ्र ना अदा करें, यानी बुरे जो चीज़ें हैं वो ना करें। कुफ्र में कुछ भी शामिल हो सकता है, यानी बुरी बातें या बुरे चीज़ें किसी के लिए, या बुरे लफ्ज़ आप किसी के लिए निकालते हैं तो वो। और मैसर का मतलब होता है डिपेंड होना, जैसे कि आपने पूछा है कि मैसर का क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है जब आप किसी पे डिपेंड हो जाते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप किसी पे मैसर हो गए। कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ डेली, तो अच्छा लगता है जब मतलब पता चल जाए। तो मुझे भी जहाँ तक पता था मैंने आपके साथ साझा करी। और इसी के साथ हमारे साथ लगातार जुड़े हैं हमारे लिसनर्स, आप भी मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए जनाब। अपनी मौजूदगी तो आप मुझे दर्ज करा ही रहे हैं। गुलफाम खान दिल्ली शादरा से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोग्राम इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है और कुछ भेज रहे हैं कि कितने दूर निकल गए रिश्ते निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द छिपाते छिपाते। दर्द क्यों है ज़िंदगी में जनाब, मुस्कुराइए कम से कम इस एक घंटा तो ज़रूर मुस्कुराइए। आप मेरी कह सकते हैं कि इस खूबसूरत बज़्म में हैं, तो यहाँ आपको मुस्कुराना ही है। अपने लबों पर एक खूबसूरत मीठी मुस्कान सजाकर ये प्रोग्राम आप सुनेंगे तो खुद ब खुद आपके लबों पर एक मीठी और खूबसूरत मुस्कान आ जाएगी। और जब बात हो मौसिकी की, तो ये हमेशा कहती हूँ कि आपके लिए एक दवा का काम करती है, एक मेडिसिन का काम करती है, तो इस दवा को लीजिए, सुकून से आँखें बंद करिए और खूबसूरत मौसिकी में खो जाइए जनाब। मोहम्मद रफ़ी साहब की मेलोडियस आवाज़ आपके ऊपर क्या जादू बिखेरेगी, ये मुझसे ज़्यादा आपको पता है।

ढलती हुई इस खूबसूरत रात के सफर में हुजूर आप भी मेरे साथ बदस्तूर जारी हैं, शामिल हैं और अपनी मौजूदगी लगातार मुझ तक दर्ज करा रहे हैं। और एक और खूबसूरत मैसेज हमारे पास पहुंचा है, सनी काम्बोज पटियाला से जुड़े हैं, बहुत अच्छे सॉन्ग्स आप प्ले कर रही हैं, ऑसम फीलिंग्स आ रही हैं रेडियो को सुनकर, घर की छत पर इस वक्त ठंडी ठंडी हवा में मैं इस शो को सुन रहा हूं, एहसास बयां नहीं कर पा रहा हूं, अलग ही एहसास है, मानिंद ऐसा लग रहा है जैसे 2005 में शामिल हूं और एफएम रेनबो की तो बात ही अलग है, बड़ी अच्छी फील आ रही है। चलिए शुक्रिया जनाब, आप हमारे साथ जुड़े हुए। देव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, देव साहब आपका भी स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, वेलकम है, खुशामदीद है।

0: जी हाँ हुजूर, ढलती हुई इस रात के खूबसूरत कारवां में सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। और लीजिए, अब अर्ज़ करती हूँ आपके सामने ये अगला शेर कि तेरी जुदाई में दिल बेकरार ना करूँ तो हुक्म कर तेरा इंतज़ार ना करूँ, बेवफाई करनी है तो कुछ इस तरह से कर मुझसे कि बेवफाई करनी है तो कुछ इस तरह से कर मुझसे कि फिर तेरे बाद किसी का एतबार ना करूँ।
1: क्या हुआ?
2: हाय, हम

जी हाँ हुजूर, अब मैं भी आपके हालचाल बाकायदी से पूछ के जाने वाली हूँ। जी हाँ, फिलहाल वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है जनाब, लेकिन कल इंशाल्लाह फिर से होगी मुलाकात ठीक 9 बजे। तब तक के लिए रखिएगा अपना वही खासम खास ख्याल जो कि आपको हमेशा रखना है। जी हाँ, इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा खैर। जाते जाते ये आखिरी शाहकार आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। अब इन सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमाल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम बट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। मणिपुर में इम्फाल उखरुल मार्ग पर कुछ अज्ञात हथियारबंद उपद्रवियों ने राहगीरों पर गोलीबारी की जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई और सामान्य यातायात बाधित हो गया। ये घटना उखरुल जिले के लिल्टन पुलिस थाना के अंतर्गत न्यू हेवन और टीएम कसोम क्षेत्र में हुई। घटना का समाचार मिलने तक किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। 12:05 का समय और श्रोताओं, समय हो चला है कार्यक्रम जीरो आर शो का। आज के शो में आपके साथ आपका दोस्त अतुल।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु
1: हाँ?
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। 12:22 कार्यक्रम जीरो आर शो में आज आपके साथ आपका दोस्त अतुल, और साथ हैं खूबसूरत गीत रात के इस पहर में।

तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

वाणी आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, 12:35 और 28 सेकंड, कार्यक्रम जीरो आर शो।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि फलता विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को हुए मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। अब इन सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना क्षेत्र कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर है। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था।

गणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय मौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालासुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर सहित कई राज्यों में कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। समय हो चला है 1:05 और 52 सेकंड का और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुहानी रात।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस

0: एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल है, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरों की जगह वोट डालते हुए देखा गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8

बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉयमाल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालासुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, बिहार, पंजाब में अगले 2 दिनों तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। समय हो चला है 2:05 और 52 सेकंड का। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम भुलाए ना बने।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। समय हो चला है 2:20 और 16 सेकंड का। कार्यक्रम भुलाए ना बने।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आपकी वाणी आकाशवाणी। 2:38 और 5 सेकंड आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने, आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

0: इतना काम, बीमार पड़ जाओगे। वैसे नाटक किस लिए?
1: तुम्हें ये नाटक नजर आ रहा है? मैं किसी को दिखाने के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ, ये सच्चाई है।
0: इतने बड़े घराने की लड़की होकर ये सब क्यों कर रही है? तुम्हारे एक इशारे पर सैकड़ों नौकर आकर ये काम कर जाएंगे, फिर ये दिखावा क्यों?
1: मुझे सफाई देने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें बताती हूँ। यूसुफ की माँ हमारे यहाँ नौकरी किया करती थी। बचपन में उसी ने मुझे पाला, माँ से ज्यादा प्यार दिया। जब उसकी अपनी बेटी जूनी मर गई तो वो नौकरी छोड़ के यहाँ वापस आ गई। अब जब भी मैं कश्मीर आती हूँ कुछ दिन उनके साथ बिताती हूँ। उनके लिए वही सब करती हूँ जो उनकी अपनी बेटी किया करती थी। इससे मुझे चैन मिलता है और एक तरह का सुख भी। मैं ये सब बातें तुम नहीं समझोगे, अब भी नहीं समझे आप। मैं आरती हूँ, काजल की बेस्ट फ्रेंड। उसे नाराज करके आपने अच्छा नहीं किया। जानते हैं वो यहाँ सिर्फ आपके लिए आई है। बचपन से उसे जानती हूँ, बहुत जिद्दी है। अगर वो आपके लिए यहाँ तक आ सकती है तो आपको छोड़ के जा भी सकती है। अब खड़ी खड़ी देख कह रहे हैं, अगर वो अभी चली गई तो आप जिंदगी भर तरसेंगे, पछताएंगे।
0: काजल, I'm sorry, काजल, मैंने तुम्हें गलत समझा। काजल, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
1: तो कहो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरी के जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है।

और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र पर दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाला एलपीजी वाहक पोत एमटी सर्वशक्ति, जिसमें भारत के लिए 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी लदा हुआ है, होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 13 मई को इसके विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: Sanjana! Sanjana!
1: I'm sorry. मैंने आपको पहचाना नहीं.
0: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है. हाँ यही तो है सब निशानियां.

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया द्वारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरों की जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना कल सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का कार्य 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर

गणना सुविधा के माध्यम से इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर से इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों को उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरे की जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उससे विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 202 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सरकार ने रोहित जैन को रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का कार्य 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर स्वगणना सुविधा के माध्यम से इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी

टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और मेरे यानी सुप्रिया के साथ प्रस्तुत है अब कार्यक्रम आराधना, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं भक्ति संगीत।